मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026, प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रथम सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, जब माँ की कृपा हो जाती है तो जीवन की हर राह आसान हो जाती है। आइए भक्ति के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जब हम ईश्वर को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, अपना मार्गदर्शक, अपना रक्षक और अपना आराध्य, तब हमारे मन का सारा अहंकार मिट जाता है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये भजन।

श्रोताओं, जब बात परमात्मा को पूजने की होती है तो यहाँ आकर मजहब और सारी दीवारें के फासले मिट जाते हैं और सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती है, ईश्वर की आवाज़। आइए अब रुख करते हैं गुरुवाणी के उस पावन संदेश की ओर जो हमें उस अकाल पुरख वाहेगुरु के हमेशा

हरप्रीत कौर की आवाज में अभी आपने सुना ये शब्द। आइए अब चलते हैं सूफियाना अकीदत के एक और खूबसूरत मुकाम पर, जहां मौला की याद हो वहां दिल खुद ब खुद सजदे में झुक जाता है। सुनते हैं ये नात सरफराज साबरी की आवाज में।

वंदना कार्यक्रम के अंत में आइए चलते हैं माँ संतोषी के दरबार में, जो अपने भक्तों के जीवन को संतोष, सुख और समृद्धि से भर देती है। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये भजन।

इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का आज का ये प्रसंग।

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों, तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूं। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस कांड। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: ये भारतवर्ष जो हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है, बड़ा पवित्र देश है। धन धर्म सुख देने वाला ये देश सब देशों से उत्तम है। कहते हैं देवता लोग ये गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि में होता है, जिसमें जन्म लेकर मनुष्य स्वर्ग का सुख और मोक्ष दोनों पा जाता है। ये हमारी मातृभूमि है, हमारी पितृभूमि है। जो लोग सुजन्मा हैं, जिनके जीवन बहुत अच्छे हुए हैं, उन राम कृष्ण बुद्ध आदि महापुरुषों के, महात्माओं के, आचार्यों के, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों के, गुरुओं के, धर्मवीरों के, शूरवीरों के, दानवीरों के, स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्तों के उज्ज्वल कामों की ये कर्म भूमि है। इस देश से हमको परम भक्ति करनी चाहिए। धर्म के अनुसार चलने वालों को कभी इसका त्याग नहीं करना चाहिए। देश की उन्नति के कामों में देशभक्त पारसी, मुसलमान, ईसाई, हिंदू और यहूदियों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। सब भाइयों को मिलकर अनाथों, विधवाओं, धार्मिक स्थानों और गौमाता की रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों और पुरुषों को निडरता, सच्चाई, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य, धीरज और क्षमा का सदा अमृत के समान सेवन करना चाहिए। सनातन धर्मी, आर्य समाजी, सिख, जैन और बौद्ध आदि सब हिंदुओं को चाहिए कि वे अपने अपने विशेष धर्म का पालन करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर बरतें। हरिजन और सवर्ण प्रभु को समान रूप से प्रिय हैं। अपने विश्वास में दृढ़ता, दूसरों की निंदा का त्याग, मतभेद में सहनशीलता और समस्त प्राणी मात्र से मित्रता रखनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जिस काम को वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा उसके साथ करे, उस काम को वो भी किसी दूसरे के प्रति न करे, क्योंकि वह जानता है कि यदि उसके साथ कोई ऐसी बात करता है जो उसको प्रिय नहीं है तो उसको कैसी पीड़ा पहुंचती है। मनुष्य को चाहिए कि न किसी से डरे और न किसी को डर पहुंचावे। भारतवर्ष केवल हिंदुओं का देश नहीं है, ये तो मुस्लिम, ईसाई और पारसियों का भी देश है। ये देश तभी समुन्नत और शक्तिशाली हो सकता है जब भारतवर्ष की विभिन्न जातियां और यहां के विभिन्न संप्रदाय पारस्परिक सद्भावना और एकात्मकता के साथ रहें। जो भी लोग इस एकता को भंग करने का प्रयास करते हैं, वे केवल भारत के ही नहीं अपनी जाति के भी महान शत्रु हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में दृढ़ आस्था होनी चाहिए, किंतु दूसरे धर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने धर्म में बड़ी आस्था है, किंतु जब मैं गिरजाघर या मस्जिद के सामने से गुजरता हूं तो मेरा सिर स्वयं श्रद्धा से झुक जाता है, क्योंकि मंदिरों की तरह ये भी भगवान भक्ति के पूर्ण स्थान हैं।
0: अभी आपने सुना चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं गांधी कथा।

उस समय मेरा 16वां वर्ष था। भगंदर की बीमारी से पिताजी के एकदम खाट पकड़ लेने की बात मैं कह चुका हूं। उनकी सेवा में माताजी, घर का एक पुराना नौकर और मैं, ये तीनों जने अधिकतर रहते थे। मेरा काम नर्स जैसा था। उनका घाव धोना, उस पर मलहम लगाना, दवा पिलाना और दवा को घर पर तैयार करना, ये मेरा खास काम था। रोज रात को उनके पैर दबाना और अनुज्ञा मिलने या उन्हें नींद आ जाने पर मेरा सोने जाना, ये मेरा नियम था। मुझे ये सेवा बहुत ही प्रिय थी। याद नहीं कि किसी भी दिन मैंने उसमें चूक की हो। ये दिन हाई स्कूल के थे, अतः खाने पीने के बाद बचा हुआ मेरा समय स्कूल में अथवा पिताजी की सेवा में ही लगता था। उनकी आज्ञा मिलती और उनकी तबीयत ठीक दिखाई देती तो शाम को टहलने जाता था। इसी साल पत्नी गर्भवती हुई। ये मेरे लिए दोहरी लज्जा की बात थी। इसे मैं आज समझ सकता हूं। एक तो ये कि विद्याभ्यास का काल होते हुए भी मैंने संयम न रखा। दूसरी ये कि मैं विद्या अभ्यास के धर्म को समझता था और उससे भी अधिक माता पिता की भक्ति के धर्म को समझता था। वह यहां तक कि इस विषय में बचपन से ही श्रवण मेरा आदर्श हो रहा था, फिर भी मुझ पर विषय वासना सवार हो सकती थी। यहां तक कि रोज रात को इधर तो पिताजी के पांव दबाता रहता, उधर मन सोने के कमरे की ओर दौड़ता रहता, और सो भी ऐसे समय जब स्त्री का संग धर्मशास्त्र, वैद्यक शास्त्र और व्यवहार शास्त्र तीनों के अनुसार त्याज्य था। सेवा से छुट्टी पाने पर मुझे प्रसन्नता होती और पिताजी के पांव छूकर सीधा शयन गृह में पहुंच जाता। पिताजी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। वैद्यों ने अपने लेप आजमाए, हकीमों ने मरहम पट्टी, मामूली हज्जाम वगैरह घरेलू दवाइयां, अंग्रेजी डॉक्टर ने भी अपनी अक्ल लड़ाई। उसने बतलाया कि नश्तर के सिवा दूसरा इलाज नहीं है। कुटुंब के मित्र वैद्य ने रोका। इस ढलती उम्र में पिताजी के नश्तर लगाना उन्होंने नापसंद किया। अनेक प्रकार की दवाइयों की बोतलें जो मंगाई गई थी व्यर्थ गईं और नश्तर न लगा। वैद्यराज होशियार थे, विख्यात थे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने नश्तर लगाने दिया होता तो घाव भरने में अड़चन न होती। नश्तर बंबई के उस समय के एक विख्यात सर्जन लगाने वाले थे, पर अंत निकट आ गया था, इसलिए ठीक कदम कैसे उठता। पिताजी बंबई से बिना नश्तर लगवाए तथा तदर्थ खरीदा हुआ सामान साथ लिए वापस लौटे। उन्होंने अधिक जीने की आशा छोड़ दी थी। कमजोरी बढ़ती गई और सब काम बिस्तर पर ही होने की नौबत आ गई। पर उन्होंने अंत तक इसका विरोध ही किया और उठने बैठने का कष्ट सहने का आग्रह करते रहे। वैष्णव धर्म का ये कठोर शासन है। बाह्य शुद्धि अति आवश्यक है, पर पाश्चात्य वैदिक शास्त्र ने हमें सिखाया कि मल त्याग और स्नान आदि की सारी क्रियाएं बिछोने में ही पड़े पड़े पूरी सफाई से हो सकती हैं और रोगी को तनिक भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बिस्तर जब देखो तब साफ ही मिलेगा। इस तरह की सफाई को मैं तो वैष्णव धर्म का नाम ही दूंगा। पर उस समय भी पिताजी का स्नान आदि के लिए बिछोने से उतरने का आग्रह देखकर मैं तो आश्चर्यचकित ही रह जाता और मन ही मन उनकी स्तुति किया करता। अवसान की काल रात्रि निकट आ गई। उस समय मेरे चाचा जी राजकोट में थे। मुझे कुछ ऐसा स्मरण है कि पिताजी की बीमारी बढ़ती जाने के समाचार पाकर वो आए थे। दोनों भाइयों में गाढ़ा प्रेम भाव था। चाचा जी सारे दिन पिताजी की खाट के पास ही बैठे रहते और हम सबको सोने की इजाजत देकर खुद वहीं पड़ जाते। किसी को भी आशंका
तो थी ही नहीं कि यही उनकी आखिरी रात होगी। यूं तो डर हमेशा ही बना रहता था। रात के 10:30 या 11 बजे होंगे, मैं पैर दबा रहा था

0: चाचा जी ने मुझसे कहा, तू जा, अब मैं बैठूंगा। मैं खुश हुआ और सीधा शयन गृह में पहुंचा। स्त्री बेचारी तो गाढ़ी नींद में थी, पर मैं कब सोने देता। जगाया, 5-7 मिनट गुजरे होंगे कि पहले मैं जिस नौकर का जिक्र कर चुका हूं उसी ने किवाड़ खटखटाए। मैं धक से रह गया, चौंक कर उठा। नौकर बोला, उठो बापूजी, ज्यादा बीमार हैं। ज्यादा बीमार तो हैं ही, ये तो मैं जानता था, इसलिए इस ज्यादा बीमार का खास मतलब मैं समझ गया। बिछोने से एकदम कूद पड़ा, ठीक बताओ क्या हुआ? जवाब मिला, पिताजी गुजर गए। अब मेरे पछताने से क्या होता था। मैं बहुत शर्माया, बहुत दुखी हुआ, पिताजी के कमरे में दौड़ कर गया। सोचा कि मैं विषांत न होता तो इस आखिरी घड़ी में वियोग मेरे नसीब में न आता और मैं पिताजी की अंतिम घड़ी में उनके पैर दबाता होता। अब तो मुझे चाचा जी के मुंह से ही सुनना था कि बापू तो हमें छोड़कर चल दिए। अपने बड़े भाई के परम भक्त चाचा ने अंतिम सेवा का सम्मान प्राप्त किया। पिताजी को अपने अवसान का संकेत मिल चुका था। उन्होंने इशारे से लिखने का सामान मांगा, कागज पर उन्होंने लिखा, तैयारी की जाए। ये लिखने के बाद अपनी बाह पर बंधा ताबीज तोड़कर फेंक दिया और सोने की कंठी को भी तोड़कर अलग कर दिया। क्षण भर में आत्मा उड़ गई। अपनी जिस शर्म का संकेत मैंने पहले भी किया है वो यही है, सेवा के समय भी विषय की इच्छा। इस काले धब्बे को मैं आज तक न धो सका, भूल न सका और सदा ये मानता रहा हूं कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी भक्ति असीम थी, उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था, पर उस सेवा के समय भी मेरा मन विषय को नहीं छोड़ सकता था। ये उस सेवा में अक्षम्य त्रुटि थी। इसी से मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालक मानते हुए भी विषयांध माना है। इससे छूटने में बहुत समय लगा और छूटने से पहले बहुत धर्म संकट भी सहने पड़े। अपनी इस दोहरी शर्म के प्रकरण को पूरा करने से पहले ये भी कह देना चाहता हूं कि पत्नी को जो बच्चा पैदा हुआ वो दुनिया में 2-4 दिन ही रहकर चल बसा। दूसरा परिणाम हो भी क्या सकता था। जो माता पिता या बाल दंपत्ति चेतना चाहें वे इस दृष्टांत से सबक लें।
1: इसी के साथ गांधी कथा अब यहीं संपन्न होती है।

0: अभी आपने सुनी गांधी कथा। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, जागरूक श्रोता कार्यक्रम में आज सुबह 10:30 पर हमारा श्रोताओं से फोन पर सजीव बातचीत करने का विषय होगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास। एक बार फिर से सुन लीजिए, जागरूक श्रोता कार्यक्रम में आज सुबह 10:30 पर श्रोताओं से फोन पर बातचीत का हमारा विषय होगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य गुजरातस्य दमनक्षेत्र

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,000

0: 800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोनताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है जल ही जीवन का आधार।
3: हजारों वर्षों के अनुभव के आधार पर भारतीय शास्त्रकारों का ये कथन सर्वथा सत्य है। शरीरे जर्जरी भूते

0: व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्या नारायणो हरि। अर्थात वृद्धावस्था से जर्जर या रोगग्रस्त शरीर के लिए जल ही औषधि है और ईश्वर ही वैद्य है। हमारे शरीर के असंख्य सेलों में जल भरा हुआ है। कोई सेल नहीं, कोई तंतु नहीं जहां जल का कुछ ना कुछ अंश ना हो। शरीर में प्रोटीन, वसा और कार्बोस के ऑक्सीकरण से जल उत्पन्न होता है। रक्त और लसिका का अधिक भाग जल ही होता है। हमारे शरीर की रचना में जल की विपुलता है। शरीर के वजन का 2/3 भाग जल तथा केवल 1/3 भाग ठोस है। दांत शरीर का सबसे ठोस पदार्थ कहा जा सकता है, उसमें भी 10% जल का अंश है। शरीर के अन्य भागों की हड्डियों में 14% से अधिक जलीय अंश है। सारांश ये है कि 120 पाउंड वजन वाले शरीर में 80 पाउंड जल होता है। मनुष्य की आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के जलीय अंश में किंचित कमी और ठोस अंश में थोड़ी वृद्धि होने लगती है। मानव जीवन और मानव स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक जल को इसीलिए प्रकृति ने इतना सुलभ कर दिया है कि वो हर प्राणी के लिए सरलता पूर्वक उपलब्ध हो सके। जल में पुराने और अनुवांशिक रोग तक को दूर करने का सामर्थ्य है। इस प्रकार हमारे शरीर को एक जटिल जल प्रणाली भी कहा जा सकता है। छोटी और बड़ी कई प्रकार की नलिकाओं में से एक अंश से दूसरे अंश में भिन्न भिन्न प्रकार के तरल पदार्थ प्रतिक्षण दौरा करते रहते हैं। प्रकृति शरीर के प्रत्येक तंतु को जो खाद्य परोसती या पहुंचाती है, जल ही उसका वाहन है। शरीर का प्रत्येक शुद्धतम कोश भी सर्वदा पानी से धुलता रहता है। शरीर में रस की समता को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पानी के पर्याप्त मात्रा का सेवन करना चाहिए। यदि हम ऐसा ना करें तो प्रकृति खून, मांसपेशी और शरीर के विभिन्न तंतुओं से जलीय अंश लेने के लिए बाध्य होता है। उसके फल स्वरूप प्यास बढ़ती है, आंखें बैठ जाती हैं, होंठ और जीभ सूख जाता है, मल कड़ा हो जाता है, वजन घट जाता है, त्वचा शुष्क व सिकुड़ जाती है और उसके बाद रक्त प्रवाह बंद होने से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। शरीर में जल का अभाव होने से शरीर के अंदर अम्ल और क्षार के अनुपात में भी परिवर्तन आता है और कभी कभी शरीर का ताप बढ़ जाता है। गर्म देशों में काम करने वाले लोग यदि प्यास के अतिरिक्त पानी ना पिए तो उनकी कार्य शक्ति नष्ट हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और सिर घूमना, अवसाद तथा श्वास कष्ट आदि लक्षण प्रकट होते हैं। अंत में जीवन शक्ति का क्षय भी हो सकता है। साधारण पेयजल जब पेट में पहुंचता है तो पीने वाले के स्वभाव अनुसार कभी जल्दी कभी देर में शरीर कणों में समाता है और उनके संपर्क में देर तक रहने से धुलाई का काम भी करता है। पीने पर तुरंत ही अन्य मार्ग से होकर वो आमाशय में पहुंचता है और पाचन क्रिया पर प्रभाव भी डालता है। पानी पीने से मूत्राशय किडनी का कार्य भी सुचारू रूप से होता है। साथ ही शरीर की भिन्न भिन्न रस स्रावी ग्रंथियों का स्राव ठीक से होता है। विशेषज्ञों के अनुसार पर्याप्त पानी पीने से हृदय और त्वचा आदि शरीर के समस्त यंत्रों की कार्य क्षमता बढ़ती है तथा रक्त साफ होकर सारे शरीर में सुचारू रूप से संचालित होता है। तंदुरुस्त रहने के लिए हर एक मनुष्य को 24 घंटे में 3 लीटर पानी या प्रवाही द्रव्य की आवश्यकता है। पीने का पानी हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। हर रोज 2-3 लीटर पानी पीने से मूत्र के द्वारा दूषित पदार्थ बाहर निकल जाता है। ये स्वास्थ्य रक्षा का एक प्रधान उपाय भी है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी जानकारी जिसका विषय था जल ही जीवन का आधार। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है आम की फसल के रोग, समस्या और समाधान।
2: किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए आज हम चर्चा करेंगे आम की फसल

0: बहुत अधिक आम के बाग लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो अगर हम इस समय की बात करें, यानी कि जून माह की बात करें, तो जून का माह आम की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी में हम सबसे पहले तो सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है। आम के जो थांवले हमारे किसान भाई जी ने बनाए होते हैं, उनमें लगातार सिंचाई हम करते हैं, जिससे आम की जो फलत है वो अच्छी हो और उसमें किसी भी तरीके से जो है आम में पानी की कमी न आने पाए। बात यह आती है कि जून महीने में कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो लगते हैं और उनका निदान कैसे किया जाए। देखिए, एक रोग लगता है ब्लैक टिप, और भैया इस रोग को कैसे बचाया जाए और किस तरह से भैया हम अपनी फसल की रक्षा करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोयला या ब्लैक टिप रोग जो है आम की फसल के लिए सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, जो आमतौर पर ईंट भट्टे जहाँ पर होते हैं और उनसे निकलने वाले जो धुआं होता है, उसके लगने से इसके जो फल हैं वो सिरे से काले पड़ने लगते हैं। तो भैया देखिए, अगर ऐसा आपको नज़र आ रहा है, आपका जो फल है वो काला पड़ रहा है, तो भैया जो समय चल रहा है उसमें बोरेक्स का आप जो है 0.6% से 1% का घोल बनाकर 6 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में जो है पेड़ों में आप छिड़काव कर दें और इस रोग से आप बचाव कर सकते हैं। एक और समस्या आती है, एंथ्रोक्नोज नाम का एक रोग होता है। यह फफूंद जनित बीमारी होती है, और जून में पड़ने वाली जो उमस भरी गर्मी है और बारिश वाला मौसम होता है, तो ऐसे में टहनियों और फलों और जो फल होते हैं उन पर काले धब्बे लग जाते हैं, और इन काले धब्बे लगने की वजह से बहुत सारे दिक्कतें सामने आती हैं। इनके समाधान के लिए रोग प्रभावित हिस्सों को काट छांट कर उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, और उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर देना चाहिए। इन दिनों में एक समस्या और बहुत अधिक देखने में आती है, वो आती है डाईबैग या टहनी सूखने की समस्या। तो उसका कारण ये होता है कि इसमें टहनियाँ ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती हैं और पत्तियों का रंग पीला या भूरा होकर झड़ने लगता है। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो सूखे हुए भाग को स्वस्थ भाग से 2 से 3 इंच नीचे तक काट कर उसको हटा देना चाहिए, और कटे हुए हिस्से पर बोर्डो पेस्ट या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा देना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आजकल हम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हम अपने जो फल हैं उनको देख लें और किस्मों के हिसाब से तुड़ाई हम जारी रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये समय चल गया, जैसे काला कलमी अगर आम आपने लगा रखा है तो उसका बहुत अच्छा समय है इस समय तुड़ाई का, क्योंकि ये बाज़ार में आना शुरू हो गया है। उसके अलावा दशहरी की भी बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिनके तुड़ाई हमारे किसान भाई आजकल जारी रख सकते हैं। तो हम किसान भाइयों को ये सलाह देंगे कि तुड़ाई के विषय में ये ध्यान रखें कि मांग के हिसाब से आप तुड़ाई करें, जितनी बिक्री आपकी हो उस हिसाब से तुड़ाई करें, और अच्छी तरह से आप भंडारण करके सुरक्षित स्थान पर भेज दीजिएगा, तो आपके आम से आपको बहुत अधिक आमदनी इन दिनों में मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, आम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है, तो इसमें काफ़ी निगरानी की देखभाल की ज़रूरत है। हम उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, आम से बहुत अधिक उत्पादन लेंगे, आमदनी लेंगे। तो किसान भाई, आज तुम खेती की बातें यहीं संपन्न करते हैं। किसान भाइयों, राम राम।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी जानकारी आम की फसल के रोग समस्या और समाधान विषय पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

अब से कुछ देर बाद सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है प्रसारित होगा सुबह 9:25 पर, जिसमें आप सुनेंगे आज रागनी, कलाकार होंगे सेठपाल सिंगारे और साथी। बात आसपास की, ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:50 पर। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुहाना सफर हर रोज की तरह सुबह 10 बजे, और जागरूक श्रोता कार्यक्रम में आज सुबह 10:30 पर श्रोताओं के फोन पर

श्रोताओं से फोन पर बातचीत का विषय हमारा होगा आज पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे दोपहर 12:00। शास्त्रीय संगीत में योगराज नायक का सितार वादन प्रसारित होगा दोपहर 12:15 पर।

0: अपराह्न 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता जिसका विषय होगा जलवायु परिवर्तन का ग्रामीण आजीविका पर प्रभाव। वार्ताकार होंगी अनु। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजी पापा से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5 बजे। युववाणी में शाम 5:15 पर आज क्रम रहेगा ये शाम गजलों के नाम। इसके अलावा आपका सितारा क्रम में आप सुनेंगे अनूप अंटवाल से नंदनी की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:05 पर जिसमें आप सुनेंगे किसान भाइयों की खेती और पशुपालन संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। विविधा कार्यक्रम में बलराम आलूवालिया की वार्ता का विषय होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण एक चुनौती। कार्यक्रम का वक्त रहेगा शाम 6:45 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PSC, SDRF और UPSSF के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्य योजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर।

0: मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में कल से दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
1: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। तो नए चैलेंजेस हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी PAC, SDRF और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण और संरचना विकास एवं भावी कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि PAC, SDRF और UPSSF को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाए और सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाया जाए। श्री योगी ने महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से PAC की महिला बटालियनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर स्थित महिला PAC बटालियन परिसरों में क्रमशः वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना उदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई की अश्वरोही प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून के दृष्टिगत बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही SDRF को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खोज एवं बचाव कार्यों के लिए ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन की उपयोगिता पर विचार करने को कहा। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पर्यटन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की।
3: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रदेश है। बैठक में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन की भी समीक्षा की गई। श्री योगी ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। पर्यटन नीति 2022 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाया जाए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में पौधारोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। दौरे के पहले दिन वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज

0: लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है।
1: रक्षा मंत्री आज पूर्वाह्न 11:05 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अपराह्न 12:15 विश्व पर्यावरण दिवस पर कैंट स्थित कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम रोपित करेंगे। अपराह्न 12:40 पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर उनके पति के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। शाम को 4:00 दिलकुशा लॉन में आयोजित बायो युग ग्रीन कमांड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रतिभाग करेंगे। 6 और 7 जून को भी श्री सिंह लखनऊ में विभिन्न लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ प्रबुद्ध नागरिकों से भी मिलेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया हो। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM की शुरुआत की गई। JEM पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें ऐसी छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PSC, SDRF और UPSSF के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्ययोजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद 8:00 प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती है।

0: APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धीमे से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।
3: सूरज के साथ साथ
2: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आप सभी का स्वागत है। इस चमकदार सुबह में सूर्य देवता पूरी शान से मुस्कुरा रहे हैं और जब सुबह इतनी दमदार हो तो चेहरे पर स्माइल और बॉडी में एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है। और जो लोग सूरज के साथ साथ कदम मिलाकर चलते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। जब हम सुबह सुबह इस खूबसूरत धूप, इन चहचहाते पक्षियों और इस ताजी हवा को महसूस करते हैं तो दिल से हजारों धन्यवाद निकलते हैं हमारी इस खूबसूरत धरती के लिए, इस अनंत प्रकृति के लिए। और वैसे भी आज का दिन तो और भी खास है। क्यों? क्योंकि आज है विश्व पर्यावरण दिवस। ये दिन सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है हम सब के लिए। ये जो प्रकृति है, ये पेड़ पौधे हैं, ये नदियां हैं, ये सब हमें बिना कुछ मांगे जिंदगी दे रहे हैं। इसलिए हमारा भी फर्ज है कि इस पर्यावरण को और भी हरा भरा बनाकर, पानी की एक एक बूंद बचाकर और प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से दूर भगाकर इस धरती को खूबसूरत बनाएं। ये जो आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई थी साल 1972 में, जब यूनाइटेड नेशंस ने स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में दुनिया का पहला सबसे बड़ा सम्मेलन किया था। इसके ठीक दो साल बाद यानी 5 जून 1974 को पहली बार पूरी दुनिया ने एक साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। ये दिन हमें याद दिलाता है हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूक करने की, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि धरती हमारे पास हमारी अगली पीढ़ी की धरोहर है जिसको संभालना और संवारना हमारी जिम्मेदारी है। इस साल ये दिवस अजरबैजान में मनाया जा रहा है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है क्लाइमेट एक्शन, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2026 जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की इस पूरी लड़ाई में एक सबसे बड़ा विलन है जो हमारे घर से लेकर समंदर के अंत तक फैला हुआ है, और वो है प्लास्टिक। ये तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक ना तो गलता है ना सड़ता है, बल्कि हमारे पानी में और हमारे खाने के जरिए माइक्रोप्लास्टिक बनकर वापस हमारे ही पेट में जा रहा है। तो जब प्रदूषण ग्लोबल है तो इसका इलाज भी ग्लोबल होना चाहिए। विश्व स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करने की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। करना क्या है? प्लास्टिक का यूज़ कम करें। जब भी बाजार जाएं, कपड़े का थैला साथ लेकर जाएं। हमें यह समझना होगा कि ये प्लास्टिक धीरे धीरे हमारी धरती को खा रहा है। सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर रात तक हमारी ज़िंदगी का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां प्लास्टिक ने कब्जा ना किया हो। वैज्ञानिक शोध में सामने आया है कि हम अनजाने में हर हफ्ते एक ATM कार्ड के बराबर प्लास्टिक खा रहे हैं। पूरी दुनिया में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए इस समझौते पर काम किया जा रहा है कि प्लास्टिक का उत्पादन ही ना किया जाए और इसे रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल में लिया जाए। प्लास्टिक प्रदूषण का अंत किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये हर इंसान का फर्ज है। हमें याद रखना होगा कि हमारी धरती के पास हमें देने के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे पास रहने के लिए दूसरी धरती नहीं है।

श्रोताओं, गीत से पहले हम बात कर रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस की, जो कि आज हम मना रहे हैं 5 जून को। लेकिन इसके अलावा आज के दिन हम एक और बहुत बड़ा और ज़रूरी दिन के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। एक ऐसा दिन जिसके बारे में आमतौर पर लोग बात नहीं करते, लेकिन इस दिन का संबंध सीधा हमारी धरती से जुड़ा है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ा है और हमारे समंदर से जुड़ा है। इस दिन का नाम थोड़ा सा लंबा है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग, यानी अवैध, असूचित और अनियंत्रित रूप से मछलियां पकड़ने के खिलाफ जंग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका मतलब है कि समंदर में जो भी मछलियां पकड़ी जाती हैं, उनमें कुछ एक सूची है जो जिसके लिए एक लिमिट तय की गई है कि एक दिन में आप इतनी मछली पकड़ सकते हैं। तो अगर उस

0: उसके उस लिमिट के आगे अगर कोई मछली पकड़ता है तो उसके खिलाफ ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन को संक्षेप में IUU फिशिंग भी कहते हैं। ये दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2017 में घोषित किया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मत्स्य उत्पादक देश है और केवल भारत में ही इस क्षेत्र से 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। हर साल दुनिया भर में पकड़ी जाने वाली हर 5 में से एक मछली अवैध तरीके से पकड़ी जाती है, जिस वजह से हमारे समंदर का इकोसिस्टम तबाह हो रहा है और समंदर के जीव भी विलुप्त होने की कगार पर हैं। मछलियों के अवैध शिकार को लेकर दुनिया भर में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र, सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और केपटाउन समझौता। ये सभी कार्यक्रम समुद्र में निगरानी और अवैध मछलियों के शिकार के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। आज का दिन उन सभी जांबाज कप्तानों, कोस्ट गार्ड और संस्थाओं को सलाम करने का है जो दिन रात समंदर की सीमाओं पर इस अवैध शिकार को रोकने के लिए लड़ रहे हैं।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब रुख करते हैं 90 के दशक की, जब गानों में शानदार धुनें हुआ करती थी। हीरो हीरोइन का अपना अलग स्वैग हुआ करता था, विलेंस का अपना अलग खौफ होता था। और आज फिल्मी सफर के इस क्रम में हम बात करेंगे उस अदाकारा की, जिसकी आंखों की मासूमियत और घुंघराले बालों ने पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना दिया था।

आज फिल्मी सफर क्रम में बात हो रही है 90 के दशक की बेहद गॉर्जियस, चुलबुली और ग्लैमरस क्वीन रंभा की। अभिनेत्री रंभा का असली नाम अमृता था। इन्हें विजयलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। साउथ की फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली इस एक्ट्रेस को जब बॉलीवुड ने देखा तो देखता ही रह गया। बॉलीवुड में इन्होंने कदम रखा 1995 की फिल्म जल्लाद से, लेकिन असली धमाका हुआ 1997 में आई डेविड धवन की ब्लॉकबस्टर फिल्म जुड़वा से। अभिनेत्री रंभा ने साबित किया कि वे सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि कॉमेडी और डांस में भी उनका कोई मुकाबला नहीं। इसके बाद घरवाली, बाहरवाली, बंधन, क्रोध, जानी दुश्मन, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जंग और बेटी नंबर 1 जैसी कई फिल्मों में रंभा ने अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। आज भले ही अभिनेत्री रंभा फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन जब भी 90 के दशक के उस जादुई दौर का जिक्र होगा, रंभा के बिना वो सफर अधूरा रहेगा।

0: वन है, गोविंदा है हीरो उसका और माधुरी हीरोइन है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरत के साथ साथ। कार्यक्रम में आइए अब रुख करते हैं इतिहास के उन पन्नों पर जिनमें छपी हुई हैं कुछ खबरें आज के दिन की, यानी 5 जून को जो घटनाएं हुई थी, जो खास खबरें थी उनको हम आपको बता देते हैं। 5 जून 1981 को अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन ने एड्स के प्रभावों का पहला दस्तावेज प्रकाशित किया था। शुरुआत में इसे समलैंगिक कैंसर कहा गया, लेकिन 1982 में इसका नाम एड्स रखा गया। 5 जून 1984 को भारतीय सेना द्वारा पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। 5 जून 1999 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया कि कारगिल युद्ध में भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत सैन्य कार्यवाही शुरू कर दी है। 1870 को आज ही के दिन भारतीय ट्रेड यूनियन नेता और गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी का जन्म हुआ था। आपने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ये भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है। 5 जून 1659 को मुगल शासक औरंगजेब आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। 5 जून 2017 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से GSLV-MK3 को लॉन्च किया गया। इसे इसरो द्वारा विकसित भारत का सबसे बड़ा प्रक्षेपण वाहन माना जाता है। और आज ही के दिन 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में उत्तर प्रदेश के 23वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। आप 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत हैं। और आइए कार्यक्रम के अंत में रुख करते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की तरफ। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश, खंभे उड़े, पेड़ गिरे, 300 से ज्यादा वाहन दबे। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी बारिश, 3 दिन देरी से केरलम पहुंचा मानसून। उत्तर प्रदेश के 10 से अधिक जिलों में आंधी पानी, उत्तर प्रदेश में 18 तक आएगा मानसून। और अमर उजाला की ये सुर्खी है, विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार यानी आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। जनपद बिजनौर में पुलिस भर्ती परीक्षा के 12 केंद्रों पर लगभग 32,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। परीक्षा 8 जून से 10 जून तक 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। ये सुर्खी भी अमर उजाला से ही हमने ली है। जनगणना को ध्यान में रखकर किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में तबादले। दिव्यांग और असाध्य रोगी शिक्षकों के तबादले जनगणना के बीच किए जा सकेंगे। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, योगी आदित्यनाथ का नींव करौली बाबा और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट के विकास का निर्देश। यूपी में पर्यटन बढ़ाने के लिए बनेंगे नए परिपथ। ज्ञान भारतम मिशन से होगी संरक्षित भारत की प्राचीन ज्ञान संपदा। 13,70,000 से अधिक पांडुलिपियों का होगा सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण। आखिर में अमर उजाला के स्पोर्ट पेज पर प्रकाशित यह खबर है, इंग्लैंड की धरती पर 12 जून से शुरू हो रहे महिला T20 विश्व कप 2026 में हर टीम जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
2: फोटोशॉप करके कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन

0: चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
3: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
2: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
5: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र

0: किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the

0: हाजिरा जाएंगे और सनती और बुनियादी ढांचे के मौजूदा प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। वजीर आजम दोपहर को एक बड़े जलसायाम से खिताब करेंगे। जना मोदी शाम को दमन जाएंगे और तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इलाकाई बुनियादी ढांचे को खास तौर से फरोग देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 8 लेन वाले वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वजीर आजम कबायली खित्तों और मुजस्मा इत्तेहाद तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए कौमी शाहरा 56 पर अहम हिस्से को 4 लेन बनाने का संगे बुनियाद भी रखेंगे। अवामी फलाह बहबूद की खातिर वो सूरत में एक जदीद 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो 24 घंटे इमरजेंसी और ट्रामा खिदमात फराहम करेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ अहम और सनती बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों का भी आगाज किया जाएगा, जिनमें गुजरात में तरसीली निज़ाम की तौसी और वलसाड़ में बिजली की तकसीम की जदीद कारी शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो जब अपने अपने वतन वापस जाएं तो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। अहमदाबाद में चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आयुष की वजारत ने योग के साथ पूरे साल सरगर्मियों की हौसला अफजाई करने और सभी तबकों में सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए योग 365 का आगाज किया है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: वजीर आजम ने कहा कि ये चैंपियनशिप खेल मुकाबले से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर है और इससे दुनिया भर में योग के वसीतर पैगाम की तशहीर का मौका फराहम हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में माली पॉलिसी कमेटी की जानिब से किए गए फैसलों का ऐलान करेंगे। 6 अरकान पर मुश्तमिल माली पॉलिसी कमेटी ने बुध के रोज 3 रोजा तबादला ख्याल का सिलसिला शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी अहम पॉलिसी शरह में कोई तब्दीली नहीं की थी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: सरकार ने इफराद जर की शरह पर मबनी अशिया सारिफीन की कीमतों का इशारिया 4% तय किया है। मरकजी बैंक के लिए इसकी बालाई हद 6% और निचली हद 2% रखी गई है। अप्रैल के महीने में अशियाए सारिफीन की कीमतों का इशारिया मामूली बढ़कर 3.48% हो गया और ऐसा सोने और चांदी के जेवरात के साथ साथ रसोई की कुछ अशिया की कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ। चूंकि अशियाए सारिफीन की कीमतों का इशारिया तय की गई हदूद के अंदर है, लिहाजा इक्तसादी माहरीन ये उम्मीद कर रहे हैं कि अहम शरह सूद 5.25% की सतह पर ही बरकरार रहेगी। उनका यह भी कहना है कि मगरबी एशिया महास आरआई की वजह से इफरात जर की शरह और माशी तरक्की को लाहिक चैलेंजेस के तनाजुर में रिजर्व बैंक मोहतात रवैया अख्तियार करेगा। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो 97 साल के थे और तवील अरसे से बीमार थे। डॉक्टर कश्यप साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली आला सतह की उस कमेटी में शामिल थे जो एक साथ इंतखाबात कराए जाने के बारे में कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए तश्कील दी गई थी। वो 1983 से लेकर 1990 तक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फायज रहे। डॉक्टर कश्यप 100 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ थे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने उनके इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि डॉक्टर कश्यप ने अपने मुताले इल्म तसानीफ और अवामी खिदमत के जरिए भारत के आईन और पार्लियामानी जमहूरियत की सूझबूझ के सिलसिले में गरां कदर रोल अदा किया। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर तरुण कपूर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुशीर की हैसियत से मुद्दत कार में 1 साल की तौसी को मंजूरी दे दी है। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि

0: वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में जनाब कपूर की तौसी शुदा मुद्दत-ए-कार एक साल के लिए इस माह की 10 तारीख से शुरू होगी। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने वाशिंगटन में आलमी बैंक हेडक्वार्टर में नीलकंठ मिश्रा की बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तकर्री को मंजूरी दे दी है, जिसकी मुद्दत-ए-कार 3 साल होगी। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि जब तक नए उहदेदार जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं तब तक परमेश्वरन अय्यर की मुद्दत-ए-कार में तौसी भी दी गई है। आंध्र प्रदेश में एनडीए इत्तेहाद ने राज्यसभा की 4 खाली सीटों में से 3 तेलुगु देशम पार्टी को और 1 जनसेना पार्टी को देने का फैसला किया है। कल रात अमरावती में एनडीए के इत्तेहादियों के साथ मीटिंग के बाद वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का ऐलान किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रूस की कलीदी साझेदारी की स्ताइश की है और जोर देकर कहा है कि रूस के साथ अपना इश्तराक कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने की मगरबी मुल्कों की कोशिशें लाहासिल हैं और इनसे आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच रहा है। सरकर्दा आलमी खबर रसा एजेंसियों के सरबराहों के साथ गुफ्तगु में सदर पुतिन ने भारत की मुआशी तरक्की और उसकी आजादाना खारजा पॉलिसी को सराहा और कहा कि रूस भारत के साथ अपने इकतसादी राब्तों को वसत देने का पाबंद है। सदर पुतिन ने कहा कि भारत की मुआशी तरक्की उस मेहनत का नतीजा है जो भारत सरकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कर रही है। रूस के सदर ने यह भी कहा कि अमरीका के साथ भारत के सिफारती राब्तों से रूस के साथ वक्त की कसौटी पर खरे उतरने वाले उसके रिश्तों में कोई खलल नहीं पड़ता और ना ही ये कमजोर होते हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार मानता है और किसी दूसरे मुल्क के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात की वजह से किसी तरह के मनफी मुजमरात की कोई बात नहीं है। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि भारत एक अजीम मुल्क और अजीम जमहूरियत है और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को वसअत देता रहेगा। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुरे अर्ज पर जिंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: फितरत और कुराए अर्ज के तहफ्फुज के लिए माहौलियात के एतबार से मुस्बत इकदामात करने के लिए बेदारी बढ़ाने की खातिर ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत कौमी राजधानी में मैदान गढ़ी के मकाम पर नमो ऑक्सीजन पार्क में दरख्त लगाने के लिए एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों में कई मरकजी वजीर वज़राए आला अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली माहौलियात के आलमी दिन की तकरीबात में शामिल होंगे। मुख्तलिफ मुहिम तकरीबात और इकदामात के जरिए ये दिन लोगों और मुख्तलिफ तबकों को इस बात की तरगीब देता है कि वो पायदार मुस्तकबिल की खातिर माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के लिए तब्दीलियाँ करें। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एच शंकर ने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने सभी की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो ज्यादा साफ ज्यादा सरसब्ज और शादाब और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल के लिए काम करें। माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी लोगों पर जोर दिया है कि वो आबोहवा और मुस्तकबिल की खातिर फितरत से तहरीक हासिल करते रहने के अहद का इयादा करें। जम्मू कश्मीर के भदरवा में कल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह दो रोजा लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे, जिसका मौजू लेवेंडर गोज ग्लोबल है। चौथा लेवेंडर फेस्टिवल 6 और 7 जून को डोडा जिले के भदरवा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्किद किया जा रहा है। CSIR IIIM की जानिब से मुनक्किदा इस फेस्टिवल का मकसद जम्मू कश्मीर में पर्पल इनकलाब और लेवेंडर पर मबनी देही कारोबार की मुसलसल कामयाबी का जश्न मनाना है। समुद्री अशिया की बरामदात पर दो रोजा कौमी वर्कशॉप आज से विशाखापट्टनम में शुरू हो रही है, जिसका मकसद भारत की समुद्री अशिया की बरामदात में इजाफा करना और मुल्क भर में इस शोबे को मुस्तहकम करना है। इस वर्कशॉप में बेहतर बुनियादी ढांचे, कदर में इजाफे और पॉलिसी मदद के जरिए समुद्री अशिया की बरामदात में बेहतरी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साहेली कर्नाटक, केरलम, माहे, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्राइकल के हिस्सों में दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश का भी इम्कान है। मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्से, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार जजायर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में भी आज बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान आज साहेली आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहेगा। आज जापान के ककामी गहारा स्टेडियम में 18 साल तक की उम्र के मर्दों के एशिया कप के हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। पूल ए में 9 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन हासिल करने के बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारतीय टीम का ग्रुप मरहले का आखिरी मैच चीनी ताइपे के साथ था, जिसे उसने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 13-1 से जीता था। भारतीय टीम को सिर्फ जापान के हाथों शिकस्त का सामना हुआ था। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल में या तो जापान या पूल बी की सबसे ऊपर रहने वाली टीम का मुकाबला करेगी। खवातीन के अंडर 18 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप मरहले में कोई भी मैच न हारने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है और आज भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे उसका चीन से मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, वेनेजुएला की कारगुजार सदर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम आज गुजरात दादर नगर हवेली में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने सफाए अव्वल पर जगह दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का यह बयान भी नुमाया अहमियत के साथ शाये हुआ है कि खुद की फालत के लिए मुतबादिल तवानाई जरूरी है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के तावुन से बने डिजिटल पोर्टल का ऐलान। मगरबी बंगाल की कानूनसाज असेंबली ने कौमी ई विधान एप्लीकेशन के निफाज के लिए मुफाहमत पर दस्तखत किए। कुछ बैन अलावामी खबरें इस तरह से हैं, अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप की आमरीत को रोका, तुर्की और सऊदी अरब की आबनाए हुरमुस के मुतबादिल के तौर पर रेल रूट पर गुफ्तगु।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योगा 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना दिल एक मंदिर फिल्म का गीत। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म दीवाना का गीत मुकेश और साथियों की आवाज़ में। बोल हैं हसरत जयपुरी के और धुन है शंकर जयकिशन की।

0: दिल का हीरा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
2: सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाश

0: चैनल हर पल चंदन का एहसास।
1: कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नची पापात केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म समाधि का गीत आशा भोंसले की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

धर्मकांटा फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत था नौशाद का। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं

0: इसी के साथ कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। अब आप जिले की हलचल सुनेंगे।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
2: राम मंदिर परिसर स्थित नवनिर्मित मां भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंबरा ने वैदिक मंत्र चारण के बीच धन ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ही मातृ शक्ति भी मौजूद रहीं। दोनों साध्वियों ने इसे राम मंदिर आंदोलन के लंबे संघर्ष, त्याग और सनातन स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया। ध्वजारोहण के साथ पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। रामनगरी अयोध्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी सौगात दी है। जिले के मौसीवाला क्षेत्र में 17.72 करोड़ रुपए की लागत से लौकुश पार्क विकसित किया जाएगा। कचरे से कला थीम पर बनने वाले इस पार्क में स्क्रैप सामग्री से रामायण के प्रमुख प्रसंगों को 3D इंस्टॉलेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। आधुनिक साउंड लाइट शो, डिजिटल तकनीक और इंटरएक्टिव मॉडल के जरिए श्रद्धालु रामायण काल के विभिन्न प्रसंगों से साक्षात कर सकेंगे। पार्क में आकर्षक उद्यान, वॉकवे, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि
3: अयोध्या नगर निगम के द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी अंतर्गत 17.72 करोड़ का लकुश पार्क प्लेस टू वंडर पार्क स्वीकृत हुआ है।
2: अयोध्या में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। सिविल लाइन ईदगाह सहित सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज सकुशल संपन्न हुई। DM शशांक त्रिपाठी और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी की। सुरक्षा व्यवस्था के तहत ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। नमाज के दौरान देश दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी गई। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अयोध्या में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और नकल विहीन बताया। मंत्री ने कहा कि

0: करीब 54 लाख विद्यार्थियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक जैसी घटना सामने नहीं आई। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड के 7वें बैच के 835 अग्निवीरों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में कदम रखा। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण अवधि में जवानों को आधुनिक युद्ध कौशल, शारीरिक दक्षता और सैन्य मूल्यों का प्रशिक्षण दिया गया। परेड की समीक्षा ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने की और जवानों के उज्ज्वल भविष्य की कामना। ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने कहा,
1: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में ज्वाइन करेंगे।
0: अयोध्या नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। राम की पैड़ी और नया घाट से अभियान का शुभारंभ हुआ। नगर निगम क्षेत्र के लगभग 400 स्थानों पर एक साथ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों सफाई कर्मियों सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए। नगर निगम ने शहर वासियों से भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आह्वान किया कि निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में इक्ष्वाकु वंश की विशेष हाईटेक गैलरी बनाई जाएगी। डिजिटल तकनीक के माध्यम से भगवान श्री राम की 63 पीढ़ियों का इतिहास दर्शाया जाएगा। दर्शक डिजिटल प्रतिकृतियों के जरिए राजाओं के शासनकाल, धार्मिक महत्व और वंश परंपरा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह गैलरी नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। राम मंदिर निर्माण के बाद अब अयोध्या में निवेश का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अमिताभ बच्चन के बाद अब अभिनेता रणबीर कपूर ने भी विगत दिन तिहरा मांझा क्षेत्र में 2.42 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। बताया जा रहा है कि यह भूखंड राम मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे अयोध्या में रियल इस्टेट और निवेश गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गंगा दशहरा और बड़े मंगल के अवसर पर अयोध्या के सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन स्नान और पूजा करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। पर्व को लेकर घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी करता रहा। अयोध्या में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर जल प्याऊ और ORS वितरण के केंद्र स्थापित किए गए हैं।
2: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग लाइंग ने गौतम बुद्ध नगर के NTPC लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च एलायंस का दौरा किया, जिसमें म्यांमार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। इस मौके पर NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह तथा NTPC नेट्रा के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति एवं प्रतिनिधि मंडल को NTPC की विकास यात्रा, म्यांमार में कंपनी की पूर्व गतिविधियों तथा वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने वाली अनुसंधान, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहलों के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिनिधि मंडल ने नेट्रा की अत्याधुनिक इन हाउस पायलट सुविधाओं का भी अवलोकन किया, जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रीन हाइड्रोजन हब तथा कृषि एवं नगर ठोस अपशिष्ट गैसीकरण से विद्युत संयंत्र शामिल था। राष्ट्रपति ने NTPC की स्वच्छ ऊर्जा पहलों में विशेष रुचि दिखाई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा स्थित बैटरी पुनर्चक्रण एवं महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र की कंपनी लोहम के अत्याधुनिक संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की तकनीकी क्षमताओं, बैटरी रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं और भारत में हरित ऊर्जा एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की सराहना की। दौरे के दौरान मंत्री ने लिथियम आयन बैटरी के पुनर्चक्रण, महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी तथा ऊर्जा भंडारण समाधानों से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों, उत्पाद क्षमता और भविष्य की विस्तार योजनाओं की जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बैटरी रिसाइकलिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति देश की आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नवाचार आधारित कंपनियां भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। दौरे में मंत्रालय और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी आपूर्ति श्रृंखला तथा उभरती प्रौद्योगिकी के विकास पर भी चर्चा हुई। गर्मी की छुट्टियों में जनपद गौतम बुद्ध नगर में बच्चों में शिक्षा के साथ खेल प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन कर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। जिलाधिकारी ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि शतरंज मानसिक विकास, धैर्य, एकाग्रता एवं रणनीतिक सोच को विकसित करने वाला महत्वपूर्ण खेल है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी दिनों में अलग अलग स्थानों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
4: इस गर्मियों की छुट्टियों में विभिन्न हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट द्वारा अरेंज किए जा रहे हैं एंड सभी बच्चे आमंत्रित हैं। पूरे गौतम बुद्ध नगर के सभी बच्चों के लिए काफी सारे टूर्नामेंट्स हैं एंड पार्टिसिपेट करें एंड इसमें गर्मी का भी विशेष रूप से हम लोगों ने ध्यान रखा है।
3: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एफ काम होल्डिंग लिमिटेड और एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी हुई। इस समझौते के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर कार्गो संचालन को विकसित और विस्तारित किया जाएगा, जिससे उत्तर भारत में एयर कार्गो कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस साझेदारी के तहत एएफ काम अपने मालवाहक विमानों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेस करेगा और यहां से फ्रेटर सेवाओं का संचालन करेगा। इससे एयरपोर्ट को उत्तर भारत के प्रमुख लॉजिस्टिक और कार्गो हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। समझौते के दायरे में तीनों संस्थाएं मिलकर संभावित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पहचान करेंगी और कार्गो मांग एवं फ्लो के आधार पर मजबूत नेटवर्क प्लान तैयार करेंगी। साथ ही परिचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं के समन्वय के साथ संयुक्त मार्केटिंग रणनीति भी बनाएंगी, ताकि एयर कार्गो संचालन को दीर्घकालिक मजबूती और स्थिरता मिल सके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मुख्य परिचालन अधिकारी किरण जैन ने कहा कि यह साझेदारी एयरपोर्ट पर मजबूत एयर कार्गो इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि समर्पित फ्रेटर संचालन और उद्योग भागीदारों के सहयोग से क्षेत्र की कार्गो क्षमता को बढ़ावा मिलेगा तथा उत्तर भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे
6: जिले की हलचल, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रागनी। कलाकार हैं सेठपाल सिंगारे और साथी।

0: धरती गाती है कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आज आप सुन रहे हैं रागनी, कलाकार हैं सेठपाल सिंगारे और साथी।

धरती गाती है कार्यक्रम में आज आपने सुनी रागनी, कलाकार थे सेठपाल सिंगारे और साथी। हम आकाशवाणी के नचीपपात केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आसपास की में आपका स्वागत है। मैं हूँ इशिका कौशिक।
1: और मैं दिव्यम कन्वर।
0: और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही स्थानीय समस्याओं और मुद्दों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज है 5 जून अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। लेकिन इस उमस भरी गर्मी और लू यानी हीट वेव के बीच हमारा ध्यान केवल पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि उस पर भी है जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है।
0: आज हम बात करेंगे पर्यावरण दिवस के साथ साथ क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं, विशेषकर कोल्ड रूम की उपलब्धता पर, ताकि इस भीषण गर्मी का सामना सुरक्षित तरीके से किया जा सके।
1: जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का संरक्षण हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। भीषण गर्मी और लू के इस दौर में पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों ही हमारे लिए प्राथमिकता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रशासन की सक्रियता भी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में जानकारी के लिए आइए जानते हैं प्रभागीय वन अधिकारी बिजनौर श्रीमान जय सिंह कुशवाहा से। सर, जैसे मानसून सत्र आने वाला है, सो वृक्षारोपण के ऊपर या पारंपरिक पेड़ों को बढ़ाने के लिए वन विभाग की क्या तैयारियां हैं?
2: जुलाई में ये प्लांटेशन होता है। जैसे ही मानसून सीजन स्टार्ट होता है, जुलाई में हम लोग प्लांटेशन करते हैं। उसके लिए विधिवत तैयारी की जाती है। जैसे नर्सरी में पौध का उगान किया जाता है, तो हमारे ये बिजनौर में 19 नर्सरियां हैं। सभी नर्सरियों में पर्याप्त मात्रा में पौधे उपलब्ध हैं जो कि हम मानसून में लगाएंगे। उसके

0: पहले अग्रिम मृदा कार्य किया जाता है। अग्रिम मृदा कार्य में जहाँ भी हमें पौधे लगाने होते हैं उस साइट को चयन किया जाता है, उसकी KML फाइल बनाई जाती है और उसमें गड्ढे खोदे जाते हैं। गड्ढे खोदने से ये होता है कि में हवा वगैरह अच्छे से लग जाता है और उसके बाद पौधों की जो सफलता प्रतिशत है वो बढ़ जाती है। फिर उसमें खाद वगैरह डाल के उसको ढक देते हैं। फिर उसके बाद मानसून के टाइम पे हम पौधे लगाते हैं। वहाँ पे जो भी पौधे लगाते हैं उसको मेंटेन करते रहते हैं, रेगुलर सिंचाई करते हैं ताकि उसकी सफलता बनी रहे।
1: वन विभाग इस बार पौधों की जियो टैगिंग और उनके सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए क्या तकनीक इस्तेमाल कर रहा है?
0: जो भी प्लांटेशन वन विभाग करता है उसको जियो टैग किया जाता है, या अन्य विभागों द्वारा जो भी प्लांटेशन होते हैं उसको भी जियो टैग किया जाता है। पहले जैसे बताया मैंने, जो भी साइट में प्लांटेशन करना है उसको KML फाइल बना लेते हैं। KML फाइल से ये होता है कि जहाँ भी प्लांटेशन हमने किया वो हमें पता होता है यहाँ पे किया है, उस पर ओवरलैपिंग की समस्या नहीं होती है। और जब भी इस पर जाँच होती है, जैसे मॉनिटरिंग होती है ऊपर से, तो काफ़ी आसान होता है कि जैसे आपने बस KML खोला उसके बाद साइट पर आप चले गए कि हाँ इतने हेक्टेयर में प्लांटेशन है, इतने प्लांट्स यहाँ पे लगे होने चाहिए थे, कितने अभी लगे हैं, वो सारी बातें क्लियर हो जाती है।
1: श्रोताओं, साथ ही हमारे साथ जुड़ी कल्याणी फाउंडेशन की प्रबंधिका एवं समाज सेविका वंदना कोटनाला जी। आप हमें बताइए कि आपका पर्यावरण के साथ जितना कार्य रहा है उसमें आपका क्या अनुभव रहा है?
2: सबसे पहले तो सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये धरती जब हरी भरी रहेगी तभी हम सब सांस ले पाएंगे और तभी हम लोग अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। दरअसल पौधरोपण सभी करते हैं, लेकिन उन पौधों का संरक्षण करना बहुत जरूरी होता है जिन पौधों को हम रोपते हैं। कई जगह देखा है कि पौधे लगाए जाते हैं और उनका संरक्षण नहीं होता, उनमें पानी नहीं डाला जाता तो वो सूख जाते हैं, तो उसका कोई फल हमें नहीं मिलता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें, चाहे हम दो ही पौधे लगाएं, क्योंकि अभी गर्मी का समय है तो हम दो ही पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें तो हमारा पौधा लगाना सफल हो जाएगा।
1: मैम, जब आपने पौधे लगाए तो किस तरह से आपने उनको पाल पोस के बड़ा किया?
2: 3-4 साल से ही हम लोगों ने पौधे लगाए हैं, तो ज्यादा हमने स्कूलों में पौधे लगाए हैं, सार्वजनिक स्थानों पे पौधे लगाए। अब जो सार्वजनिक स्थानों पे लगाए हैं उनको ट्री गार्ड के साथ लगाया है ताकि उनकी सुरक्षा भी हो जाए और जल की भी व्यवस्था हम लोगों ने करी है।
1: पौधे लगाने के साथ साथ और क्या ऐसे उपाय हैं, क्या ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम पर्यावरण के लिए सकारात्मक रूप से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं?
2: धरती को हरा भरा रखना हर मनुष्य का पहला कर्तव्य है। धरती के लिए कुछ कार्यों को करना बहुत जरूरी है, जैसे कि पॉलीथिन का अपने घरों में कम उपयोग करना ताकि हमारी धरती पॉलीथिन के कुप्रभाव से बची रहे। दूसरा, पौधरोपण बहुत अच्छा कार्य है। जैसा कि अब बरसात आएगी तो बरसात में हर कोई अपने आसपास के स्थानों पर 5 या 10 पौधे लगा सकते हैं।
1: मैम, जो हमारे युवा साथी या माताएं बहनें आपको सुन रही है उन सभी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
2: पहले तो मैं युवाओं के लिए कहना चाहूंगी कि युवा हमारी वो शक्ति है, एक मुट्ठी मार देना जमीन में तो वो पानी वहां से निकाल सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी शक्ति होती है। युवा बच्चे जो भी काम करते हैं उस काम से समाज में बहुत जल्दी जागरूकता फैलती है। महिलाओं की जहां तक मैं बात करूं तो माँ वो शक्ति है जो पूरे घर को एक सूत्र में बांध के रखती है। तो माँ जो सोचती है वो अपने बच्चों में देती है और वो बच्चे समाज के लिए एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ समाज के लिए नागरिक बना दे। एक बार पुनः पर्यावरण दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: श्रोताओं, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण विषय की ओर। बिजनौर में लू और भीषण गर्मी से निपटने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। स्वास्थ्य केंद्रों और जगह जगह पर कोल्ड रूम की विशेष व्यवस्था की गई है।
4: इस विषय पर आइए जानते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह से हुई हमारी विशेष बातचीत। श्रीमान, आप हमें बताइए कि बदलते मौसम के साथ भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला अस्पताल PHC और CHC स्तर पर क्या तैयारियां की गई हैं?
5: भीषण गर्मी को देखते हुए जिस तरीके से लू चल रही है और बारिश के साथ साथ में बीच बीच में उमस भी बढ़ रही है, तो सभी जिला चिकित्सालय में और जितने भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी पर लोगों को उपचार के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जो हमारे 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरे जनपद के अंदर हैं और जिला अस्पताल जो हमारा यहाँ पर है उसमें कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है। अगर कोई भी व्यक्ति हाइपरथर्मिया या फिर हीट स्ट्रोक से पीड़ित इन अस्पताल में आता है तो वहाँ पर उसके इलाज के लिए अलग से एक कमरा आरक्षित किया गया है और बेड वहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। उस कमरे में कूलर की व्यवस्था की गई है, एक फ्रिज की व्यवस्था की गई है और कोल्ड स्पॉन्जिंग के लिए आइस पैक्स की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो भी दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए जो कि हीट स्ट्रोक के लिए या हाइपरथर्मिया के इलाज में काम आती है, वो सारी दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है।

0: दवाइयों की और सुविधाओं की। अगर कभी भी कोई ऐसी मुसीबत आती है, ऐसा लगता है कि हीट स्ट्रोक हो गया है या हाइपरथर्मिया हो गया है, तो नजदीकी अस्पताल में जाएं, किसी भी प्रशिक्षित चिकित्सक या झोला छाप के चक्कर में ना पड़े, सीधे सरकारी अस्पताल में जाएं। और पूरे जनपद के अंदर 300 से भी अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। इनिशियल स्टेज में आप ORS लेने के लिए या फिर पैरासिटामोल की दवाई लेने के लिए या जो भी आपके लक्षण है उसके अनुसार दवाई लेने के लिए वहां पर जा सकते हैं। सभी दवाइयां वहां पर भी उपलब्ध हैं, तो किसी भी तरीके की कोई असुविधा पूरे जनपद बिजनौर के अंदर नहीं है। केवल आपको अगर जरूरत पड़ती है तो सुविधाओं का लाभ उठाने की जरूरत।
1: सर, ये जानना चाहेंगे कि क्या वो ऐसे शुरुआती लक्षण है या फिर क्या ऐसे कारण है जिनकी वजह से हीट स्ट्रोक होता है?
0: देखिये, तो होता है हाइपरथर्मिया, कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, तो जब 101 डिग्री से ज्यादा जाता है तो हम कहते हैं कि हाइपरथर्मिया हो गया है। अब जो वातावरण का टेम्परेचर है वो ज्यादा है, और अपनी सुरक्षा करने के लिए टेम्परेचर से हमारी बॉडी लगातार उसका रिएक्शन कर रही है, तो उसमें क्या है कि पसीने ज्यादा आ रहे हैं, टेम्परेचर भी बॉडी का बढ़ रहा है, लेकिन हमारी बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है। क्रैम्प्स आ रहे हैं, बॉडी में दर्द हो रहा है, और बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ गया हमारी का, वो बॉडी उसको लगातार ये प्रयास कर रही है कि इसको रोका जाए किसी, तो कहते हैं हाइपरथर्मिया हो गया उसको। दूसरा होता है हीट स्ट्रोक हो गया, कि अब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की इतनी कमी होगी कि हमारा पसीना भी आना बंद हो गया, तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वातावरण के टेम्परेचर की तरह बढ़ने लगा, तो जो टेम्परेचर है हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा या जितना वातावरण का टेम्परेचर है उतना हाई हो गया, और बॉडी के अंदर हीट को रजिस्ट करने की जो क्षमता है नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो चुकी है, तो इसलिए अब वो हीट स्ट्रोक में चला गया। मतलब पेशेंट जो है अब ड्राई बॉडी होगी उसकी, पानी की कमी होगी, टेम्परेचर बढ़ गया, बेहोशी की हालत में जाने लगा, तो हम कहते हैं अब इसको हीट स्ट्रोक हो गया। तो ये लक्षण इसके होते हैं। इससे बचने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है, आप कभी भी घर से बाहर जाएं, धूप में जाएं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कम से कम 2 गिलास पानी पी के जरूर घर जाएं। पानी अपना साथ लेकर जाएं, बीच बीच में पानी पीते रहें। अगर बॉडी में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, तो आप ORS का घोल भी लगातार ले सकते हैं।
2: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि पर्यावरण का संरक्षण और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां दोनों ही हमारे लिए कितनी आवश्यक हैं। अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए पानी रखें और खुद भी हाइड्रेटेड रहें।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज के लिए बात आसपास के इस अंक में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे अर्थात दिव्यम कंडवाल
2: और इशिका कौशिक को दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ।
3: सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद।
2: नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम बात आसपास की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर।

0: भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर सुनने वाले हमारे सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सन 2023 के सफर में आज हम चलेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से जिसका नाम है सुहाना सफर। मैं हूं आज आपके साथ विवेक प्रताप सिंह और मेरे साथ हैं
1: मैं आपके साथ ही पारुल गोयल। दोस्तों, आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रही हूँ कि भारतवर्ष में रेडियो प्रसारण के सफलतम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम ये मनोरंजन और महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सभी श्रोता साथियों का हमारे इस दिलचस्प कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
0: आज की इस कड़ी में हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से लेकर चल रहे हैं सन 2023 की उन सुनहरी यादों में जिन्हें आप सब तक गली गली में, गांव और शहरों में बड़ी ही कुशलता और सहजता के साथ पहुंचाया था हमारी आकाशवाणी ने और हमारे रेडियो ने।
1: बिल्कुल विवेक जी, ज्ञान हो या मनोरंजन का क्षेत्र, समाचार हो या महत्वपूर्ण सूचनाएं, सब कुछ मिलाकर यदि कहा जाए तो एक अनमोल खजाना रेडियो प्रसारण ने हम तक पहुंचाया है। इस अनमोल खजाने के लिए हम सब भारतीय रेडियो प्रसारण के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे।

0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप पारुल जी, रेडियो ने हमेशा से ही हमारी दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सुहाने सफर में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम अपने श्रोताओं का थोड़ा सा मनोरंजन ही करवा दें।
1: आपका बहुत अच्छा ख्याल है विवेक जी, क्योंकि मनोरंजन के बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा सा लगता है।
0: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का ये प्यारा सा नगमा, जिसको आवाज दी है सुनिधि चौहान और दानिश साबरी ने।

0: दोस्तों, आप सब झूम उठे होंगे ये कर्णप्रिय गीत और संगीत सुनकर। हम भी तो यही चाहते हैं कि आप सब हमेशा इसी प्रकार रेडियो पर हमारे मनोरंजक कार्यक्रम इसी प्रकार प्यार के साथ सुनते रहें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं सन 2023 के उस सुहाने सफर पर, जब देश और विदेश में बहुत सारी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई।
1: जी पारुल, यही वो दौर था जब 23 अगस्त 2023 को भारत का गौरवशाली मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफलतापूर्वक उतरा था। ऐसे गौरवान्वित कार्य को करने वाला हमारा देश भारत विश्व का पहला देश है और चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का चौथा देश है।
0: बिल्कुल विवेक जी, उपलब्धि एक ऐसी, ये वाली उपलब्धि एक ऐसी सफलता थी जिसने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी ऊंचाई दी जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिक गई। इतना ही नहीं, वरन सितंबर 2023 में इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च किया था, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी।
1: बिल्कुल, और बातें तो देखें हम बहुत करेंगे, जानकारियां भी हमारे पास बहुत हैं अपने श्रोताओं को देने के लिए, लेकिन उससे पहले एक और गीत

हम अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं। लेकिन 10:30 पर हमारा जो कार्यक्रम आता है जागरूक श्रोता, जो आज आएगा 10:30 पर, उसमें हम अपने श्रोताओं से कुछ बातें करेंगे। जिस जो विषय है आज का हमारा श्रोताओं से बात करने का, वो आज हमारा रहेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास। यानी हम सब मिलकर, हम भारत के नागरिक मिलकर या विश्व के लोग मिलकर पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं खराब होने से, और क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इस विषय पर हम आज अपने जागरूक श्रोता कार्यक्रम में श्रोताओं से बात करेंगे। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 9457078288, 9457078288। तो आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है OMG 2। इस गीत को आवाज़ दी है हंसराज रघुवंशी ने।

0: हमें पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये गीत और संगीत बहुत पसंद आया होगा। चलिए आप सबको एक बार फिर से ले चलते हैं सन 2023 के उस सुहाने सफर पर, जब हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने के नेताओं ने भारत की मेजबानी और नेतृत्व की खुले दिल से तारीफ की थी।
1: जी पारुल, बिल्कुल। भारत ने केवल सम्मेलन की मेजबानी ही नहीं की बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। मई 2023 में ही भारत के नए संसद भवन का भी उद्घाटन हुआ था। सही मायने में अगर कहा जाए तो ये निर्माण कार्य आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।
0: विवेक जी, यही वर्ष भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी साक्षी रहा।
1: और वो कैसे?
0: वो ऐसे कि सितंबर 2023 में संसद ने महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभाओं में 33% आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। ये कदम भारतीय महिलाओं के लिए बहुत ही अहम था।
1: हाँ, और जब जब भारत ने सफलता के नए शिखरों को छुआ तब तब रेडियो ने उन गौरवपूर्ण पलों की गूंज घर घर तक पहुंचाई। भारत की सभी उपलब्धियां केवल इतिहास के पन्नों में ही दर्ज नहीं हुई बल्कि रेडियो प्रसारण के माध्यम से करोड़ों भारतीयों के हृदय तक पहुंची हैं।
0: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे, बहुत देर से हम अपने श्रोता दोस्तों से बातें कर रहे हैं और इन रोचक किस्सों को साझा करते करते हम ये भूल ही गए कि हमें अपने श्रोता दोस्तों का मनोरंजन भी तो करना है। तो आइए सुनते हैं सन 2023 में बनी फिल्म डंकी का ये प्यारा सा गीत।

0: तो पारुल जी, 2023 की देखिए हम बातें कर रहे हैं अपने कार्यक्रम सुहाना सफर में, और बहुत सारी बातें हमने की, राजनीतिक दृष्टि की बात की हमने, महिला शक्ति की बात की हमने, और जो भी हमारे पास उपलब्धियां थी, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, और बहुत सारे क्षेत्र हमारे थे, चाहे वो सरकार की योजनाएं थी, उनके बारे में हमने बात की। और अगर हम खेलों की दृष्टि से देखते हैं 2023 को, तो ये साल भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। चीन में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 100 से भी ज्यादा पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया।
1: विवेक जी, इसी वर्ष भारत ने विश्व कप में लगातार शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल तक पहुंच गया। यद्यपि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में चर्चा का केंद्र बनी रही।
0: जी, और इसी साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक ने भी अपने पंख फैलाए, और शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्रों को तेजी के साथ प्रभावित किया।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म टाइगर 3 का ये गीत और शानदार आवाज़ थी अरिजीत सिंह की। यदि सन 2023 को फिल्मी दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष फिल्मी जगत के लिए अत्यंत सफल और यादगार रहा। पठान, जवान, एनिमल, 12th फेल, गदर 2, रॉकी और रानी की प्रेम कथा जैसी बहुत सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और विश्व भर में हजारों करोड़ रुपए का व्यवसाय किया और ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ उस उत्कृष्ट कहानी, तकनीक और अभिनय के क्षेत्र में भी निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है।
1: बिल्कुल। और देखिए, फिल्मों की बात आपने करी, बहुत सारी फिल्में 2023 में आई थी और बहुत सारा हमारा मनोरंजन भी उन्होंने किया था। और उसी के गीत हम लगातार पिछले 3 दिनों से, और आज हमारा तीसरा दिन है,
0: जी
1: सुनवा रहे
0: बिल्कुल
1: हैं अपने श्रोताओं को। और श्रोता भी हमारे मनोरंजन कर रहे हैं अपना गीतों के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से। आकाशवाणी हमारा हमारे श्रोताओं के साथ हमेशा से है। लेकिन देखिए, समय भी हमारे पास कम है तो हम अपने श्रोताओं को जल्दी से बता देते हैं कि 10:30 पर हमारा जो कार्यक्रम रहेगा जागरूक श्रोता, उसमें हमारा आपसे बात

0: करेंगे आपसे। और देखिए कार्यक्रम के अंत में एक और गीत
1: जी
0: सुनवा देते हैं अपने
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं को। ये हमने लिया है फिल्म गदर 2 से, जिसको आवाज़ दी है नितिन मोहन और साथियों ने।

0: दोस्तों, इस कर्णप्रिय गीत की धुनों में हम ऐसा खो गए कि टिक टिक करती हुई घड़ी की सुइयों पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। अब समय किसी के लिए भी नहीं ठहरता है और अब समय हमें और इजाजत नहीं देता है अपने श्रोताओं के साथ बने रहने की।
1: तो देखिए श्रोताओं, समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। तो मुझे यानी विवेक प्रताप सिंह को
0: और मुझे पारुल गोयल को
1: कार्यक्रम सुहाना सफर संपन्न करने की अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जागरूक, माफ कीजिएगा, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त विवेक प्रताप सिंह, कार्यक्रम जागरूक श्रोता लेकर, और मेरे साथ हैं
1: मैं पारुल गोयल
0: जी। और आज देखिए, पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं।

0: 5 जून है आज, और ये
1: आज है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज आप सबको बहुत बहुत बधाइयां इस दिवस की।
0: जी बिल्कुल। देखिए पारुल जी, अक्सर हम सोचते हैं कि पर्यावरण को बचाना हमारा काम थोड़ी है, ये तो सरकार का काम है,
1: जी
0: बड़ी बड़ी
1: जी
0: संस्थाओं का काम है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन सच तो ये है कि हमारा एक एक छोटे से छोटा कदम, जैसे पानी की हर एक बूंद बचाना, ये भी एक छोटा सा कदम है पानी बचाने का। चाहे हम अपने साथ प्लास्टिक का यूज़ ना करें
1: जी
0: और घर
1: बिल्कुल
0: से कपड़े का थैला ले जाएं, ये भी पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारा सामूहिक प्रयास हो सकता है। तो हमारे श्रोता कौन कौन से ऐसे काम करते हैं जिससे पर्यावरण बच सके, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, हमें आज उनसे इस विषय पर बात करनी है कि कौन कौन से सामूहिक प्रयास वो करते हैं। इस विषय पर आज आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने सुझाव साझा कर सकते हैं, अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी बात। बात शेयर करने के लिए हमारा, देखिए आपको कॉल मिलाना पड़ेगा, तो कॉल मिलाने के लिए हमारा नंबर है 9457078288, 9457078288। और देखिए
1: हमारे पास सभी आप सभी की कॉल्स आ रही हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: आइए सुनते हैं हमारी पहली कार्यक्रम की पहली कॉल। हेलो।
2: हेलो नमस्कार
1: हाँ नमस्कार
2: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: जी राकेश जी कैसे हैं आप?
2: जी बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। इस समय आजकल थोड़ी बूंदाबांदी हो जाती है
1: जी
2: हमारे यहाँ,
1: जी जी बारिश हो
2: और
1: रही है
2: बादल हो जाते हैं। अभी तो साफ
1: हाँ
2: है
1: जी
2: लेकिन बारिश हो जाती है 2-3 घंटे के बाद, और
1: जी जी
2: थोड़ी थोड़ी हो जाती है हर रोज।
1: हाँ जी राकेश जी, आज
2: जी जी
1: राकेश जी
2: जी
1: पता है आपको आज क्या क्या दिन है? एक एक बहुत
2: आज
1: विशेष दिन
2: है
1: है।
2: विश्व पर्यावरण दिवस।
1: जी जी जी आपको बधाइयाँ
2: जी
1: बहुत बहुत इस दिन की।
2: और आपको भी
1: जी
2: और पूरी
1: धन्यवाद।
2: आकाशवाणी नजीब आबाद की टीम को भी
1: जी जी
2: विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक
1: जी
2: शुभकामनाएं।
1: जी हाँ
2: जी।
1: जी राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है पूरा विश्व हमारा।
2: पूरी दुनिया, वहाँ विश्व। हाँ तो मैं इस विषय पे मैं एक कहना चाहता हूँ कि हमें पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए, और
1: जी
2: हमें आज से देखो पर्यावरण को हमें बचाना है। देखो पहले क्या होता था, पहले की बात करें तो पहले मौसम बदलता था,
1: जी
2: परिवर्तन था। आज क्या हो रहा है, आज मौसम जो है बिगड़ रहा है। क्यों
1: जी
2: बिगड़ रहा है, तो अगर थोड़ी सी बात करें तो मैं अपने गांव में, मेरे गांव में एक व्यक्ति आए थे, वो है टीचर थे वो हमारे
1: जी
2: प्राइमरी स्कूल की। तो
1: जी जी
2: हमारे बैठे थे, बात करनी थी, तो
1: हाँ जी
2: हमने मैंने पिछली बात में कहा पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, और इससे जो है हमारे जो हिमाचल हिमाचल हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य है
1: हाँ
2: यहाँ
1: जी
2: लैंड स्लाइड होती है, आपदा की है, ये क्या है? तो
1: जी जी
2: वो क्या बोलने लगे हैं, वो बोलने की तो कुदरत की देन है। मैंने बोला कि नहीं, आज भी मतलब आपकी गलत सोच है, कुदरत की देन। देखो
1: जी
2: कुदरत कुदरत जो है वो समय से वर्षा कर रहा है, अगर हम
1: जी
2: पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो फिर अब इतनी बारिश आएगी तो कहाँ जाएंगी फिर,
1: जी जी जी
2: तो आएगा। इसलिए
1: जी
2: कहीं हम विकास के नाम से जो है अपने पर्यावरण का जो है नुकसान कर रहे हैं।
1: जी जी जी
0: तो राकेश जी आप बोल रहे हैं शिमला से।
2: जी
0: जी देखिए जून का महीना चल रहा है और हम देखते हैं कि कुछ पीक दिन होते हैं, जैसे कि जून का ही महीना होता है, कि इनमें पहाड़ों पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं और अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, तमाम लंबे जाम लग जाते हैं। ऐसे में क्या जिम्मेदारी है, होनी चाहिए टूरिस्टों की, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप टूरिस्टों को कि वो पहाड़ों पर जाकर उन्हें
2: देखो
0: क्या करें कि
2: मैं
0: जिससे
2: आपके
0: पहाड़ों को
2: आपके
0: नुकसान ना
2: मा,
0: हो?
2: आपके माध्यम से मैं आकाशवाणी टीम के माध्यम से मैं टूरिस्ट को एक संदेश देना चाहता हूँ। अच्छी बात, अगर आप हिमाचल का दीदार करने आते हैं, घूमने आते हैं, तो आप अगर मानो कि आप 10 या 20 लोग आ रहे हैं,
1: जी
2: पूरा संगठन आ गया, तो आप एक ही गाड़ी या तो आप ट्रेन का सफर करना चाहिए। अगर पहाड़ों की ओर आ रहे हैं तो ट्रेन का सफर
0: जी
2: करना चाहिए। अब देखो अगर आप हिमाचल आएंगे घूमने, अगर मानो कि आप पूरी टीम हिमाचल घूमने आएंगे, अगर
0: जी
2: आपके पास 4 गाड़ी तो आप 4 गाड़ी लाएंगे। तो मैं
1: जी
2: ये समझता हूँ कि अगर आप एक ही जगह पे जा रहे हैं, मानो कि आप शिमला रहे, जब आप सबको एक साथ एक जगह पे जाना, तो क्योंकि एक ही अगर या तो बस में ट्रेन सफर बस बस का सेवन करेगा या तो एक ही गाड़ी में सभी एक साथ आए, तो इसलिए कि हमारा शहर पहाड़ों का जो पर्यावरण नहीं बच सकता है। तो
1: जी
2: मेरा
1: जी
2: ये सभी टूरिस्ट से यही आग्रह रहेगा कि भारत सरकार ने पूरे देश में जो है वंदे वंदे भारत ट्रेन भी

0: चार की है, बस सेवा भी है, तो इसलिए आप जितने भी टूरिस्ट है अपनी अपनी गाड़ी ना एक ही अगर एक ही वाहन में अगर सफर करे तो इसलिए भी हमारा पर्यावरण क्या बोलते हैं ज्यादा ट्रैफिक भी बच सकता है और पर्यावरण जो वायु प्रदूषण है वो भी बढ़ सकता है।
1: जी बिल्कुल राकेश जी, आपका बहुत अच्छा ख्याल है, क्योंकि अभी बड़े शहरों में भी यही प्रयास चल रहा है कि अगर एक ही एरिया में बहुत सारे लोग ऑफिस जा रहे हैं तो अपनी अपनी गाड़ियों से ना जाएं, एक ही गाड़ी करके सब लोग जा सकते हैं, उससे हमारा पेट्रोल और तेल भी बचेगा और
0: और
1: प्रदूषण भी नहीं
0: सबसे
1: होगा।
0: बड़ी बात मैंने एक बात मैं ये जोड़ना चाहता हूँ
1: जी
0: कि अच्छी बात है, अगर आपके पास अगर आप आपकी फैमिली में 7 लोग हैं
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: 7 लोग अगर अपनी अपनी गाड़ी लाते तो अच्छी बात है। तो
1: बिल्कुल
0: मानो कि अगर आप अपने अपनी गाड़ी जा रहे, अगर मानो कि आप अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, सब तो चला चलो आप अपना वाहन अलग अलग स्थान पे लेना, अगर मानो कि आप एक ही फ्लोर पे जा रहे हैं, एक ही एक ही एक ही एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, अगर आप मानो कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप अगर आपको सभी ने संगठन में कि हम एक साथ सारे घूमने जाएंगे, अगर
1: जी
0: एक
1: जी
0: साथ सारे घूमने जाएंगे तो फिर अलग अलग गाड़ियों की
1: बिल्कुल
0: रेंट
1: बिल्कुल,
0: जाने की जरूरत ही नहीं है।
1: आपका बहुत अच्छा ख्याल है और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा राकेश जी, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा आने वाले कार्यक्रमों में भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा ख्याल था इनका कि अगर हम एक ही जगह जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी से जाएं। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप जा रहे हैं पहाड़ों पर तो देखिए पहाड़ होते हैं खूबसूरत, और खूबसूरती देखने का मन बार बार करता है, तो अगर बार बार आपको खूबसूरती देखनी है तो उस खूबसूरती का ध्यान भी तो रखना पड़ेगा
1: जी बिल्कुल, उसका
2: अपना।
1: ख्याल रखना पड़ेगा
2: जी
1: हमें, ये
2: बिल्कुल,
1: जरूरी है।
2: वहाँ पर हम जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो अगर हम ले जा रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे ही ना फेंकें, वहाँ पर जो डस्टबिन बने हुए होते हैं वहाँ पर जो आपका कचरा है
1: जी
2: उसको
1: जी
2: फेंकें,
1: कचरा
2: और
1: डस्टबिन
2: ऐसी
1: में डालें, इधर उधर गंदगी नदी में, तालाबों में, सड़कों पर गंदगी ना फैलाएं।
2: जी बिल्कुल। और देखें
1: जी
2: हमारा आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास, कॉल हमारे पास लगातार आ रही हैं, देखते हैं
1: जी
2: पारुल जी
1: आइए
2: अगला
1: अब
2: कॉल हमारे
1: देखते
2: पास
1: हैं
2: किसका है।
1: किसकी कॉल है।
2: हेलो
1: हेलो,
2: हेलो जागरूक श्रोता,
3: नमस्कार सर
2: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: जी। सर मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल ग्राम सिरसा से।
2: संभल का मौसम कैसा हो रहा है सचिन जी?
3: सर आज धूप थोड़ी हल्की है, बादल हैं और कल आंधी आई थी और बूंदे भी आई
2: तो
3: थी लेकिन बारिश नहीं हुई थी।
2: तो आंधी वांधी में कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ?
3: नहीं, नुकसान तो कोई नहीं हुआ सर।
2: बादल हो रहे हैं बहुत दिनों बाद, तो कैसा लग रहा है?
3: सर सही लग रहा है, थोड़ा गर्मी से राहत है।
2: जी क्या करते हैं आप?
3: सर किराना की दुकान है और आपका प्रोग्राम सुन रहे थे हम रेडियो सेट पे, बहुत अच्छे प्रोग्राम लगते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के हमें।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और किस तरह से हमारा रेडियो सुनते हैं आप, रेडियो है कि या मोबाइल पर सुनते हैं?
3: सर रेडियो सेट है और बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना।
2: तो देखिए आपकी किराने की दुकान है, दिन भर ग्राहकों का आना जाना लगा रहता होगा, प्लास्टिक की पन्नी तो रखते ही होंगे आप?
3: नहीं, कागज की थैली रखते हैं और थोड़ा पिन्नी नहीं देते हैं
2: अच्छा, तो ग्राहकों को क्या संदेश देते हैं आप जब वो कोई अगर मतलब प्लास्टिक की पॉलिथीन में अगर कोई सामान मांगता है, कोई थैला नहीं लेके आता मान लीजिए, वो
3: हम
2: कहता है
3: उसे
2: जी मेरे पास तो कुछ नहीं है थैली में डाल
3: हाँ
2: दीजिए, तो आप
3: हाँ
2: उनको क्या
3: बिल्कुल,
2: संदेश देते हैं?
3: हम कहते हैं कि आप भाई एक कपड़े का थैला बनवाओ और वो
2: हाँ
3: हमारे पास लेके आओ, हम उसमें आपको देंगे, हम
2: और
3: यही कहते
2: जैसे
3: हैं।
2: हाँ आप ही की दुकान का कुछ सामान है जो प्लास्टिक का है, उसका
3: हाँ
2: प्रबंधन कैसे करते हैं?
3: सर हमने ना अपना थैले बना रखे हैं, वो मतलब वही रहते हैं, हम उन्हें बदलते नहीं है कि तीसरे दिन या नए नए आए या फिर पिन्नी आए, वो हम नहीं करते हैं, थैले लेके जाते हैं उसी में सामान आता है।
2: जी नहीं, ये तो आप सामान लेके आए, जो आपके दुकान के बाहर आसपास जो कूड़ा रहता होगा, आप ही की दुकान का जो सामान रहता होगा कूड़ा रहता होगा, उसका प्रबंधन कैसे करते हैं ये पूछना चाह रहे हैं हम?
3: हम खुद ही करते हैं, वो थोड़ा गांव से बाहर उसको पहुंचा देते हैं, इधर उधर उन्हें नहीं वो करते हैं,
2: जी
3: है ना,
2: बिल्कुल,
3: साफ सफाई डेली करते हैं उसकी।
2: साफ सफाई करनी चाहिए, और जो भी दुकानें हैं उनके आसपास जो भी कूड़ा रहता है उसको इस तरह से प्रबंधित करें कि वो कूड़ेदान में ही पहुंचे। देखिए दो तरह का कूड़ा होता है, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि गीला कूड़ा जो है वो अलग जगह हमारा प्रबंध हो, और जो सूखा कूड़ा है जिस तरह जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतलें हो गई या रैपर हो गए, इस तरह का जो कूड़ा है वो हम

0: डस्टबिन में ही डालें और सूखे कूड़े वाले डस्टबिन में ही डालें, क्योंकि इस तरह के जो कूड़े होते हैं वो रिसाइकिल हो जाते हैं और हमारा जो गीला कूड़ा होता है वो हमारा खाद के रूप में हमारे धरती के अंदर पहुंच जाता है। देखिए पारुल जी, किसकी
1: हाँ
0: कॉल
1: जी,
0: है?
1: हाँ जी, देखते हैं। हेलो,
0: हेलो जागरूक सुधा।
2: हेलो, नमस्ते मैम।
1: हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
2: मैं शाही मार्केट सिवहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी बात कर रहा हूँ।
1: जी
2: मैं
1: आसिफ जी, हाँ जी, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं,
2: जी प्रोग्राम
1: कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम?
2: तो बहुत बढ़िया लग रहा है और
1: जी
2: प्रोग्राम सारे ही बढ़िया हैं,
1: जी
2: और साथ में विवेक जी को भी नमस्कार करना
0: जी
2: चाहता हूँ।
0: जी जी सर नमस्कार। आसिफ जी, क्या करते हैं आप?
2: मेरा काम चिनाई का है सर।
1: अच्छा
0: जी बिल्कुल, तो कितना पानी यूज़ करते हैं आप चिनाई में?
2: कढ़ाई में तो कम से
0: हाँ
2: कम छोटा वाला पाइप लगाते हैं, उस पर
1: जी,
2: कढ़ाई करते हैं। अगर मोटा लगाएंगे तो पानी
1: तो वेस्ट
2: खराब
1: होगा।
2: होगा, वो नहीं होना चाहिए।
1: जी, बहुत ज़रूरी है ये।
0: देखिए आज तो बारिश पड़ गई, आपके यहाँ बारिश पड़ी होगी?
2: जी हमारे यहाँ नहीं पड़ी, बस बादल जरूर
0: बादल
2: हो
0: हैं
2: रहे हैं।
0: तो देखिए
2: जी
0: हो सकता है कि पड़ जाए बारिश। लेकिन अब देखिए, चेनाई करके आप तो शाम को चले जाते हैं, सुबह को आते हैं शाम को चले जाते हैं, लेकिन किसी दिन छुट्टी हो जाती है तो जिनके यहाँ आप काम करते हैं उनको क्या बताते हैं कि किस तरह से तराई करनी है उनको?
2: जी मैं अपना एक आदमी अलग से भेज देता हूँ 1 घंटे के लिए। हाँ,
0: अच्छा, आप अपना खुद का आदमी भेजते हैं? जी
2: क्योंकि वो पता नहीं कैसे ट्राई करें, कहाँ को करें, क्या करें, कुछ पता नहीं होता मालिकों को।
1: जी
2: तो हमें पता होता, हम आदमी को बताकर भेज देते कि ऐसे ऐसे ट्राई कर आ जाओ।
0: अच्छा, पानी बचाने की ज़रूरत हमें क्यों है और किस तरह से हम पानी बचा सकते हैं, क्या क्या और तरीके हैं? देखिए तराई में आपने कहा कि छोटा पाइप हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या क्या तरीके हैं पानी बचाने के?
2: पानी बचाने के जैसे कि हम कैन भरते हैं उसमें पानी एक्स्ट्रा ना बिखरे, पूरा पानी भरे और भर के बंद कर दें उसको।
1: जी
2: तो ये पानी का बचाव करें, और मतलब कहने का पानी बहता ना रहे कहीं भी, तो
1: जी जी
2: पानी का बचाव होगा, आगे चल के हमारे ही बच्चों के काम आएगा ये पानी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल सही बात है हमारी।
1: और आसिफ जी, आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं इस वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, कुछ सोच रहे
2: मैं तो
1: हैं?
2: ये भी कहूंगा, मैं कहीं वैसे घूमने नहीं गया,
1: जी
2: लेकिन लोग जो घूमने जाते हैं उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
1: जी
2: जैसे कि फोटो वगैरह खींचते हैं केनी पकड़कर,
1: हाँ जी
2: उसको तोड़े ना,
1: जी
2: टूट
1: बिल्कुल
2: जाएगा तो वो पेड़ का भी नुकसान है, और मतलब कहने का
1: हाँ जी,
2: कपारा भी, कचरा भी वहां पैदा होगा,
1: बिल्कुल कचरा
2: तो
1: भी होगा।
2: उसको ऐसा ना करें।
1: जी
0: जी बिल्कुल, देखिए पेड़ हमारे जो धरती का है वो खूबसूरती बढ़ाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो इस तरह के से पेड़ की जो है नुकसान बिल्कुल ना करें, ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, और हमारा जो तापमान लगातार धरती का बढ़ रहा है वो भी हमारे पेड़ कम करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और आज देखिए एक अभियान भी चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, वो है एक पेड़ माँ के नाम, तो अगर आप चाहें तो शामिल हो सकते हैं और अपनी आपके पास जो भी जगह उपलब्ध है उसमें एक पौधा ज़रूर लगाएं और उसका ध्यान रखिए अपने बच्चे की तरह, अपने घर के एक सदस्य की तरह। इस तरह से भी हम पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। अगली कॉल हमारी किन कॉलर की है पारुल जी, देखिए जरा।
1: जी हेलो, हेलो,
3: नमस्कार पारुल जी,
1: नमस्कार। हाँ
3: और
1: जी
3: साथ में विवेक प्रताप जी को भी हमारा प्यार भरा
1: जी
3: नमस्कार।
1: जी जी
0: जी सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: आपका शुभ नाम?
3: मैं ग्राम जहला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी बोल रहा हूँ।
1: जी जी राशिद जी,
0: जी राशिद जी कैसे हैं आप? राशिद जी टीचर हैं और छुट्टियों का आनंद इन दिनों ले रहे होंगे।
3: हाँ, इसलिए कॉल भी आराम से लग गया है कि छुट्टी का आनंद ले रहे हैं।
1: छुट्टियां हुई भी हैं इस समय,
0: जी
1: तो राशिद जी आजकल क्या कर रहे हैं? पर्यावरण के लिए कुछ प्रयास चल रहा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए कुछ कर रहे हैं आजकल आप?
3: यहाँ सबसे पहले तो मैं सबको ये संदेश देता
1: जी
3: हूँ कि जहाँ भी इस समय रहते हैं कि सब ये डिस्पोजल का प्रयोग ना करें,
0: बिल्कुल
1: जी
3: या पॉलिथीन वगैरह, क्योंकि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, गलती भी नहीं है, और जमीन में पड़ी पड़ी भी रेडिएशन छोड़ती रहती है।
1: जी जी प्लास्टिक प्लास्टिक के डिस्पोजल्स जो आ रहे हैं ये बहुत नुकसानदायक है।
3: और उससे जो है हमारा क्लोरो क्लोरो कार्बन बढ़ता है, जिससे हमारे ग्लेशियर हिमखंड भी पिघल रहे हैं,

0: और हमारे वातावरण में जो है
1: जी
0: उत्पन्न हो रही।
2: जी सर, ये तो एसी का यूज़ अगर हम ज़्यादा करते हैं तब सीएफसी निकलता है, और अब तो अब उसमें भी प्रबंधन आने लगा है कि जो सीएफसी है वो ना निकले। तो ऐसे बहुत से काम हमारे जो सरकार है, जो कंपनियां हैं, वो कर रही हैं, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है? आप किस तरह से ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और अपने जो छात्र हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनके कौन कौन से काम पर्यावरण संरक्षण के लिए काम आए?
0: जो हमारे छात्र, हम उनसे कहते हैं कि पॉलिथीन में कोई भी अपना सामान ना लाए
2: जी।
0: और दुकान से भी पॉलिथीन में कोई भी सामान ना ले, वो घर पर अपने पेड़ अवश्य लगाए, और जो पेड़ लगा दें उनकी रक्षा जरूर करें। देखो बहुत संख्या में पेड़ लग जाते हैं
1: जी,
0: लेकिन उनकी देखभाल नहीं हो पाती,
1: पनप नहीं
0: जाते हैं
1: पाते हैं
0: तो।
1: वो। जी
2: अच्छा, देखिए एक चीज़ है कि जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, आजकल के जो युवा हैं, हम खास तौर से युवाओं पे कहना चाहेंगे कि वो कहीं जाते हैं तो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं, छोटी छोटी बोतलों में, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बोतलों में कोल्ड ड्रिंक आती है, उसके साथ स्ट्रॉ भी लेते हैं, वो एक पीने का पाइप आता है ना प्लास्टिक का,
0: जी
2: तो बोतल तो है ही, लेकिन बोतल तो हमने डब्बे में डाल दी, लेकिन जो स्ट्रॉ होती है वो उसको भी हम ऐसे ही फेंक देते हैं, हमें उसका भी ध्यान रखना है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
0: हमें उसे भी जो है कि डस्टबिन में फेंकनी चाहिए, वरना वो जो है इधर उधर हीट उत्पन्न करते हैं और नालियों वगैरह में जाकर जो है इसे नुकसान पहुंचाती है,
1: जी
0: और
2: जी
0: बारिश का मौसम में नालियां भर जाती है।
1: बिल्कुल,
2: जी जी जी
1: नालियों और तालाबों की भी हमें बहुत देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यदि पॉलीथीन उसमें नालियों में फंस जाती है तो वो पानी फिर सारे शहर में और सारी सड़कों पर गंदा पानी फैल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है
2: जी
1: राशिद
2: बिल्कुल
1: जी, कि हमें आसपास, अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना है और बहुत जागरूक कराना है बाकी लोगों को भी।
2: जी बिल्कुल। तो पारुल जी, बहुत सारी बातें हमारे
1: जी
2: श्रोताओं ने हमसे कही कि बाजार से सब्जी लाते हैं तो अपने घर से थैला ले जाएं, पानी की बचत करें, पेड़ पौधे लगाएं,
1: जी बिल्कुल
2: और जो है गीला और सूखा कचरा अलग अलग करें, प्लास्टिक मुक्त बाजार हमें चाहिए, उसको करना है, डिस्पोजल का यूज़ कम करें, अपने जो ऐसे बर्तन यूज़ करें जो मिट्टी में गल सकें,
1: जी जी
2: लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी हमारे काम हैं जो हम कर सकते हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, जैसे कि तालाब हैं, गांव में तालाब होते हैं, उनका
1: जी
2: हम पुनरुद्धार कर सकते हैं, उनको खुदवा सकते हैं, आपस में मिलकर गांव वाले अगर चाहें तो उस जो तालाब है वो ख़राब हो चुका है या अट चुका है उसको गहरा करवा सकते हैं, और इसके अलावा है गीले कचरे से कंपोस्ट बना सकते हैं,
1: बिल्कुल
2: कंपोस्ट खाद, और उसको अपने खेतों में डाल सकते हैं। जो हमारे घर के में देखिए चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है, तो चाय की
1: जी,
2: पत्ती जो है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, और
1: पेड़ों
2: देखिए
1: में और पौधों में डाल
2: हाँ
1: दें तो वो
2: बिल्कुल
1: बहुत
2: बिल्कुल
1: अच्छी
2: बिल्कुल
1: खाद का काम करती है
2: बिल्कुल
1: चाय पत्ती।
2: जी। तो देखिए अगली कॉल हमारे पास आ रही है,
1: जी
2: हमारे किन श्रोता की है। हेलो
1: हेलो,
3: हेलो जागरूक श्रोता,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग,
3: मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी बात कर रहा हूँ।
1: ओ कैसे हैं फरीदी जी आप?
3: जी मैम, मैं अच्छा हूँ
1: आप
3: और
1: सही है
3: उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे से होंगे,
1: जी, आपकी
3: और
1: माता जी
3: मौसम का
1: सही
3: भी।
1: है?
3: जी हाँ मैम,
1: जी जी
3: माता जी की अब तबीयत पहले से अच्छी है,
1: जी
3: बेहतर है
1: आप हमारे
3: जी।
1: रेगुलर
3: और
1: श्रोता हैं बकार जी,
3: जी मैम,
1: आप अभी सुन ही रहे होंगे, हम पर्यावरण संरक्षण के विषय में बातचीत कर रहे हैं,
3: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
3: मैम, और
1: आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मौसम भी
1: जी
3: बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे हो गया है,
1: जी जी
3: और उम्मीद कर रहा हूँ कि वहाँ भी
1: बहुत
3: बारिश हुई
1: अच्छा
3: होगी
1: मौसम है, बहुत बारिश हुई है
3: जी, काफी सुहाना मौसम हो
1: जी,
3: गया है, गर्मी से राहत मिली है, काफी गर्मी
1: बिल्कुल
3: हो रही थी
1: बिल्कुल।
3: जी मैम।
1: पर बारिश में वकार जी ऐसा होता है कि पानी भर जाता है और नालियां अट जाती हैं। बारिश
3: बिल्कुल
1: में बहुत अच्छा सुहाना मौसम भी होता है, लेकिन छोटे शहरों में, गलियों में, इसमें ये बहुत दिक्कत हो जाती है कि चौराहों में
3: लेकिन
1: पानी भर
3: हाँ
1: जाता है,
3: मैम बिल्कुल
1: नालियां बंद हो
3: बिल्कुल,
1: जाती
3: और
1: हैं।
3: ये चीज़ें मैम, एक तो पॉलीथीन और
1: जी
3: डिस्पोजल गिलास की वजह से भी जो नालियों में अवरोध होता है
1: बिल्कुल
3: उसकी वजह से, लेकिन मैम इसमें एक ऐसा भी है, पहली बार तो ये चीज़ें जो प्लास्टिक की जो थैलिया है
1: जी
3: पॉलीथीन वगैरह, पहली बात तो इसका जो उपयोग है बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या फिर बहुत कम कर देना चाहिए,
1: जी
3: थैले का हम इस्तेमाल ज्यादा करें।
1: हाँ, कागज के थैले का या कपड़े के थैले का,
3: बिल्कुल
1: और
3: बिल्कुल,
1: डिस्पोजल भी
3: क्योंकि
1: वकार जी हमारे पास अब कागज के उपलब्ध हो रहे हैं और लकड़ी से बने हुए भी डिस्पोजल्स आने लगे हैं अब
3: बिल्कुल
1: तो।
3: जो

0: हम
1: एकदम से ही एकदम से ही वो चीज गल भी जाती है, खत्म हो जाती है और दूसरी चीज ये है। हाँ, बचपन में भी हम देखते थे जब हम घर से बाहर सामान लेने जाते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें कपड़े का थैला देते थे और उसी में हम सामान लेकर कारगर है। लेकिन अब आजकल जनरेशन थोड़ी सी ज्यादा वो हो गई है तो वो तो थैला कपड़े का ले जाना मार्केट में बहुत मतलब कम ले जाते हैं और वो पॉलिथीन में सामान लेना ज्यादा पसंद करते हैं।
0: बस ये है कि वकार जी, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को यही संदेश देना है कि जो हमें धरोहर मिली है, धरती माता ने जो हमें ये धरोहर दी है, अच्छी हवा की, पानी की और अच्छे हरियाली की, तो ये हम उनको बहुत अच्छी तरीके से सौंपें। आने वाली पीढ़ियां भी इसका बहुत लाभ उठाएं और उन्हें जागरूक भी करना है, अपने आसपास भी जागरूक करना है सभी को इन जिम्मेवारियों का।
1: दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे भी लगाएं।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि जितना ज्यादा पेड़ पौधे होंगे ऑक्सीजन भी मिलेगा,
0: ऑक्सीजन भी मिलेगा,
1: बहुत फायदे हैं उसकी छांव में बैठ करके। जब हम कहीं थके हारे जाते हैं पेड़ की छांव में हम बैठते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा है पेड़, क्योंकि जो ये पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग होती है, पहाड़ गिर जाते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि पेड़ कट जाते हैं। पेड़ जो है वो मिट्टी को रोके रखते हैं और पहाड़ों को भी बनाए रखते हैं, और अगर पेड़ नहीं होते हैं तो वो ढलान में आ जाते
1: और
0: हैं।
1: पेड़ नहीं होंगे मैम तो वर्षा भी बहुत कम होगी।
0: बिल्कुल,
1: और वर्षा कम हो जाती है तो उससे भी बहुत सारा नुकसान होता है।
0: आपने लगाए हैं कोई पेड़ पौधा कोई अपने आसपास अपने?
1: हाँ मैम, हमारे यहाँ क्योंकि पहले तो कच्चे मकान थे तो पेड़ पौधे लगाए हुए थे, लेकिन अब घरों में पक्के मकान बन गए तो अब गमलों में हम लगाते हैं पौधे।
0: जी जी बिल्कुल, लगाने चाहिए, जब भी जैसे भी मौका मिले सभी को पौधे लगाने चाहिए। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बकार जी।
1: अच्छा लगा मैम, काफी अच्छा विषय है, गंभीर विषय है
0: जी,
1: और बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। अभिवेक जी भी खामोश खामोश से नजर आ रहे हैं
2: जी, तो
1: मैं
2: खामोश नहीं हूं।
1: नमस्कार
2: नमस्कार, मैं आप दोनों की बातें सुन रहा
1: था। जी जी जी, और उम्मीद करता हूँ विवेक जी भी अच्छे से होंगे।
2: जी मैं बिल्कुल
0: ठीक है,
2: बहुत अच्छा लगा आप हमसे जुड़े,
1: में सभी लोग अच्छे से होंगे
2: जी। थैंक यू कॉल करने के लिए। तो ये थे वकार फरीदी जी जो हमसे बात कर रहे थे, अपने सुझाव दे रहे थे कि किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सामूहिक प्रयास कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि पेड़ लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने हमसे साझा की। देखिए पारुल जी, किनका कौन कॉल हमारे पास आ रहा है।
0: हेलो
2: हेलो जागरूक श्रोता। हेलो
3: हेलो डॉक्टर सोता
2: जी। सर नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं?
3: नमस्कार जी, विवेक प्रताप सिंह जी और पारुल गोयल को
0: जी। धन्यवाद
2: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार आपको,
2: कैसे हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ जी।
2: जी सर,
3: मैं अपना परिचय दे दूं?
2: बिल्कुल।
3: मैं ग्राम गाधरोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ।
2: मदन गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या करते हैं आप?
3: मैं रिटायरमेंट हूँ जी, सरकारी सेवा से।
2: कौन से विभाग से?
3: गवर्नमेंट प्रेस।
2: अरे वाह, आप मीडिया से बात कर रहे हैं।
3: जी जी जी
2: बिल्कुल। तो
3: और
2: हाँ देखिए, बहुत सारे लेख आज हमारे पास न्यूज़पेपर में आज प्रकाशित हुए हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर। अगर आपसे भी हम कहें कि अपनी लेखनी का कमाल दिखाइए, लेखनी का कमाल रेडियो पर तो नहीं लेकिन अपनी आवाज से कमाल दिखाइए कि किस तरह से आप वो छोटा सा लेख लिखते कि लोग किस तरह से सामूहिक प्रयास कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए।
3: जी
2: जी,
3: मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई सरकार का काम नहीं है और न कोई किसी संस्था का काम है
2: जी।
3: और हमें ये जो है विश्व जो है गंभीर समस्या है, विश्व के लिए भी और हमारे देश के लिए भी, तो हमें मिलकर और सामूहिक रूप से इसका निराकरण करना है। और जो सब मिलकर जो है इसका जो अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं उन्हें बचाना है, और एक पेड़ काटने के बाद हमें एक नहीं दो पेड़ लगाने हैं, तभी हमारा जो है पर्यावरण बच सकता है। और ध्वनि प्रदूषण से भी हमारा पर्यावरण बहुत खराब हो रहा है, और मैं अपील करूंगा सभी चालकों से कि वो अपने नियंत्रण रखें और जो है वो दिखाते रहे उसे कि कितना जो है प्रदूषण चल रहा है वाहन में, और जो है
0: हेलो
3: जी हमें मिलकर करना है, पेड़ लगाने हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: जागरूक करना है, क्योंकि हमारा अकेले का फर्ज है कि हम आसपास वालों को भी जागरूक करें। अपने से
1: बिल्कुल
0: हम शुरू करेंगे तो हम, हमारा समाज और हमारी सरकार, यदि मिलकर
1: बिल्कुल
0: एक साथ सामूहिक प्रयास करते हैं तो हम हर कार्य सिद्ध कर सकते हैं।
1: जी जी
0: हमारे
1: जी
0: सारे सपने साकार हो सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के। जी
1: जी
2: जी मदन जी, आपने हमें कॉल किया और आपने बताया, युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वो जागरूक हैं और सोशल मीडिया पर भी इतने एक्टिव हैं कि वो अपने रील भी लगाते हैं और उनसे संदेश भी देते हैं और उनसे कमाई भी आजकल कर रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो युवा कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए?
1: युवा साथियों से मेरा तो ये प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि वो जो है घूमने के लिए ज्यादा जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं और मैदानी इलाकों में जाते हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो जो है वो बोतलें हैं जो
0: जी
1: प्लास्टिक की हैं या
0: चिप्स के
1: पॉलिथीन है,
0: पैकेट्स हैं।
1: उसे जो है फेंके
0: जी
1: ना,
0: जी
1: उसे जो है एक
0: देखिए
1: जगह रखें और एक जगह जो है उसे कूड़ेदान में ही डालें। और साथ युवा साथ जो थे मेरी, बस ये उनसे मेरा निवेदन है कि वो घूमने जाते वक्त अपना जो है ये ध्यान रखें।
2: जी
0: जी
2: बिल्कुल, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने आज अपने श्रोताओं से बात की। बहुत सारे मुद्दे हमारे श्रोताओं ने हमें बताए कि पानी का संरक्षण कैसे करना है। और देखिए कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, एक कॉल और ले लेते हैं हम। हेलो
0: हेलो,
3: हेलो जादू नमस्कार
0: जी, नमस्ते, आपका
3: हाँ
0: शुभ
3: जी,
0: नाम।
3: और ठीक ठाक हो भाई साहब?
2: जी
0: हेलो,
2: हम ठीक हैं बिल्कुल, आप कैसी हैं?
3: हाँ हाँ
0: हेलो,
3: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम शमीमा खातून, जिला मुरादाबाद, डुमरी कला से बोल रही।
0: जी, कैसी हैं आप?
3: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं?
0: जी बिल्कुल ठीक है।
3: जी
0: शमीना जी, आप पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को, जल को, पानी को, हवाओं को साफ रखने के लिए क्या
3: जी
0: करती हैं अपने घरेलू जीवन में, अपने व्यस्तम, अपने जब आप काम
3: हाँ
0: करती हैं तो आप क्या प्रयास करती हैं जिससे कि ये सब शुद्ध और साफ रहे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे लिए?
3: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत
0: जी
3: बढ़िया बात बत
2: देखिए, इनसे हमारा संपर्क जो है टूट चुका है। और देखिए हमारे पास कॉल आई बहुत सारी हमारे श्रोताओं की और हमने बात भी की। देखिए प्रदूषण जो है वो कई तरह का है, जिसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है, चाहे वो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, मिट्टी खराब हो रही है, ध्वनि प्रदूषण है, प्लास्टिक प्रदूषण है। ये सारे प्रदूषण इतने जाने माने हैं कि हर कोई इनके बारे में जानता है, लेकिन कुछ नए प्रदूषण भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। वो है पर्यावरण प्रदूषण, ई कचरा प्रदूषण, जैसे कि कोई ख़राब फ़ोन, कंप्यूटर चार्जर वगैरह होते हैं, इस तरह के जो प्रदूषण हैं इनसे भी नुकसान हमारी पृथ्वी को हो रहा है।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, जल है तो कल है, वायु है तो जीवन है, भूमि है तो हमारा अस्तित्व है। पर्यावरण संरक्षण कोई एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि जीवन भर की निभाई जाने वाली जिम्मेवारी है। धरती माँ ने हमें विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों से धरती माँ को उधार लिया है। तो सरकार हमें दिशा दिखा सकती है, लेकिन सफलता तब मिलती है जब सरकार की नीतियां, जनता की भागीदारी एक साथ चलती है, तभी स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पर्यावरण का सपना साकार होता है।
2: बिल्कुल, तो देखिए ये था हमारे कार्यक्रम जागरूक श्रोता। जो भी
0: जी
2: हमारे साथ श्रोता जुड़े
0: उन
2: उनका बहुत
0: सबका
2: बहुत
0: बहुत बहुत
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो ले लेते हैं विदा पारुल जी,
0: जी बिल्कुल,
2: हमारे श्रोताओं से हम विदा ले लेते हैं। मैं यानी विवेक प्रताप सिंह
0: और मैं आपकी साथी पारुल गोयल।
2: कार्यक्रम संपन्न करने की चाहते हैं अनुमति,
0: जी
2: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जागरूक श्रोता, ये आकाशवाणी का नचिकेतापद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म नूरी से लिया गया ये गीत। आवाज थी लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन था खयाम का, गीत के बोल लिखे थे।

0: जानेसार अख्तर ने। आइए अब सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: श्रोता दोस्तों, आइए अब सुनते हैं फिल्म सागर का ये गीत। आवाज है किशोर कुमार की, संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म फना का ये प्यारा सा नगमा। आवाज़ें हैं शान और कैलाश खैर की, संगीत से सवारा है जतिन ललित ने और गीतकार हैं प्रसून जोशी।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं गीत संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम आपके हैं कौन से लिया गया ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसबी बाला सुब्रमण्यम की। संगीत से सवारा है राम लक्ष्मण ने और गीत को बोल दिए हैं रविंद्र रावल ने। आइए गीत सुनने से पहले सुनते हैं एक जरूरी संदेश।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म बागवान से। युगल आवाजें हैं अलका याग्निक और सुदेश भोसले की, संगीत से सवारा है आदेश श्रीवास्तव ने और गीतकार हैं समीर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओ, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कॉमिक गाँव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गाँव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
3: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
2: जी।
3: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
3: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता
2: जी।
3: है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
2: जी।
3: इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
2: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
3: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
2: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
3: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
4: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: शांत शांत,
1: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
3: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर
3: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
4: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
5: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
6: जी महाराज, बहुत धन्यवाद।
7: महाराज की जय हो।
8: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
3: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
3: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
3: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
3: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो?
5: मुझे भी नकली मिला। मुझे भी नकली हो सकता
3: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली, तुम
5: कैसे
3: हो
5: सकता? नकली हीरा तो सकता,
3: नकली कैसे हो गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
8: महाराज की जय।
7: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
3: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें महाराज।
7: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
3: धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से कराई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
7: क्या? और कोई शंका?
3: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
7: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
9: महाराज की
10: जय!
9: महाराज की
10: जय!
9: महाराज की
10: जय!
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
11: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
12: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
13: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलड़ू मैं चल चलू।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं।

0: पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं राखी आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमें फोन के और मैसेज के द्वारा हमें सुझाव देते हैं और हमें उत्साहित करते हैं। अपने सुझाव हम तक पहुँचाने के लिए आप हमें फोन कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। तो श्रोताओं, आज फिर हम आपके लिए एक और नई कहानी को साथ लेकर आए हैं। हमें आशा है आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आएगी। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर जरूर नोट करें। हमारा फोन नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
0: श्रोताओं, हम अपने उन श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं तथा लगातार हमसे फोन के द्वारा जुड़े रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, दसवीं बोर्ड के बाद सबसे अहम समय आता है बच्चों के लिए, जब उन्हें अपने भविष्य संबंधी विषयों का चुनाव करके आगे की पढ़ाई करनी होती है। अधिकतर बच्चों के साथ ये समस्या होती है कि वे नहीं समझ पाते कि उन्हें कौन सा विषय लेना चाहिए। वे या तो दोस्तों को देखकर या घर वालों के दबाव में या ज्ञान की कमी में आकर कोई भी विषय ले लेते हैं और फिर वे उसमें अच्छे से पढ़ नहीं पाते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर उन्हें 12वीं बोर्ड में कम नंबर, अच्छा कॉलेज ना मिलना और जिंदगी भर इन्हीं सब तकलीफों से गुजरना पड़ता है और वे किसी भी क्षेत्र में स्थिर नहीं हो पाते। 11वीं में विषय लेते समय बच्चों को पूरा ज्ञान वे सही से समझ बूझ कर विषयों का चयन करना चाहिए। निर्णय लेने के इस चरण में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ताकत और

0: चोरियों के बारे में सचेत और जागरूक रहें, ताकि कक्षा 11 में आप खुद को और अधिक उन्मुख करने के लिए सही स्ट्रीम ले सकें। जैसे ही आप कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा पूरी करने के बाद राहत की सांस लेते हैं, आप एक महत्वपूर्ण निर्णय के चौराहे पर होते हैं। कक्षा 11 में कौन सा विषय स्ट्रीम चुनना है जो एक सफल करियर की ओर ले जाएगा, ये उन छात्रों के लिए कठिन समय हो सकता है जो अभी तक अपने करियर की महत्वाकांक्षाओं या उन तक पहुंचने के तरीके के बारे में नहीं जानते हैं और बड़ी ही असमंजस्य में फंसे होते हैं। आज की कहानी के माध्यम से हम सुनेंगे कि किस प्रकार सही विषय का चयन किया जाए। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर।
1: हेलो ऋषभ।
2: हाँ हेलो राहुल, कैसा है?
1: मैं अच्छा हूँ, तू बता कैसा है?
2: हाँ यार, मैं भी अच्छा हूँ, बस थोड़ा डर लग रहा है।
1: डर क्यों? किस बात का डर?
2: अरे भाई, तुझे नहीं पता आज 10वीं का रिजल्ट है।
1: अरे यार, मैं तो भूल गया, सुनीता और गीता भी भूल गए क्या? रुको, मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ।
2: हाँ ठीक है भाई, कर ले।
1: हेलो गीता। हेलो सुनीता, कैसी हो?
3: मैं अच्छी हूँ यार, ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ हुआ है क्या?
4: आज रिजल्ट है, अभी पता नहीं क्या होगा।
2: अच्छा, तो तुम्हें भी याद है?
1: अरे सुनीता, तो किसी बात की चिंता कर रही है? तो सबसे ज्यादा अच्छी है पढ़ाई में और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है।
4: पर बोर्ड में तो डर लगता है ना यार, और फिर ये भी नहीं पता आगे क्या करना है और 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है।
3: हाँ यार सुनीता, सही बोल रही है।
1: सुनो, एक काम करते हैं, तुम सब मेरे घर आ जाओ, रिजल्ट के समय एक साथ रिजल्ट देखेंगे और यहीं पर बात भी कर लेंगे।
2: हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है, बिल्कुल सही है। फिर शाम को मिलते हैं राहुल के घर।
4: राहुल, दरवाजा खोल।
1: अरे आ रहा हूँ। आ गए तुम लोग?
3: नहीं, अभी तो हम रास्ते में हैं और आधा घंटा लगेगा।
2: 5 मिनट में रिजल्ट है और तुम लोगों को मजाक लग रही है?
1: परमेश्वर पास करा देना बस। वाओ, मेरी तो 79 बनी है।
2: वाओ, और मेरी 82%।
3: ओह माय गॉड, मेरी तो 90% बनी है।
4: मेरी 94 बनी है।
1: अब तो पार्टी बनती है, कहा था ना सुनीता, तू ही अव्वल करेगी।
3: अब किसी ने ये भी सोचा है कि आगे भी क्या करना है? अब
1: एक काम करते हैं, हम सब कॉमर्स लेकर एक ही स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं।
4: यार मजाक की बात बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही गंभीर विषय है।
3: सुनीता सही बोल रही है, हम कौन सा विषय लेते हैं उसी पर हमारी आगे की चीजें भी निर्भर करती हैं।
1: तो क्या करना है बताओ बताओ।
4: विषय रुचि के अनुसार और आगे जाकर हमें भविष्य में क्या करना है उस हिसाब से लेना चाहिए।
2: हाँ, तुझे तो बड़ा पता है।
3: हाँ ऋषभ, सुनीता बिल्कुल सही बोल रही है।
1: हाँ तो हमें भी बता, अच्छी बात है, हम एक ही स्कूल में ले लेंगे।
4: हाँ हाँ जरूर, हम सब एक ही स्कूल में जाएंगे।
1: चल अब बता, क्या कर रही थी, तूने ये सब कहाँ से सीखा, और ये भी बताना हमको।
4: मैं अपनी दीदी से सीखी, इंटरनेट से ही सब कुछ देखती हैं दीदी, और इसलिए सीखती रहती हूँ, और मुझे इसलिए कुछ कुछ बातों के बारे में पता चलता रहता है। जैसे कि लॉयर बनना है तो LLB करनी पड़ती है, LLB आर्ट्स और कॉमर्स दोनों से हो जाती है, और अगर टीचर बनना है तो कोई भी स्ट्रीम से हम ग्रेजुएशन करने के बाद BEd करके टीचर बन सकते हैं, और MEd और नेट की पढ़ाई कर हम कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं।
3: हाँ यार, मैं यही सोच रही थी कि मुझे टीचर बनना चाहिए।
1: तुझे तो लेक्चर देना पसंद है।
4: हाँ ये बहुत अच्छा है, और इसके अलावा CA और CMA सब कॉमर्स के सब्जेक्ट से हो जाता है।
1: और अगर मेडिकल लाइन में जाना हो तो इसके लिए क्या करना होता है?
4: मेडिकल लाइन में जाने के लिए साइंस लेनी पड़ती है, उसमें भी अलग अलग विकल्प होते हैं कि हमें कौन सी मेडिकल लाइन में आगे जाना है। मतलब कि हमें 12वीं के बाद अगर नीट का पेपर क्लियर करना पड़ता है तो हम उसके बाद होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डॉक्टर लाइन में हम नीट के बाद जा सकते हैं। BCA, MCA ये दोनों ही कंप्यूटर से जुड़े हुए कोर्स हैं, और इसमें बहुत ही अच्छा भविष्य है। आजकल सभी युवा ज्यादातर यही पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया में सब कुछ आजकल कंप्यूटर आधारित हो चुका है। विशेषकर हमारे पास 3 विषय विकल्प होते हैं 11वीं कक्षा के लिए, जो कि तुम्हें पता ही होते हैं, आर्ट्स यानी कि कला, इसे आजकल ह्यूमैनिटीज के नाम से भी जाना जाता है, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, साइंस यानी कि विज्ञान।
1: तो ये सब क्या सिर्फ 11वीं तक ही होते हैं? तो इसके अंदर कुछ विषय और भी होते होंगे, उसके बारे में कुछ बताना अगर तुझे पता हो तो।
4: हाँ मुझे पता तो जरूर है, पर कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे जितना पता है ना मैं तुम लोगों को बता दी हूँ। पहले अपन विज्ञान के बारे में बात करते हैं। विज्ञान स्ट्रीम में मुख्य विषय के रूप में भौतिक, रसायन विज्ञान और वैकल्पिक विषय में गणित या फिर जीव विज्ञान आते हैं। विज्ञान के छात्र वाणिज्य से अर्थशास्त्र, मानविकी से मनोविज्ञान जैसे

0: लेकिन मुझे जितना पता है ना, मैं तुम लोगों को बता दी हूँ। पहले अपन विज्ञान के बारे में बात करते हैं। विज्ञान स्ट्रीम में मुख्य विषय के रूप में भौतिक, रसायन विज्ञान और वैकल्पिक विषय में गणित या फिर जीव विज्ञान आते हैं। विज्ञान के छात्र वाणिज्य से अर्थशास्त्र, मानविकी से मनोविज्ञान जैसे।
1: अच्छे से बता देना, मेरी भी मदद हो जाएगी।
0: बिल्कुल गीता। कला स्ट्रीम में मुख्य विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञान शामिल होते हैं। ऐच्छिक विषयों में गणित, अर्थशास्त्र आदि शामिल हैं। मानविकी के छात्र मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता, लेखन, फिल्म निर्माण और सामुदायिक सेवा और शिक्षण जैसे क्षेत्रों में करियर चुन सकते हैं।
2: तू तो

0: हूँ।
1: भाई इन दोनों तो अपना अपना सोच रखा है, सारी तैयारी करके बैठे हैं। तू बता अपन क्या करें?
2: भाई अपन कॉमर्स ले लेते हैं।
1: ठीक है, नहीं हुई कॉमर्स तो भाई कला वर्ग में चले जाएंगे। हमारा क्या है, हम तो लड़के हैं, सब सह लेते हैं।
0: हाँ तुम दोनों तो बस हमेशा मजाक ही करते रहो।
1: हाँ और तुम दोनों पढ़ते ही रहो।
2: भाई कह तो ये दोनों सही रही है, मजाक से हटकर अब अपन भी देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। इन दोनों का तो सब फाइनल है।
1: ठीक है भाई, अपन भी अपना देख लेंगे। मेरे पापा तो विज्ञान लेने की बोल रहे हैं, शायद वो मानेंगे नहीं। मुझे विज्ञान ही लेने पड़ेगी, वरना कॉमर्स लेने की सोच रहा था मैं तो।
2: तो भाई जो तुझे पसंद है वही सब्जेक्ट लेना।
1: अरे भाई तू जानता है ना पापा को, वो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं बात करके देखता हूँ।
3: नहीं राहुल, तुझे जिस भी विषय में रुचि है ना वही विषय लेना। मेरी दीदी ने कहा था कि सब्जेक्ट छात्र को अपनी इच्छा के और रुचि के अनुसार लेना चाहिए, घर वालों के दबाव में या फिर दोस्तों को देखकर नहीं।
0: हाँ फिर अंकल नहीं माने तो हम उनसे बात कर लेंगे, पर विषय तो तू अपने मन का ही लेना जो कुछ तू कर सके।
2: अरे यार अब बस भी करो, अभी तो रिजल्ट ही आया है, अभी से इतनी टेंशन। अरे अभी तो पार्टी का टाइम है, सब कर लेंगे ना बाद में।
1: हाँ ऋषभ तू सही बोल रहा है, चलो जल्दी से जाकर अपने घर रिजल्ट बताते हैं और अपने सारे दोस्तों से भी बात करते हैं।
2: हाँ यार तू सही बोल रहा है भाई।
3: हाँ चलो चलो।
0: तो फिर चलो सबसे पहले मेरे घर चलते हैं, मेरी मम्मी ने तो खीर बना के रखी है।
1: तो चल ना, इंतजार किस बात का कर रही है। कैसे हो तुम सब?
2: अच्छे हैं यार, बस अब छुट्टियां खत्म होने वाली है तो दुख हो रहा है।
0: हाँ यार और थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है।
3: तुम सबका पक्का हो गया, कौन कौन सा विषय ले रहे हो सब?
2: हाँ कॉमर्स ही ले रहे हैं। हाँ मैं तो कॉमर्स ही ले रहा हूँ।
0: और मैं कला वर्ग यानी आर्ट्स ले रही हूँ।
1: यार मुझे तो कॉमर्स लेनी है, लेकिन मेरे पापा मान ही नहीं रहे, बोल रहे हैं विज्ञान ले विज्ञान।
3: क्यों?
1: क्योंकि वो चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं।
0: ऐसे नहीं होता है यार, अंकल को समझाना।
2: वही तो, जबरदस्ती से थोड़ी विज्ञान पढ़ लेगा अगर तेरा मन ही नहीं है तो।
3: राहुल मुझे अंकल से बात करनी है, क्या वो अभी घर पर होंगे?
1: नहीं वो अभी घर पर नहीं है यार।
3: ओके पर तू समझा अंकल को और एक बार और बात करके देख उनसे।
1: हाँ ठीक है, आज मैं उनसे बात करके उनको मनाने की कोशिश करता हूँ।
3: हाँ और टेंशन मत ले, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, पर हमारी रुचि किस में है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए, ये हमें उन्हें ही समझाना होगा। और जब हम सही तरीके से उन्हें अपनी बात समझाते हैं तो वो जरूर मान जाते हैं।
1: तू सही कह रही है सुनीता, मेरे पापा भी जरूर मान जाएंगे, और मम्मी तो वैसे भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है।
2: तो बस फिर अब सबका फाइनल हो गया है, मैं और राहुल कॉमर्स ले रहे हैं और गीता कलावंत और सुनीता तुम विज्ञान ले रही हो।
0: हाँ बस अब पास के किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं सब।
3: हाँ
1: तो बताओ फिर कब चलें?
3: सोमवार को चलते हैं, तब तक सब अपने अपने घर पर बात भी कर लेंगे।
0: चलो ठीक है फिर।
2: ओके चलो बाय।
3: हाँ हाँ चलो बाय बाय
0: बाय।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित योगराज नायक का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग, जिसकी विलंबित अदा चौताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित योगराज नायक का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। इसकी विलंबित अदा चौताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध थी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म की पहली पेशकश, फिल्म पाकीज़ा से। शानदार आवाज़ है लता मंगेशकर की, संगीत दिया है गुलाम मोहम्मद ने और गीत को बोल दिए हैं कमाल अमरोही ने।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म कन्यादान से। आवाज है मोहम्मद रफी की। गीत को बोल दिया है नीरज ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोता दोस्तों, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं गीत संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म सत्य पे सत्ता से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, संगीत निर्देशक हैं आर डी बर्मन और गीतकार हैं गुलशन बावरा।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बेमिसाल से लिया गया ये सुंदर सा नगमा। लता मंगेशकर की आवाज है, आरडी बर्मन का संगीत निर्देशन है और आनंद बख्शी का बोल है। आइए सुनते हैं ये कौन सा गीत है।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म हम राज का। ये गीत गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर, संगीतबद्ध किया है रवि ने और गीत का सृजन किया है साहिर लुधियानवी ने।

श्रोताओं, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं गीत संगीत का कार्यक्रम मिठे मेलोडी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश फिल्म अन मिलो सजना से। संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार हैं आनंद बख्शी और युगल आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। इस गीत के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani. The news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today to dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary health care across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution upgrades, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. The Reserve Bank of India has kept interest rates unchanged for the second time in a row in the current financial year. Announcing the second bi-monthly monetary policy for the current fiscal, RBI Governor Sanjay Malhotra today said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain short-term lending rate or repo rate at 5.25% with a neutral stance. RBI has lowered GDP growth projection to 6.6% from 6.9% earlier for the current fiscal. RBI also increased CPI inflation target to 5.1% from 4.6% for the current financial year.
4: Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes.
1: Industry body ASSOCHAM has said the RBI's decision to keep the repo rate unchanged at 5.25% will strengthen growth and business sentiments. Secretary General ASSOCHAM Saurabh Sanyal said the decision reflects a balanced approach towards supporting economic growth while ensuring inflation remains within the target range. The centre has granted tax exemption to foreign institutional investors on capital gains and interest income arising from investments in government securities. The government has promulgated the Income Tax Amendment Ordinance 2026 in this regard. The Union Finance Ministry said this step will align the taxation on government securities with many comparable jurisdictions. The exemption will be applicable from the 1st of April this year. BJP President Nitin Naveen has accepted the resignation submitted by the Tamil Nadu Party State Chief K. Annamalai from the primary membership of the party. Annamalai had submitted his resignation to the BJP president recently. World Environment Day is being celebrated across the globe today. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi has said initiatives like Ek Ped Ma Ke Naam have made significant contributions towards adding nearly 1.1 lakh hectares of forest every year. In a series of posts on social media, Mr. Modi remarked that this day serves to reaffirm the commitment to protecting the environment and furthering sustainable growth. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal stressed the need for greater awareness on environmental protection and expanding green cover across the country. The minister offered prayers at the Sri Venkateshwara Swami Temple in Tirumala and later planted a sapling under the Ek Ped Ma Ke Naam campaign on the occasion of World Environment Day.
5: Prime Minister Narendra Modi has encouraged us to plant one tree in the name of our mother, Ek Ped Ma Ke Naam. It is truly a divine blessing for me that I could plant a tree in my mother's name in the Tirumala Balaji Hill.
1: Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav along with Delhi Chief Minister Rekha Gupta today inaugurated 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi on the occasion of World Environment Day. Prime Minister Narendra Modi has expressed happiness that the Jayaprakash Narayan Bird Sanctuary Surhatal in Balia, Uttar Pradesh has been designated as India's 100th Ramsar site.
6: The Prime Minister has said India's digital infrastructure journey is gathering remarkable momentum. In a social media post, Mr. Modi informed that AirTrunk has announced plans to invest around 3 lakh crore rupees in India and develop 5 gigawatt of data center capacity. Benchmark domestic equity indices slipped into negative territory during afternoon trade. Today, the Sensex lost 86 points to 74,274, while the Nifty dropped 43 points to 23,374 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
0: Hashmi say. आज आलमी योम माहौलियात है। जमीन पर सभी जानदार की जिंदगी की अहमियत बनाए रखने और उसके तहफ्फुज के लिए बेदारी बढ़ाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा माहौलियात प्रोग्राम के तहत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 से हुई थी। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहायशगाह पर आलमी यौमे माहौलियात 2026 के मौके पर एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत आम का पेड़ लगाकर शजरकारी की। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरगीब से गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रियासती हुकूमत ने माहौलियात और नेचर के तई अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए कई खसूसी पेशकदमी की है। पहले ही साल 2017 में वन महोत्सव के मौके पर डबल इंजन हुकूमत ने 5 करोड़ शजरकारी के बड़े काम को अपने हाथों में लिया है। उन्होंने आवाम को आलमी यौमे माहौलियात की मुबारकबाद भी पेश की। वजीर आला ने कहा
7: कि उस समय तमाम चैलेंजेस हमारे सामने थे, न नर्सरी थी, न इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार के कोई अनुभव ही, लेकिन बाद में वन विभाग और प्रदेश सरकार के अन्य सभी विभागों ने मिलकर के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया और गत 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर वन महोत्सव के अवसर पर होने वाले वृक्षारोपण के क्रम में अब तक 242 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की।
0: आज इस मौके पर चित्रकूट, गाजियाबाद, कानपुर देहात, जौनपुर, मऊ, अमरोहा और दीगर इजला में शजरकारी की गई। दरियासना एक दीगर प्रोग्राम में वजीर आला ने लखनऊ के कुकरैल जंगल हलके में शजरकारी करके रियासत गिर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस साल रियासत में एक दिन में 5 करोड़ पेड़ लगाने का निशाना रखा गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में आलमी बैंक के तावन से 2,741 करोड़ रुपए की लागत वाली एयर शेड पर मबनी उत्तर प्रदेश साफ हवा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने शजरकारी महाअभियान 2026 के तहत 35 करोड़ शजरकारी महाअभियान के लोगों का इजरा किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि माहौलियात के चैलेंजेस का सामना करने के लिए हिन्दुस्तान की कदीम रवायत में रचे बसे अंसर को भी अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब कुदरत महफूज रहेगी तभी इंसानियत महफूज रह पाएगी। वजीर आला ने कहा
7: उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज

तीन रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ समाजी तंजीम और अवामी राबता प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम और पार्टी अहदेदारों से मजाकिरात भी करेंगे। वजीर दिफा आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ बायोयुग ग्रीन कमांड प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर दिफा आज आलमी योम माहौलियात के मौके पर कैंट वाके कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत शजरकारी भी करेंगे। बनारस में ब्रिक्स मुमालिक के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की दो रोजा मीटिंग आज दूसरे दिन भी जारी है। मीटिंग में ब्रिक्स अराकीन मुमालिक के नुमाइंदे सकाफती तआवुन की मुख्तलिफ अव्वलियत वाले शोबों पर गौरखोज कर रही है। मीटिंग के दौरान क्रिएटिव मईशत, सकाफती विरासत के तहफ्फुज़, तहजीब पर मबनी हमी जहत तरक्की और आवाम से राबते को मजबूत बनाने जैसे मौजों पर बहस हो रही है। वाज रहे कि सेशन का इफ्तिताह कल किया गया था, जिसकी सदारत हिन्दुस्तान हुकूमत के सकाफत सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल

0: नवंबर के सेशन के लिए अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में शिरकत के लिए खवातीन से दरख्वास्तें तलब की है। इसमें तुलबा, मुहक्किकीन, समाजी कारकुनान और किसी यूनिवर्सिटी या दीगर तालीमी या गैर तालीमी इदारे से वाबस्ता असातज़ा शामिल हैं। और महकमे मौसमियात ने लखनऊ समेत कई जिला में आइंदा कुछ घंटे में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम साइंस मरकज के मुताबिक दारुल हुकूमत लखनऊ समेत रियासत के कई हिस्सों में मुतवस्सित से लेकर हल्की आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुनने वाली सभी प्यारी प्यारी बहनों को नीतू की प्यार भरी राम राम। और मैं नीतू अपनी सभी बहनों का थारे पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में खूब स्वागत करूं। भाई सबसे पहले मुझे यो बताए दो मेरी बहनों के सब कैसे हैं, घर परिवार में मेरी बहनें कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, बड़े बुजुर्ग सब बढ़िया राजी खुशी। और बहनों गर्मी तो बड़ी हो रही, खैर इस समय तो ना थोड़ी सी ना बारिश हो रही थी। भाई मैं तो घर से दौड़ी चली आई अपनी बहनों से ढेर सारी बातें करने के लिए। भाई मेरी बहनें भी तो इंतजार कर रहे हैं, है कि ना है? और बहनों ये जो गर्मी हो ना इस चिपचिपी और इसमें पसीना कितना आवे, और ऐसी गर्मी में ना बहनों शरीर में पानी की कमी होने का बड़ा डर सतावे। तो बहनों पानी तो खूब पीना चाहिए। अच्छा बच्चे और बड़े बुजुर्ग उनका तो बहुत ध्यान रखें कि वे पानी पीते रहें। भी बच्चों का कहा हुआ है कि खेल में लगे रहें, पढ़ाई लिखाई इधर उधर को दिमाग लगा रहे, खाने पीने पे ध्यान ही ना देवे। तो वो जिम्मेदारी जो होवे ना वो हमारी होवे कि हम उन्हें स्वस्थ ताजा पौष्टिक भोजन देवें, पानी को उन्हें ध्यान रखें कि भाई वो पानी पीते रहें। भाई बहनों कहाँ करें, गर्मी में तो सभी परेशान हो गए। अब पहले तो घरों में ना और घरों के बाहर सड़कों पे सब जगह पेड़ पौधे हो में थे, बड़े आंगन हो में थे, घरों के अंदर भी कुएं नलकूप नदियां सब हमें गर्मी से निजात दिलाने में सहायक हो में थे, है कि नहीं? अच्छा जो बहनों पेड़ पौधे हो में ना यो वायु भी शुद्ध करे बड़े जरूरी हो गए। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि, वन, पशु पक्षी, प्राकृतिक संसाधन बहनों सभी हमारे अस्तित्व के वास्ते ना आवश्यक हो गए। बहनों यो जो पर्यावरण यो तो हमारे जीवन का आधार हो गए। और बहनों यो ही सब समझाने के खातिर आज मनाया जावे विश्व पर्यावरण दिवस। और मेरी सभी बहनों को और उनके घर परिवार में सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बहनों आज ढेर सारी बातें करेंगे हम अपनी और वार्ता भी सुनवावेंगे, कहीं जइयो नहीं। बहनों सुनते रहना कार्यक्रम में आखिर तक, जुड़े रहना, पर पहले सुने ये जरूरी संदेश।

0: इंसानों को हर पल चंदन का एहसास।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: संदेश के बाद वापस मैं अपनी बहनों का कार्यक्रम में स्वागत करूं। बहनों, ये पर्यावरण शब्द है, ये परी और आवरण यानी चारों ओर का घेरा, इससे मिलके बना। हमारे चारों ओर मौजूद वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा प्राकृतिक और सामाजिक तत्वों का घेरा।

ही पर्यावरण कहलावे। बहनों, स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन, संतुलित जलवायु और प्रकृति की समृद्धि के लिए ये सभी आवश्यक होवे। बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून यानी आज के दिन मनाया जावे, और इसकी जो शुरुआत ना यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1972 में की गई थी, और इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना होवे। बहनों, आज बढ़ता प्रदूषण, वनों की कटाई, जल स्रोतों का दूषित होना, प्लास्टिक कचरा, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी, और ये सभी जाने हैं। बहनों, इन समस्याओं का प्रभाव मानव जीवन, वन्य जीवों, पूरे पारिस्थितिक तंत्र पे ही पड़े, और जो समय रहते ना चेते ना और इन चुनौतियों का समाधान ना किया, तो बहनों आने वाली पीढ़ियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सके। बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस हमेशा एक थीम पे आधारित होवे, जानो तुम। बहनों, इसका थीम रखने का जो मकसद होवे वो ये होवे कि लोग प्रकृति के महत्व को समझें। और इस बरस की थीम पता क्या है? 2026 की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। बहनों, इस साल की थीम का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तुरंत कदम उठाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और प्रकृति आधारित संसाधनों को अपनाना है। अच्छा बहनों, याद करो, पहले गर्मियों की पहचान आम के बोर, कुओं के पानी, मानसून के इंतजार से हो गई थी, है ना? दोपहरें तपती थी, लेकिन मौसम का अपना एक स्वभाव, अपना एक गुण हुआ करे था। भी जब घर में आंगन हो गए थे, कैसे पेड़ आंगन में पेड़ लगे रहे थे, अमरूद के, आम के और फलों के, दुनिया भर के, और उनके नीचे घरों के आंगन में ही बच्चे खेलते कूदते रहे थे, कितना मजा आवे था। बाहरे को भी जाओ थे तो देखो थे, जरा सा चले थक गए तो सुस्ताने के वास्ते पेड़ तो रहे थे सड़कों के किनारे, जगह जगह वहां बैठ जावे थे चबूतरे पे को, कितना अच्छा लगे था। पेड़ की ठंडी ठंडी हवा लगे थी और गर्मी से भी राहत मिल जावे थी बहनों। और आजकल कहाँ ये सब देखने को मिला है? तो आजकल तो वो ही बस गर्मियां क्या है, सिर्फ गर्म हवाएं, जल संकट और अनिश्चितता के साथ कटती ये जिंदगी। बहनों, पहले देखो पानी कितना मिला था, घर भी बाहर भी सब जगह, और आजकल देखो गांवों और कस्बों में तो फिर भी पानी मिल जावे बहनों, घर से बाहर निकलो तो, और जरा शहर में चले तो जाओ जेब खाली हो जा गर्मी में आदमी की, पानी खरीदते खरीदते ही। इतना जल का संकट भी हो गया, बताओ कितनी अनिश्चितता हो चुकी है। बहनों, हम अक्सर पर्यावरण को केवल पेड़ पौधों, जंगलों या वन्य जीवों तक सीमित करके देखें, जबकि सच तो यो होवे कि पर्यावरण हमारे जीवन का वो व्यापक तंत्र है जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, नदियां, जैव विविधता और जलवायु सभी कुछ शामिल है, और इसी तंत्र पे हमारी खेती, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और भविष्य भी निर्भर करे। माना कि बहनों आज विकास, तरक्की, आगे बढ़ना भी सभी जरूरी हो गए, पर बहनों पर्यावरण संरक्षण भी तो जरूरी हो गए, पर्यावरण का भी तो ध्यान रखना हो गए। बहनों, विकास और पर्यावरण को ना हम एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक बना के देखें। भाई हम सोचें जब विकास करेंगे तो भाई पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, तो बहन ऐसा ना है, विकास भी कर सके, जरा सा ध्यान रखने की जरूरत हो गए कि हाँ जी पर्यावरण को, जल को, ये साफ पानी की नदियां, झीलें, इन्हें किसी तरह से नुकसान ना हो। बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस हमें यो ही तो संदेश देवे कि पर्यावरण की जो रक्षा होवे ना, यो केवल सरकारों का ही दायित्व ना है बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होवे। बहनों, पर्यावरण तो हमारी अमूल्य धरोहर है और इसके संरक्षण में ही मानवता का भविष्य सुरक्षित होवे। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और पृथ्वी को हरा भरा स्वच्छ बनाए रखने की प्रेरणा देवे। बहनों, हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए, प्लास्टिक को बहनों बड़ी नुकसान देवे इसके उपयोग को कम करना चाहिए।

0: और स्वच्छता को अपनाना चाहिए। बहनों, जो छोटे छोटे प्रयास हो ना, यही मिलके बड़े परिवर्तन ला सकें। और बहनों, ये सब तो हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम विकास की दौड़ में शामिल तो रहें भी। कौन पिछड़ना चाहे, सब आगे बढ़ना चाहे, पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। और बहनों, आज इसी पे और जानकारी देंगी आज की हमारी वार्ताकार श्रीमती अनु। विषय है जलवायु परिवर्तन का ग्रामीण आजीविका पर प्रभाव। तो सुने हैं बहनों ये वार्ता।
1: बहनों, क्या आपने भी कभी गौर किया है कि पहले जहां बारिश समय पर होती थी, कि आज मौसम का कोई भरोसा नहीं रह गया है। कभी अचानक तेज बारिश, तो कभी लंबे समय तक सूखा, तो कभी असहनीय गर्मी बढ़ रही है। बहनों, कहीं मौसम का संतुलन, यह बदलता रूप केवल प्रकृति की ही कहानी नहीं है, बल्कि लाखों ग्रामीण परिवारों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। गांव की जिंदगी प्रकृति से जुड़ी होती है और किसानों की उम्मीदें खेतों में उगती फसलों से जुड़ी होती है, और पशु पालने वाले अपने पशुओं का निर्भर रहते हैं। मजदूरों को रोजगार भी खेतों और उससे जुड़े कामों से टिका होता है, लेकिन जब मौसम अपना संतुलन खो देता है तो सबसे पहले असर इन्हीं लोगों पर पड़ता है। बहनों, एक किसान पूरे साल मेहनत करता है, वो बीज खरीदता है, खेत तैयार करता है, खाद डालता है और अच्छी फसल की उम्मीद करता है। लेकिन अगर बारिश समय पर ना हो या जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसकी सारी मेहनत कुछ ही समय में बर्बाद हो जाती है। बहनों, कल्पना कीजिए, एक किसान जिसने धान की खेती की है, अचानक बाढ़ आ जाती है और पूरी फसल पानी में डूब जाती है। दूसरी ओर किसी क्षेत्र में महीनों तक बारिश नहीं होती और खेत सूख जाते हैं। बहनों, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ रहा है, इससे फसलों की पैदावार कम हो रही है और नई नई बीमारियां और कीट फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई किसानों को यह समझ नहीं आता कौन सी फसल कब बोई जाए, क्योंकि मौसम का चक्र लगातार बढ़ रहा है। और बहनों, सिर्फ खेती ही नहीं, पशुपालन भी प्रभावित हो रहा है। गर्मी बढ़ने से लोगों की सेहत पर असर पड़ता है, दूध उत्पादन की कमी हो जाती है और कई क्षेत्रों में पानी और चारे की कमी भी होने लगती है। इसके अलावा बहनों, ग्रामीण मजदूरों के रोजगार भी घट जाते हैं। जब खेती प्रभावित होती है तो खेतों में काम कम मिलता है, मजबूरी में लोग अपने गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। ये पलायन केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक संरचना भी प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन का असर स्वास्थ्य पर भी दिखाई देता है। ज्यादा गर्मी, लू, बाढ़, जल जनित रोगों के कारण ग्रामीण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहनों, बाढ़ और जल भराव के अधिक कारण से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, अन्य रोग तेजी से फैलते हैं। वायु प्रदूषण से एलर्जी और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। बहनों, ग्रामीण महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। उन्हें रोज घर और खेतों दोनों के लिए पानी लाना पड़ता है। उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे उनके समय, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर हम जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन पर जोर दें तो महिलाओं का जीवन थोड़ा आसान हो सकता है और उनकी आजीविका पर भी दबाव कम होगा। बहनों, गर्मी बढ़ने से पशुओं को भी दिक्कत होती है, पानी और चारे की कमी हो जाती है। कई बार तो पशु बीमार पड़ जाते हैं और दूध भी कम देने लगते हैं, इसलिए आय कम होती जाती है। बहनों, जब एक किसान बर्बाद फसल को देखता है तो उसे सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं, उसके सपने टूटते हैं। बच्चों की पढ़ाई, परिवार का खर्च और भविष्य की उम्मीदें भी प्रभावित होती है। गांव का वह परिवार जो कभी आत्मनिर्भर था, धीरे धीरे कठिनाइयों से घिर जाता है। यह सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि देश के लाखों ग्रामीण परिवारों की हकीकत बनती जा रही है। बहनों, तापमान और वर्षा के बदलाव के कारण मच्छरों से फैलने वाले रोगों का

0: खतरा बढ़ जाता है। बाढ़ और जल प्रदूषण के कारण हैजा, टाइफाइड और दस्त जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। गांव की जिंदगी प्रकृति के बहुत करीब होती है। गांव के लोग मौसम के अनुसार अपने कार्य करते हैं। बहनों, जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इसके सामने हार मान लें। अगर सरकार, किसान और आम नागरिक मिलकर काम करें, तो इसके प्रभावों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। बहनों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है जल संरक्षण। आज कई गांव पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में वर्षा के जल का संचयन, बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। गांव में तालाब, कुएं और जलाशयों का संरक्षण किया जाए, ताकि सूखे समय भी पानी उपलब्ध रहे। बहनों, किसानों को ऐसी फसल उगाने के लिए उत्साहित करना चाहिए जो कम समय में भी अच्छी पैदावार दे सके और बदलते मौसम को सहन कर सके। यदि किसान केवल एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय कई प्रकार की फसलें उगाए, तो नुकसान का जोखिम कम हो जाता है। बहनों, हर समस्या का समाधान भी होता है। आज जरूरत है कि हम जलवायु के प्रभाव को समझें, उनसे निपटने का समाधान अपनाएं, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें, कम पानी में उगने वाली फसलों को अपनाएं, पेड़ लगाएं और वनों का संरक्षण करें, किसानों को मौसम संबंधी जानकारी समय पर प्राप्त कराई जाए। जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि ये हमारे किसानों, मजदूरों और पूरे ग्रामीण समाज की आजीविका से जुड़ा है। आज अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, जल और जंगलों की रक्षा करेंगे, तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित जीवन जी सकेंगी। बहनों, धरती हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपनी पीढ़ियों से उधार लिया है। बहनों, इसी सोच के साथ आइए, पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारियां बनाएं और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। बहनों, वृक्षारोपण की जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक अच्छा उपाय है। पेड़ न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वर्षा को संतुलित करने में मदद करते हैं। यदि हर गांव में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए, तो पर्यावरण और आजीविका दोनों को लाभ होगा। इसके अलावा बहनों, किसानों को मौसम की सटीक जानकारी समय पर मिलनी चाहिए। यदि किसानों को समय पर जानकारी मिले कि कब बारिश होगी, कब तेज गर्मी पड़ेगी या कब तूफान आने की संभावना है, तो वे अपनी खेती की बेहतर योजना बना सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। बहनों, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई केवल योजनाओं से नहीं जीती जा सकती। हमें अपने बच्चों, युवाओं को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाना होगा। प्लास्टिक का कम उपयोग, ऊर्जा की बचत, पानी का सही उपयोग और अधिक से अधिक पेड़ लगाना, इस तरह छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बहनों, अंत में यह याद रखना जरूरी है कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहनों, मैं यह कहना चाहूंगी, धरती माँ की पीड़ा को समझना होगा, प्रकृति के संग मिलकर चलना होगा, पेड़ लगाएं, जल बचाएं, हर इंसान तभी सुरक्षित होगा, गांव और किसान।
1: जलवायु परिवर्तन का ग्रामीण आजीविका पर प्रभाव, इसी विषय पर बहनों अभी थारे ने सुनी वार्ता। वार्ताकार थी श्रीमती अनु। बहनों, कितनी अच्छी बात हमारी बहन अनु ने बताई कि हमें जो भी चुनौतियां आती हैं, भाई जो जलवायु है, जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है ग्रामीण जीवन में, ग्रामीण आजीविका पर, वो पड़ता है किसानों पर। पर उन्होंने कहा कि चुनौतियों से घबरा

नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है। जरूरत होती है बहनों जागरूक होने की, और सच में बहनों जिस चीज की ना जितनी जरूरत हो उतना ही प्रयोग करें। बहनों पानी बिजली सब बचा के चलना चाहिए। भाई बेवजह क्यों पानी बहाना, क्यों बिजली खर्च करनी? और बहनों गर्मियों में आजकल का हो कि बिजली के उपकरणों का उपयोग तो खूब बढ़ जावे, और अत्यधिक गर्मी के कारण उपकरणों के खराब होने, शॉर्ट सर्किट, आग लगने, ऐसी चीजों का खतरा बढ़ जावे। बहनों सुरक्षित रहने के वास्ते उपकरणों के लगातार प्रयोग से बचें। तारों की जांच करवाते रहना चाहिए, कटे फटे तार जो हो ना वो भी बदल देने चाहिए। अच्छा पूरी रात पंखे चलें, कूलर चलें, तो वो भी तो गर्म हो जावे बहना, उनकी मोटर गर्म हो जावे, तो सुबह को उठ के थोड़ी देर को उन्हें भी बंद कर देना चाहिए ताकि थोड़ी सी मोटर है वो ठंडी हो जाए। और हम इन चीजों का ध्यान ना रखते, भाई बच्चे थोड़ी रखेंगे ये चीजों का ध्यान, तो खासकर घर की महिलाओं को ही रखना होवे। और अगर हम ऐसे नहीं करते तो इससे जब वो गर्म हो जाते हैं तो उपकरण फूकने का डर रहता है।

और सर्विस का भी ध्यान रखना चाहिए। लाइट भाग जावे तो इनके अंदर गंदगी हो जावे, तो इसका ध्यान बहुत जरूरी होता है रखना। और सभी बातों का ध्यान रखते हुए बहनों, गर्मी की चुनौतियों से हम आसानी से पार पा सकें। और सबसे जरूरी बात होवे कि कुछ भी हो, अपनी सेहत का, अपने घर परिवार में सबकी सेहत का ध्यान जरूर रखें। और बहनों, बातें तो अभी थारे से चलती रहेंगी, और अब हम सुनवा में हैं एक मजेदार लोकगीत।

यहाँ आए। सच्ची बहनों, कितना प्यारा भावनात्मक लोकगीत, मेरी तो आंखों में पानी आ गया। सोचो कितना हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहनों, हम सबको जागरूक होना होगा और आज कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी सभी बहनों को, सभी को यही संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण को बचाओ ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इसका सुख भोग सकें। और बहनों, थारे से बात करते करते मन तो नाए भरा, पर का करें, अभी कार्यक्रम का समय जो पूरा हो चला। तो बहनों, हमें चिट्ठी पत्री लिख के बताना कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन 2467 63। बहनों, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो, 9457078288, 9457078288। और बहनों, ईमेल आईडी है akashvaninajibabad@gmail.com। और इसी के साथ बहनों, अपनी बहन नीतू को दो अनुमति। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक धारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं गिरीश कुमार के गाए राजस्थानी लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं गिरीश कुमार के गाए राजस्थानी लोकगीत। आइए सुनते हैं अंतिम लोकगीत।
1: मेरे भारत की

0: में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। SOCHM के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्ताव

0: प्रभावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे। यस, माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ है उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात

0: वर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
1: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर भोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है गीत संगीत का कार्यक्रम फिल्म।

कव्वालियाँ। श्रोता दोस्तों, आज आपके सबके साथ हूँ मैं, आपकी साथी पारुल। फिल्म संगीत के इस मनोरंजक कार्यक्रम में आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली कव्वाली फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। गायक हैं लता मंगेशकर और साथी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और कव्वाली लिखी है मजरूह सुल्तानपुरी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पर्दे में यूं ना आया करो, कभी बेवक्त भी मिलने आ जाया करो, पांच पास बैठो तो यूं वक्त ना बताया करो, ऐसे मुझसे तुम यूं नजरे ना छुपाया करो, कितना है इश्क तुम्हें कभी तो जताया करो, पर्दे में यूं ना आया करो। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं हम फिल्म शिकार से ली गई एक कव्वाली। आवाज़ है आशा भोसले की, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और कव्वाली लिखी है हसरत जयपुरी ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं गीत संगीत का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म ताजमहल से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले। संगीतबद्ध किया है रोशन ने और कव्वाली सृजन किया है साहिर लुधियानवी ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम कव्वाली फिल्म हेना से। युगल आवाजें हैं लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथियों की। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, राहें अभी तक तेरी आहट को तरस रही हैं, आजा कि मुकद्दर भी तेरा नाम गुनगुनाए। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए।

इस कव्वाली के साथ ही फिल्मी संगीत का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। हमारी दूसरी सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बज रहे हैं। हमारे सायंकालीन प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। इसमें श्रोताओं आज आपको सुनवा रहे हैं श्रीमती सुधा जी की आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़ी कुछ यादें और बातें। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में उनकी जुबानी उनकी कहानी।
1: मेरा नाम सुधा है। मैं आदर्श नगर में रहती हूँ, नजीबाबाद में रहती हूँ।
2: कितने साल से जुड़ी हैं आप रेडियो से?
1: वैसे तो रेडियो तो हमारा बचपन से ही सुनते आए हैं, छोटे थे तब से ही, लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी। रेडियो के लिए घर में भी बहुत झगड़े होते थे, भाई बहन भी बहुत थे, कोई छुपा देता था रेडियो। और पिताजी का और मेरा तो रेडियो के पीछे बहुत ही झगड़ा होता था। वो रेडियो में कमेंट्री सुनते थे और मैं गाने सुनती थी। कभी इतनी जानकारी भी नहीं थी, बस गाने सुनने का शौक था बचपन से ही।
2: आकाशवाणी नजीबाबाद की श्रोता कब से हैं आप?
1: आकाशवाणी नजीबाबाद की श्रोता ऐसे एग्जैक्ट तो मुझे इतना नहीं याद, लेकिन थोड़ा होश संभाला, बड़ी हो गई तो फिर लगा कि ये आकाशवाणी नजीबाबाद भी कोई ऐसा स्टेशन है जहाँ से हमारे उत्तराखंड के प्रोग्राम आते हैं, गढ़वाल के बारे में मतलब बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो फिर एक इंटरेस्ट जागा और उसको सुनती थी, उसमें मैं इतनी जानकारी मिलती थी। जैसे मैंने बहुत सारे फूल लगाए हैं, बागवानी करी है मैंने, बेल लगा रखी है, तो मेरे गुड़हल के फूल हैं, उनमें एक व्हाइट कलर का कीड़ा होता है, उसे मिनी बग कहते हैं, चिपचिपा सा होता है, वो पौधे को बिल्कुल नष्ट कर देता है।
2: जी,
1: मैंने जब रेडियो में कई बार सुनती थी तो मुझे लगा कि इससे तो बहुत जानकारी मिलती है। तो वाकई मैंने जो उन्होंने मुझे बताया कि उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, वो सब मैंने किया तो मेरे पौधे में कीड़े नहीं लगते।
2: जी, आपको फ़ायदा मिला है मतलब रेडियो में कार्यक्रम सुन के, है ना, अपनी बागवानी में?
1: जी जी, और शाम के टाइम पे कृषि जगत कार्यक्रम आता है, उसको मैं सुनती हूँ। सुबह बागवानी का आता है,
2: वो जी, खेती की बातें।
1: जी जी, खेती की बातें, और उसमें वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे मेरे घर में पेड़ पौधे हैं तो पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन पत्तों को मैं फेंकती हूँ एक गड्ढे में डाल के, उसके ऊपर मिट्टी डाल के कंपोस्ट खाद तैयार करती हूँ, और भी मैंने कुछ सीखा है।
2: जी, तो सुधा जी, आपने बहुत सारी जानकारी रेडियो से ली और आज हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा भी कर ली। तो सुधा जी, रेडियो किस तरह से आपका साथी बनकर साथ रहा है?
1: जब मैंने शादी के बाद एमए किया तो मतलब मेरे पास इतनी सुविधा भी नहीं थी, मैं कहीं जा भी नहीं पाती थी कि अपने लिए बुक लाऊं कुछ लाऊं, तो मैं रेडियो सुनती थी। तो हमें खाड़ी युद्ध के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन रेडियो में खाड़ी युद्ध के बारे में काफ़ी कुछ आता था। तो हमारे एग्जाम में भी एक क्वेश्चन यही आ गया था खाड़ी युद्ध से संबंधित, तो मुझे लिखने के लिए ना उसमें बहुत कुछ मिल गया। तो बिना किताब के होने के बावजूद भी मैंने मतलब रेडियो से ये सब जानकारी मिली तो मैं कुछ लिख पाई। और उसमें इतने अच्छे कार्यक्रम आते हैं, सुबह संकेत ध्वनि होती है, उसके बाद वंदना, उसमें हर तरह के भजन आते हैं, सोमवार है तो भोलेनाथ का होगा,
2: जी, जी।
1: सभी धर्म के उसमें प्रोग्राम आते हैं। और साथ में काम करते रहो और सुनते रहो।

0: और पहले तो ये सुविधा सब नहीं थी, मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो उसी से जानकारी मिलती थी सारी। और अब ये भी है कि अगर हम रेडियो हम कहीं कैरी नहीं कर सकते, नहीं ले जा सकते हैं, तो अपने मोबाइल में भी हम रेडियो सुन सकते हैं।
1: जी, कोई कार्यक्रम ऐसा है जो आपके दिल के बहुत करीब है?
0: हाँ, एक तो महिला जगत का ही है और दूसरा सैनिकों के लिए, क्योंकि सैनिकों का प्रोग्राम मुझे इसलिए अच्छा लगता है, एक तो मेरे पति भी जो है आर्मी में ही थे, अब तो रिटायर हो गए, और मेरा बेटा भी
1: जी
0: आर्मी में ही है, तो मुझे सैनिकों का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगता है। और जब वो फौज में थे तो एक अकेलापन सा होता था, तो तब कोई साधन नहीं थे, तो रेडियो से हमें बहुत अच्छा लगता था सुनने में, एक अकेलापन सा दूर होता था। उसमें हर तरह के गाने आते हैं, अच्छे अच्छे गाने आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता था।
1: रेडियो ने अपना विश्वास किस तरह से कायम बनाया हुआ है?
0: रेडियो में इसलिए विश्वास रखते हैं क्योंकि जो हम रेडियो में सुनते हैं वो बिल्कुल सही सटीक न्यूज़ होती हैं, जानकारी हमको बिल्कुल सही मिलती है, और उससे हमको पता भी चलता है कि हाँ देश में ये हो रहा है।
1: जी
0: और जैसे इसमें प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आता
1: जी
0: है
1: मन की बात
0: और प्रादेशिक समाचार आते हैं, गांधी
1: यानी
0: जी का जीवन कथा आती
1: जी
0: है,
1: जी
0: सुबह रामायण पाठ आता है, तो जो लोग रामायण नहीं पढ़ पाते हैं उसमें रोज थोड़ा थोड़ा रामायण का एक एक भाग आता है, वो पूरे अनुवाद के साथ बताते हैं, तो
1: जी
0: बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि उम्र जैसी जैसी बढ़ती है तो धार्मिक किताब पढ़ने का झुकाव सा हो गया।
1: तो क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारे श्रोताओं को रेडियो को लेकर?
0: जो भी रेडियो सुनने वाले हैं, श्रोताओं को मैं यही कहूंगी कि रेडियो जरूर सुने, रेडियो सुनने से हमको पूरे देश की खबर मिलती है, और महिलाओं के लिए उसमें इतने सारे प्रोग्राम आते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम आते हैं, कई बार महिलाएं अपनी जो आंतरिक बीमारियां हैं उसको नहीं बोल पाती हैं, तो
1: जी
0: उसमें डॉक्टर विशेषज्ञ आते हैं, वो पूरी जानकारी देते हैं, तो महिलाओं के लिए और सभी लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि वो रेडियो जरूर सुने, सच्ची न्यूज़ होती है इसमें, कोई झूठी खबर नहीं होती है।
1: जी आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है, और इसमें हमने बातचीत की श्रीमती सुधा से। तो रेडियो का 90 वर्षों का ये सफ़र श्रोताओं से और भी मजबूत हो गया है, और हमारे श्रोताओं का रेडियो ने हमेशा सच्चा साथी बनकर साथ निभाया और इस विश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया है।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5:10 होने को हैं। अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
2: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचड़ा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
1: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भाई ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
2: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
1: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
2: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
1: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
2: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
1: इस अभियान में गांव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
2: गांव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गांव वाला हमारे साथ नदी में नहीं था। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
1: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
2: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
2: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
2: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
2: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
2: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई

0: है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
1: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
0: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
1: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए। और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
0: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
1: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
0: आप जिस तरह यह कार्य करके साबित किए, बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
1: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन ये सब पेड़ बैठाएंगे।
0: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
1: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
0: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: विश यू अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त उज्मा।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूसुफा जैदी और आज है फ्राइडे यानी कि गजलों का मौसम, तो महफिल तो खूब जमेगी, क्या आप तैयार हैं?
0: और इसी के साथ आप सुनेंगे सेगमेंट आपका सितारा, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं एक चमकते सितारे की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: मगर उससे पहले देना होगा आपको हमारे एक सवाल का जवाब।

0: दोस्तों, आज हमारा आपसे पूछो तो जाने के अंतर्गत सवाल है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं?
1: और इसका सही जवाब आपको देना है हमारे एफबी पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर। तो तब तक आप देते हैं हमें सही जवाब, और तब तक हम आपको सुनाते हैं आज की शाम की ये खूबसूरत पहली गजल। क्योंकि देखिए, जिंदगी से यही गिला है हमें कि कोई बहुत देर के बाद मिला है हमें।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
0: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: जी अंकल जी, तो बताइए क्या फॉर्मेलिटीज होंगी आपके यहाँ?
3: बस कुछ नहीं भाई, कुछ सवाल है मेरे, उनका जवाब सही सही दे देना। ये बताओ, काम क्या करते हो? रहने वाले कहाँ के हो? घर में कौन कौन है?
2: जी जी वो मैं।
3: अरे अरे, माँ बाप क्या करते हैं? सैलरी कितनी है?
2: ये समझ लीजिए।
3: और हाँ, नॉन वेज तो नहीं खाते? और ये सिगरेट विगरेट तो नहीं पीते?
2: नहीं नहीं।
3: और हाँ एक बात और, लेट नाइट घर आने की आदत तो नहीं है? और हाँ सुनो, ड्रिंक तो नहीं करते?
2: नहीं। माय डियर मकान मालिक, मुझे सिर्फ आपका एक रूम ही किराए पे चाहिए, आपकी बेटी का हाथ नहीं।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: पेड़ों की छाव हो, नदियों का प्यार हो, हर तरफ हरियाली का सुंदर सा संसार हो,
9: आने वाली हर पीढ़ी हमसे यही कहे, धरती को बचाने में आपका भी योगदान हो।
8: और इसी खूबसूरत सोच और हरियाली से भरे संदेश के साथ आप सभी को विश्व पर्यावरण की ढेर सारी शुभकामनाएं।
9: दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो हमें बिना बिल भेजे हवा देता है, जो बिना फीस लिए पानी और बिना छुट्टी किए हमारी सेवा करते हैं।
8: और कौन है वो शख्सियत, जरा हमें भी तो बताओ।
9: वो है हमारी धरती। लेकिन ये सुबह मुझे लगता है आजकल हमारी धरती हमसे थोड़ी सी नाराज है।
8: नाराज थोड़ी? अरे बहन, अगर धरती माँ के पास व्हाट्सएप होता ना तो रोज वो स्टेटस लगाती, कुछ लोग मुझे माँ कहते हैं और कुछ लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं।
9: बिल्कुल यूसुफ, तुम्हें पता है हमारी पृथ्वी का सुपर हीरो कौन है?
8: ये भी कोई पूछने वाली बात है? पर्यावरण हमारी पृथ्वी का सुपर हीरो है। और आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस।
9: मतलब हम कह सकते हैं सुपर हीरो डे, है ना?
8: क्यों नहीं।
9: लेकिन यूसुफ, दुख की बात तो ये है कि हम उसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
8: बात तो सही है, पेड़ों की कटाई, प्लास्टिक का यूज, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ऊपर से पर्यावरण को सच में हमने इतना कमजोर बना दिया है कि क्या ही कहने।
9: यूसुफा, अगर पेड़ बोलते ना तो सच में पता है क्या कहते? यही कहते, सिर्फ मेरी छांव में बैठने और सेल्फी लेने मत आओ मेरे साथ, कभी मुझे लगाओ भी।
8: और नदियां कहती, मैं जीवन देती हूँ, प्लीज मुझे कूड़ेदान मत बनाओ।
9: और हवा, हवा बहते हुए कहती, भाई मैं खुद मास्क पहन पहन के परेशान हो गई हूँ।
8: तो दोस्तों, मजाक अपनी जगह, मगर सच ये है कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
9: और इसके लिए कोई सुपर हीरो आपको बनने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी आदतें बदलनी है।
8: जैसे नए नए पौधे लगाएं, पानी बचाएं, प्लास्टिक का यूज कम करें, कूड़ा कूड़ेदान में डालें और अपने दिमाग को भी थोड़ा साफ रखें।
9: बिल्कुल, यानी कि अपनी नाराज धरती को सॉरी बोलने और थैंक यू कहने का सबसे आसान तरीका उसकी देखभाल करना, उसे साफ सुथरा रखना।
8: तो उज्मा, एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है?
9: हाँ बिल्कुल दोस्तों, इस साल यानी 2026 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए।
8: और दोस्तों, ये थीम पृथ्वी द्वारा भेजे जा रहे संकेतों जैसे कि बढ़ता तापमान, ग्लेशियर का पिघलना और ये सब उल्टी पुल्टी खबरें जो आ रही है, वो सब चीजों के लिए प्रति जागरूक और प्रतिक्रिया पर केंद्रित है।
9: बिल्कुल, तो आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब भी मिलकर एक वादा करें, धरती को हरा भरा बनाएंगे और अपना पर्यावरण बचाएंगे।
8: और पर्यावरण बचाने के लिए हमें अपनी वो सोच, वो जो हमारा एक जुनून है ना, उसे वापस बुलाना है इसी गजल के साथ कि कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है।

0: को फोन को तकरा है, सामने से चोर उस लड़की का पर्स छीन रहा था, तुमने उसकी कोई मदद नहीं की?
1: अरे सर, मैं उस लड़की को जानता हूँ।
0: अरे तो जानता है तो और मदद करनी चाहिए थी ना।
1: अरे सर, जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। पता है आपको वो कैसे कैसे व्हाट्सएप स्टेटस लगाती है?
0: कैसे लगाती? स्टेटस तो तुम्हारा खराब है, लड़की की मदद करनी चाहिए थी।
1: अरे सर, मैं उसके व्हाट्सएप स्टेटस की बात कर रहा हूँ।
0: ओहो, अच्छा बताओ क्या है उसके स्टेटस में।
1: अरे सर, रात ही स्टेटस लगाया था। पता है क्या लिखा था? आई कैन हैंडल माई प्रॉब्लम्स, माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ वुमेन।
0: फिर ठीक है तो मरण दे।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
3: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
0: तो प्रोग्राम में मजा आ रहा है आपको? चलिए आज इस प्रोग्राम में एक सितारा और लगा देते हैं। अरे सेगमेंट आपका सितारा, जिसमें आप सुनेंगे अनूप अंटवाल से नंदिनी की बातचीत।
4: स्वागत है दोस्तों, आपके साथ जुड़ गई हूँ मैं नंदिनी माहेश्वरी, और हमारे साथ एक बड़े प्यारे से सितारे हैं हमारे सेगमेंट आपका सितारा में। तो सबसे पहले जानते हैं उनका नाम।
5: नमस्कार, मेरा नाम अनूप अंटवाल है और मैं कोटद्वार उत्तराखंड से हूँ।
4: तो अनूप जी क्या करते हैं आप?
5: मैं संगीत शिक्षक हूँ, एक कलाकार हूँ। अपने सॉन्ग्स लिखता हूँ, सिखाता हूँ बच्चों को, सीखता भी हूँ।
4: तो मतलब कला का समुद्र एक तरह से आपके अंदर है, एक छोटा सा हम मान सकते हैं।
5: ऐसा कह सकते हैं।
4: तो अब इतनी सारी बातें की है तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। तो स्कूलिंग आपने कहाँ से की है?
5: मैंने 12th तक किया, उसके बाद मैंने संगीत से ही, संगीत प्रभाकर होता है, गायन से, वादन से, और इसमें ही जो भी सीखा या किया संगीत से ही करने का प्रयास किया।
4: तो जब आप इतने संगीत में हैं तो आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में कोई एक प्रोमिनेंट सदस्य था जिसने आपको म्यूजिक की तरफ किया, या फिर अंदरूनी एक एहसास था जो संगीत की तरफ ले आया आप?
5: मैंने पिताजी को गाते हुए सुना।
4: जो ये इंडियन ओरिजिन के फैमिलीज हैं या जगह हैं, उसमें जो इतना चेंज आया माहौल में, उसको आप कैसे देखते हैं?
5: और मैं देखता हूँ कि आज जो जिस माहौल में वो आ रहा है, कितना उसको कंफर्ट।
4: तो अब आपके अंडर इतने सारे बच्चे आते हैं जो सीखने आते हैं, तो आप उनका भविष्य संवारने के लिए आप उनको कैसे जोश जगाते हैं?
5: हर बच्चे का अलग माइंड है, तो हर बच्चे को अलग तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। सेम पैटर्न आप फॉलो नहीं कर सकते।
4: हर एक इंसान अलग ही साइंस है।
5: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिफर है।
4: हम साइंस की बातों की तरफ चल चुके हैं, लेकिन वापस हम म्यूजिक की तरफ आएंगे और हम आपसे फरमाइश करेंगे कि आप कुछ सुनाएं।
5: महादेव में रे हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर शंभु। धन्यवाद।
4: बहुत बहुत बहुत सुंदर। और आपने साथ साथ बताया भी था कि आप लेखन भी करते हैं, तो ये आपका अपना कंपोजिशन है?
5: अपना कंपोजिशन।
4: तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई? मतलब ठीक है गाते तो थे, लेकिन लिखना कैसे आपने शुरू?
5: मैं जब कोटद्वार सीख के मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ
4: जी,
5: तो एक बैंड बना हमारा और इवेंट्स में हमने जाना परफॉर्म किया। लिखने का शौक, धुने बनाने का शौक, चलते चलते कुछ धुन में दिमाग में आ गई, ये शुरू से रहा
4: जी।
5: फिर मैंने इसको प्रोफेशनली करना शुरू किया। फर्स्ट सॉन्ग मैंने होशकास दिल्ली एक जगह है वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कराया।
4: तो आप जैसे इतनी सारी एल्बम्स आती हैं, तो आपको क्या मतलब तैयारी उसकी आप कैसे करते हैं?
5: तो जब मैं ऐसा करना शुरू किया तो ये हार जीत ये दिमाग से हट गई, मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए कि मैंने ठीक काम किया।
4: तो अब आपका आगे का प्लान है? आपने जैसे बताया कि अभी दो हफ्ते पहले आपकी एक एल्बम आई है गंगा मैया, पहले तो हम चाहेंगे उसका थोड़ा सा आप कुछ सुना दें।
5: ये मैंने अभी तक हिंदी भजन बनाए थे और ये मेरा पहला पहाड़ी भजन रहा है ना, तो दो लाइनें मैं इसको सुनाना चाहूंगा। छल छल बगणु तेरो जल है गंगा माँ, शिव जी का जटो मां समाईच गंगा माँ।
4: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मतलब ये भी एक माइलस्टोन है कि आपने पहला पहाड़ी भजन अपने लोकल एरिया से आपने उसको उठाया है।
5: जी जी।
4: चलिए तो अगर मैं पूछूंगी आगे आपका क्या प्लान्स है, क्योंकि आप पीछे से इतना सब कुछ कर गया है, तो आगे कुछ वीडियो में आप करना चाह रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हैं रंगमंच में भी आप रहे हैं, तो क्या आपके एल्बम्स हैं?
5: मेरा

0: जो मोटिव रहा है कि मुझे लगता है कोई इंसान अगर किसी मुकाम पे पहुंच रहा है
1: जी
0: तो फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है दूसरों को कोई आप मुकाम पे पहुंचाएं
1: बहुत
0: या
1: सुंदर
0: एक
1: बात
0: मंच
1: कही
0: दें,
1: आपने,
0: क्योंकि मैं
1: बहुत
0: तो पहुंच
1: सुंदर
0: ही रहा
1: जी
0: हूं। मैं तो
1: जी
0: अब मुझे लगता है कि मैंने एक गुरु से सुना था, हमारे गुरु कहते थे कि तानसेन होते हैं तानसेन से पहले कानसेन बनो, और पहले कान अच्छे करो अपने, सुनना शुरू करो दूसरों को, सुनना शुरू करो, गाना बात की बात है।
1: जी
0: अब मेरा ये विचार रहा कि मैं बच्चों को सिखाता हूँ जो भी मैंने सीखा है, तो उनको मंच दे पाऊँ, उनको मैं कहीं पहुंचू तो उनको कहाँ तक पहुंचा सकता हूँ, मैं आगे अपने से आगे पहुंचाने का प्रयास करूँ।
1: आर्ट एक ऐसी फील्ड है जब कई सारे लोग, अच्छे लोग उसमें काम करते हैं, जिसमें टैलेंट है, तो वो आपकी भी उतनी ही निखरती है,
0: हाँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप कहीं भी हो, कहीं से
1: कहीं
0: भी
1: भी हो,
0: हो, और
1: कोई
0: आप मेहनत कर रहे हो ना,
1: बिल्कुल
0: तो आपको कहीं ना कहीं से घूम फिर के आप
1: जी,
0: पहुंच
1: किसी
0: जाओगे
1: बड़े
0: सही
1: इंस्टीट्यूट
0: जगह
1: की
0: पे।
1: भी
0: नहीं
1: जरूरत है, अगर आप मेहनत
0: नहीं
1: करें तो
0: नहीं नहीं
1: अपने
0: नहीं
1: आप
0: नहीं
1: पहुंच जाते हो
0: नहीं
1: किसी भी फील्ड
0: पहुंच
1: में।
0: जाओगे, आप मेहनत मत छोड़ो,
1: बिल्कुल।
0: अपने पे काम करो।
1: अब आपको जो म्यूजिक में बच्चों का टेस्ट है, क्योंकि वेस्टर्न ज्यादा आ रहा है, प्रॉपर जो क्लासिकल म्यूजिक है, जैसे ठुमरी है या प्रॉपर फुल शेड गजल है, इस टाइप की जो म्यूजिक है, उसकी जो डिमांड है या फिर बोले जो सप्लाई है, क्योंकि जहां से आता है उस तरह का म्यूजिक नहीं आ पा रहा, उसको आप कैसे देखेंगे?
0: मैं ये कहूँगा कि हर कलाकार का एक अलग टेस्ट होता है
1: जी
0: संगीत का। आप समझ बढ़ा लो ताल की, सुरों की,
1: सुरों
0: इसके
1: की
0: बाद तो आप वेस्टर्न गा रहे हो, आप किसी फील्ड में जा रहे हो, सेमी क्लासिकल आ रहे हो, कुछ
1: जी
0: भी गा रहे हैं ना आप, वो आपका एक बेस मजबूत रहेगा ना, दिखता है वो, फिर
1: जी
0: वो आपके ना सुर पक्के हो
1: सुर
0: जाते हैं।
1: पक्के हो जाते
0: हाँ
1: हैं, फिर आप
0: हाँ
1: कुछ भी गाते हैं
0: फिर
1: तो
0: आप
1: अच्छा
0: कुछ भी
1: है,
0: गाते, नहीं बच्चे ले रहे हैं इंटरेस्ट,
1: बच्चे ले रहे हैं आपके।
0: वेस्टर्न बच्चे
1: जी
0: सब गाते हैं, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत पेरेंट्स खुद आते हैं मेरे पास। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आपके अंदर तो एबिलिटी है, गॉड
1: जी
0: गिफ्ट है, आप तो सुरताल में हो। मैं तो
1: जी
0: नहीं भी था, मैं तब जब आ गया,
1: जी
0: इतना कुछ आपके
1: तो
0: पास है,
1: मेहनत सब कुछ करवा देती
0: मैंने
1: है
0: सब कुछ
1: और
0: करवा
1: आप
0: दिया।
1: अंत में सितारे बन गए हैं और चमकते जा रहे हैं।
0: बस कोशिश कोशिश जारी रहती है,
1: चलिए,
0: कोशिश
1: बहुत
0: जारी।
1: बहुत शुक्रिया अनूप जी। आप जाने से पहले कुछ सुनाना चाहेंगे?
0: हाँ, मैं जैसे कि सूफी का एक शुरू से रुझान
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सुनना
1: सुनाइए।
0: चाह सुना।

0: धन्यवाद
1: जी आपके संगीत के साथ, आपके साथ हमारे लिसनर्स का जिया तो बहुत लगा होगा।
0: धन्यवाद।
1: तो धन्यवाद अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके।
0: मुझे बहुत अच्छा लगा,
1: धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको आपका सितारा सुनकर? अच्छा लगा, आपका जिया भी धड़का। चलिए तो अगर धड़क गया है तो उसकी धड़कन को जो है और ज्यादा मजीद बढ़ा देते हैं सेगमेंट कहानी के उस पार के अंतर्गत। अभी तक आपने सुना था कि हरिधन अपने ससुराल में बड़ी हीन भावना का सामना कर रहा है, उसका आत्मसम्मान जो है कचोट रहा है उसे। अब उसका आगे क्या फैसला होगा ये तो आपको आज पता चलेगा एपिसोड नंबर 5 में कहानी के उस पार। तो सुनिएगा हमारा सेगमेंट कहानी के उस पार।

हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त उज्मा, और आप सुन रहे हैं कहानी घर जमाई। आज हमारी कहानी का अंतिम भाग है, यानी एपिसोड नंबर 5। दोस्तों, कल हमने सुना था हरिधन ने बहुत अपमान सहा था। अब देखिए अंत में उसने क्या फैसला लिया। सास के उन शब्दों से हरिधन जो टूटा तो फिर ना संवर सका। सारे घर ने शाम में फिर से खाना खाया, पर हरिधन वहां से नहीं उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए। हरिधन नहीं उठा। वहां दरवाजे पर एक टाट पड़ा हुआ था। हरिधन उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जमीन पर बिछाकर नीचे ही बैठ गया। रात का एक पहर बीत चुका था। अनंत आकाश में चमकते तारे बच्चों की तरह खेल रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था तो कोई आंखें बंद करके फिर खोल देता था। रह रहकर कोई साहसी बालक तेजी से एक पल में उस बड़े क्षेत्र को पार कर लेता था। आसमान में उन तारों को उछलता कूदता देखकर हरिधन को अपना बचपन याद आ गया।

जब वो भी इसी तरह खेलता था। उसकी बचपन की यादें उन्हीं चमकते तारों की तरह जग गई। वो अपना छोटा सा घर, वो आम का बाग जहां वो कच्चे आम चुनता था, वो मैदान जहां कबड्डी खेला करता था, सब याद आने लगे। फिर अपनी प्यारी माँ की दयालु मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। उसे ऐसा लगा मानो माँ की आंखों में आंसू भरे हैं। उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वो उस मीठी भावना में अपने को भूल गया। ऐसा लगा मानो माँ ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है। वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी भावना में उसके मुंह से ये शब्द निकले, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया, देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या हालत हो रही है, कोई उसे पानी तक को नहीं पूछता अम्मा, क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं है अम्मा। ये गुनगुनाहट सुनकर गुमानी बाहर आई और आकर हरिधन को पुकारा, क्या सो गए तुम, ऐसी भी क्या भयानक नींद है, चलकर खाना क्यों नहीं खा लेते, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे। हरिधन उस कल्पना की दुनिया से क्रूर हकीकत में वापस आ गया। वही कुएं की जमीन थी, वही फटा हुआ टाट और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहेगा, आवाज नहीं आ रही। हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोल रहा हो, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई, मैंने कह तो दिया था मुझे भूख नहीं है। इस पर गुमानी बोली, तो कितने दिन तक नहीं खाओगे, अब इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा, तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं। दृढ़ फैसले से भरे इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी, बोली, कहां जा रहे हो। हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब, मेरे साथ चलेगी या नहीं, फिर बाद में न कहना मुझसे कहा नहीं था। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं हो कहां जा रहे हो, अरे तू मेरे साथ चलेगी या नहीं। देखिए जी, जब तक आप बता नहीं देंगे कि कहां जा रहे हैं मैं ना जाऊंगी। तो मालूम हो गया मुझे गुमानी, तू मेरे साथ नहीं आएगी है ना, बस तुझसे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक तो मैं आधी दूरी निकल गया होता, नहीं तो अब तक तो मैं अपनी आधी दूरी तय कर चुका होता। ये कहकर हरिधन उठा और तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। गुमानी पुकारती रही, सुन लो सुन लो, पर उसने फिरकर भी नहीं देखा। 30 मील का रास्ता हरिधन ने 5 घंटों में तय किया। जब वो अपने गांव के किनारे आम के बाग के सामने पहुंचा तो उसकी माँ वाली भावना सुबह की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन पेड़ों को देखकर उसका व्याकुल दिल नाचने लगा। हरिधन एक पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। लग रहा था मानो उसका बचपन वापस आ गया हो। सास के वो कठोर शब्द, पत्नी का वो बेरहम आघात, वो सारा अपमान उसे रह रह कर याद आ रहा था, और एक तरफ अपने गांव लौटने की खुशी में वो पागल हुए जा रहा था। तभी बाग के रखवाले ने पुकारा, अरे कौन है ये जो ऊपर चढ़ा है, उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। वो डालियों में छिप गया और जोर जोर से ठहाका मार कर हंसा। ऐसी खुशी भरी हंसी उसने बहुत दिनों से नहीं हंसी थी। रखवाले को ये हंसी परिचित लगी। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदर की तरह तेजी से ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। वो चौंक कर बोला, अरे हरिधन तुम यहाँ कब आए, इस पेड़ पर कब से बैठे हो। बाघ का रखवाला, मगरू और हरिधन दोनों बचपन के दोस्त थे। वो दोनों गले मिले। वो बोला, यहाँ कब आए हो भाई, चलो घर चलो, क्या तुम्हारी ससुराल में आम नहीं मिलते थे। हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मगरू इन आमों में जो स्वाद है वो और कहीं के आमों में नहीं, और बताओ गांव का क्या हाल है। यही बातचीत करते करते दोनों नीचे उतर आए। मगरू बोला, अब सब ठीक है भैया, जब से तुम्हारे बाबा मरे सारे घर की व्यवस्था बिगड़ गई, 2 छोटे छोटे लड़के हैं तुम्हारे बाबा के अब। हरिधन बोला, अब उस घर से क्या लेना देना भाई, मैं तो अपना हिस्सा भी वहां से ले चुका, लेकिन भाई तुम्हारी गाय चरा लिया करूंगा, मजदूरी ही दे दिया करना। मगरू ने चौंक कर कहा, अरे भैया कैसी बातें करते हो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है क्या ससुराल में।

0: नहीं रहोगे? चलो ठीक है, मत रहना, कोई चिंता नहीं। पहले तो भैया तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से बिना वजह डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो, तुम्हें पाकर तो खुश हो जाएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई आए और पैरों में लिपट गए और फिर वापस दौड़े दौड़े अपनी माँ को खबर देने भागे। हरिधन घर में जाकर एक चारपाई पर बैठ गया। शाम हो चुकी थी। सौतेली माँ ने कहा, बेटा तुम घर आ गए हो, अब इस घर को संभालो, इन बच्चों को पालो। माँ के नाते ना सही, बाप के नाते तो करोगे ना। इस घर को संभाल लो बेटा, ये घर तुम्हारा है। मुझे माना मानना, मगर ये घर तो तुम्हारा है ना। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तो तुम मेरे बेटे हो ना। हरिधन ने माँ वाली भावना से भरी आंखों से सौतेली माँ के रूप में अपनी माँ के दर्शन किए। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रख कर खेत को चला, मगर इस बार वो खेत अपने थे। उसके चेहरे पर खुशी थी और आंखों में गर्व। अब वो किसी पर निर्भर नहीं था, किसी के द्वार का भिखारी नहीं था, बल्कि अपने घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा विवाह कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने शादी कर ली है? काकी ने कहा, अरे कर ली तो क्या, कौन सा लोग उसे अच्छा कहेंगे, तू भी पंचायत बिठा ले। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, लाओ महावीर जी को लड्डू चढ़ा आऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे ही गले ना आ पड़े, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह नहीं देखूंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही हरिधन फिर अपने घर लौट आया। उसके चेहरे पर खुशी थी और आंखों में गर्व। अब वो किसी पर बोझ नहीं, बल्कि अपने घर का रक्षक बन गया था।
1: तो दोस्तों, हमने पूछा था आपसे सवाल, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, और जिसका सही जवाब है कुल 12 अनुसूचियां हैं।
0: और सही जवाब देने वालों के नाम हैं कुछ इस तरह, सुदर्शन शाह, हीरामन वर्मा, जॉन डी कैस्ट्रो, नंद कुमार ठाकुर, फरियाद हुसैन अंसारी, धर्मेंद्र छीपा, जगदीश ढाकड़, ताज अंसारी, और दिनेश वर्मा, देवशंकर तामुरिया, बबलेश पवार, तुलसी मुकेश, राष्ट्रपाल गजबे, अजीत, राधेश्याम पांडे, मसरूर हसन,
1: मोहम्मद रफीक पवार, रवि कुमार, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, मिसबा शमसी, मोहम्मद यासीन अंजान, आसिफ चौधरी, जाकिर मंसूरी, रामकुमार रेवार, परवीन चौहान और एम खलील कुरैशी, बीएड ढाकड़, विजय सुलरकर, सत्येंद्र और फागुराम यादव, विठल सरोशी, गंगा सिंह रावत, गंगलेजा संतोष, हलके जयपाल, लाल मोहम्मद अंसारी। तो दोस्तों, इन्हीं सभी लोगों ने दिए हैं हमें सही जवाब, और लिस्ट अभी लंबी है, लेकिन उससे पहले हम आपको सुना देते हैं खूबसूरत सी गजल, क्योंकि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर आपसे ज्यादा हमें कौन पाएगा।

0: और सही जवाब देने वालों में शामिल हैं लाल मोहम्मद अंसारी, सैयद शिव थोरात, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद अफजल ताज, संजय ढीगिया, शमसुल कमर राही, के आर चौहान, अक्षर रस्तोगी, आफ्ताब अंसारी, महेंद्र मोदी, दिलशाद हुसैन, शकील अहमद, सुरेश गंगनेजा, अरविंद कुमार, धीरज भाई राबड़ी, राजेश वर्मा, राजकुमार डूडी, मुकेश कश्यप, शारुनूर अंसारी, भुवन प्रकाश और मोहम्मद सईद अब्बासी, धुनेन्द्रा शेख, मूसा, अनिल बिगोट के, राजवीर कुमार और नदीम बाकी और हैं लास्ट दुर्गाराम साहू। तो इन्हीं सभी लिसनर ने हमें दिया है बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों
1: ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं, और खत भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
0: आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल हमारा नेम है आकाशवाणी नजीबाबाद। तो ढेर सारे लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बताइए कि हमारी मेहनत आपको कैसे लग रही है। और इसी के साथ मुझे यूसुफा जैदी
1: और उज्मा को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, मीडियम वेव 314.64 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: खेलों का नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ

0: शक्ति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू की
0: राम राम।
1: तो भाई गंगाराम।
0: हाँ भैया झुमरू।
1: अरे कैसे हाल चाल है भाई, सब राज्य खुशी?
0: भाई देखो फिलहाल तो ठीक है भाई, मौसम करवट बदल लिया।
1: देखो भैया आज तो सुबह से बादल बदली वाला मौसम हो रहा था।
0: हाँ।
1: और भाई आप ये समझ लो कि भैया जनपद बिजनौर की अगर हम बात करें,
0: हाँ,
1: तो भैया कहीं पर हल्की कहीं पर मध्यम, भाई देखो बारिश हुई है।
0: भाई बात ये हुई है ना, अभी देखो कल परसों से कितनी तकड़ी गर्मी थी, आज मौसम में थोड़ा सा फर्क आ गया। तो मौसम का जो मिजाज बदल गया ना, इससे थोड़ा सा हो रहा आमना।
1: तो भाई देखो जहां तक मौसम के मिजाज की बात है,
0: हाँ,
1: और भैया हमारी प्रकृति के मिजाज की बात है, तो भैया इसे समझने की और परखने की आवश्यकता भैया।
0: बिल्कुल भाई, देखो कहीं ना कहीं इस प्रकृति के साथ जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं भैया, इसके जिम्मेदार हम हैं।
1: बिल्कुल भाई, देखो आज 5 जून है और भैया आज का जो दिवस है भैया वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस।
0: बिल्कुल।
1: और भैया इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि भैया हमारे जो आसपास का पर्यावरण, जो वातावरण है, वो भैया वो ठीक ठाक रहे, वो शुद्ध रहे, वो रहने लायक रहे वो, और भैया आने वाली पीढ़ी को भैया हमें अच्छा वातावरण दे सकें।
0: बिल्कुल, देखो जहां तक बात आपने विश्व पर्यावरण दिवस की करी है, भाई देखो कोई भी दिवस या पखवाड़ा या सप्ताह मनाने के पीछे उद्देश्य यो रहता है कि उस विषय की तरफ हमारा ध्यान जावे।
1: बिल्कुल।
0: एक दिन में ही भैया पर्यावरण बिल्कुल ठीक नहीं होने का, इसमें तो हमें रोज रोज काम करना पड़ेगा। लेकिन आज मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि भाई हमारा ध्यान तो इस ओर जाना शुरू हो।
1: भाई देखो जहां तक पर्यावरण की बात है,
0: हाँ,
1: तो भैया कटते पेड़ और घटता भूजल स्तर भाई हमारी चिंता का विषय बना हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: और भाई देखो हम लगातार पेड़ों को काट रहे हैं, नए पेड़ इतने लग नहीं रहे हैं, और भैया अंधाधुंध जल का दोहन,
0: हाँ,
1: यो भैया हमारे लिए खतरे का सबब बना हुआ है भैया, और खतरे घंटी कभी भी बच सकती है भैया। आप देखो कई ब्लॉक जो है भैया डार्क जोन में घोषित है, और भैया वहां पर जो नए बोरिंग नहीं हो सकते हैं, तो भैया हम इस डार्क जोन से बाहर निकलना है भैया, नए पेड़ हमें लगाने हैं, और भैया जल की बचत करनी है और ज्यादा जल का प्रयोग नहीं करना है, जिससे कि भैया आने वाली पीढ़ियां भी जो है इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सकें।
0: बिल्कुल, देखो भाई ये जो भूमि है या जो पृथ्वी है,
1: हाँ
0: भैया, ये सबकी है।
1: बिल्कुल,
0: किसी एक की नहीं है। इस पृथ्वी पर जहाँ जैसा हम रह रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी रह रहे हैं, और न जाने कितने वर्षों तक हमारी जो संतानें हैं या उनकी संतानें हैं वो लगातार रहे हैं, तो ये तभी संभव है जब हम इसे प्रदूषित होने से बचाएंगे।
1: बिल्कुल। और देखो भैया जल प्रदूषण भी इसमें मुख्य है, और भैया आप देखोगे कि जो हमारी नदियां हैं या भैया तालाब हैं, जो हमारे प्राकृतिक जल संसाधन है, तो भैया वे प्रदूषित होते चले जा रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: भैया, उसमें कूड़ा कचरा और भैया वो कई तरह के भैया उसमें खरपतवार हो गए हैं, जिससे कि भैया पानी का बहाव भी रुक गया है, और जब भैया पानी का बहाव रुक जाता है तो भैया पानी गंदा होने लगता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखो हमें ऐसे संसाधनों को भी अब खोजने की जरूरत है। जैसे भाई देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल है, तो इससे भाई मोटर वाहन चलते हैं तो धुआं भी बहुत निकलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आवाज भी बहुत निकलती है। तो अब आपने देखा होगा नए जमाने की रफ्तार के अगर हम कर चले तो भैया ई का जमाना आ गया, ई रिक्शा है, ई मोटरसाइकिल है, ई कार है। तो इससे फायदा ये हुआ कि भाई एक तो धुआं नहीं आया,
1: बिल्कुल,
0: एक आवाज पे भी फर्क पड़ा।
1: हाँ हाँ।
0: तो जहां हम बहुत बड़ी तादाद में खर्चा कर रहे थे, वो खर्चा भी कम हुआ। तो यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम की बात हुई, पर्यावरण भी प्रदूषण को फैलाने से हम बचे,
1: हाँ,
0: और दूसरा भैया हमारा खर्चा भी कम आया।
1: और भाई देखो खर्चा कम करने वाली जहां तक बात है,
0: हाँ,
1: तो भैया उसमें हम ये भी काम कर सकते भैया, पहले तो हमारी ये होती की भैया एकला चलेंगे,
0: हाँ,
1: यानी कि भैया हमारे पास में कार है, मोटरसाइकिल है, हम तो अपनी अलग लेकर जाएंगे भैया, हम किसी दूसरे के में क्यों बैठे,
0: हाँ,
1: तो भैया वो बात हमें भूल कर अगर भैया दो व्यक्ति एक ही स्थान पर एक ही कार्यस्थल पर अगर जा रहे हैं, तो भैया अगर हम आपस में शेयर कर ले, है ना भाई, कि भैया एक दिन तुम ले चलो अपनी कार या भैया मोटरसाइकिल, दूसरे दिन भैया मैं ले जाऊंगा।
0: बिल्कुल।
1: तो इससे भैया जो सड़क पर वाहनों की संख्या वो भी घटेगी भैया, खर्च भी हमारा घटेगा,
0: हाँ,
1: और पर्यावरण भी ठीक ठाक रहेगा।
0: बिल्कुल सही बात है। और भाई हमारे किसान भाई तो पर्यावरण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
1: हाँ।
0: भाई खाली पड़ी जमीन में भैया पेड़ लगाओ
1: भैया।
0: उसके अलावा भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल कोई भी फसल है उसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, और भैया कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, तो इससे भी पर्यावरण पर बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। खास तौर से जो हमारे फसल के अवशेष हैं उन्हें जलाने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर इन चीजों पर अंकुश लगाया जावे तो भी हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा।
1: बिल्कुल भाई देखो, और हमें जैविक खेती अपनानी है, और जो भैया हम रासायनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। जो भैया रासायनिक दवाइयां हैं या रासायनिक उर्वरक हैं,
0: हाँ।
1: तो भैया इसके अवशेष, हाँ। जो भैया हमारे फल हैं, अनाज हैं, सब्जियां हैं, उसमाते हैं, और उन अवशेषों के आने से भैया भयानक बीमारियां हमें लगती हैं, और भैया

0: हमारे मानव स्वास्थ्य को इससे खतरा भी हो रहा है।
1: बिल्कुल। दूसरे ये भी एक बात है भैया कि स्वाद में ही फर्क आता जा रहा है।
0: हाँ।
1: पहले भैया लोग क्या करते हैं भाई, हम देसी आम भी खाया करते थे, कितना स्वाद आता था, खट्टी मीठी है ये।
0: बिल्कुल।
1: आजकल आप कितनी बढ़िया आम ले लो, कितने बढ़िया कोई सेब ले लो, कितने बढ़िया फल ले लो, कह मत भाई वो मिठास ही नहीं। भाई कारण क्या हो रहा है, इतने कीटनाशक, इतने रासायनिक खाद, इतनी दवाइयाँ इनका उपयोग हो रहा है, तो जो वास्तविकता थी, जो वास्तविक स्वाद था, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया।
0: भाई देखो, अगर हम बचपन की बात याद करें
1: हाँ
0: तो भैया इन दिनों जब भैया वो डाल का आम आना शुरू हो जाता,
1: हाँ
0: और देसी आम जो होता भैया, वो बारीक बारीक से आम भी भैया वे, और खट्टी मिट्टी, और उनसे भैया सुबह सुबह जो है ना नमक की रोटी खाया करते थे भाई।
1: सही कह रहे हो।
0: और उनका स्वाद तो भैया अलग ही होता, साथ में भैया मट्ठा हो जाता। तो भाई इस स्वाद की अगर हम बात करें तो भैया इनके आगे तो भैया पंच पकवान भी फेल है भैया, अभी समझ लो।
1: भाई एक बात तुम्हें याद होगी, इन दिनों में अचार डलना शुरू हो जाएगा
0: हाँ
1: कि भाई अब बांदी बूंदाबांदी सी पड़ गई,
0: हाँ
1: अब गर्मी निकल गई, आम भी हो गई, अचार डाल लो।
0: जाला पड़ गया अम्बे में।
1: हाँ, और वो अचार जो है पूरे साल पीला ही रहे था,
0: काला
1: काला नहीं हुआ था।
0: नहीं होता भैया वो।
1: और अब तुम कितनी हल्दी लगा दो, कितने कोई डाल दो, वो पीलापन आने का ही नहीं।
0: बिल्कुल।
1: अब मतलब कहने का ये है कि वास्तविकता से हम दूर होते चले जा रहे हैं, और जब तक हम अपनी वास्तविकता पर नहीं आने के हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जनजीवन वो बढ़िया खुशहाली की तरफ नहीं जाने का है।
0: तो भाई देखो, हम इस बनावटीपन से भैया वापस लौटना है, और भैया हमें अपनी प्रकृति के नज़दीक आना है, और भैया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाने हैं अपने आसपास, भैया पेड़ लगाने हैं। और गांव में तो भाई आप ये समझ लो कि रास्तों पर, नहर के पटरी के आसपास, या मेड़ों पर, डॉलों पर, जहाँ भी मौका मिलो भैया वहाँ पेड़ लगा दो। और भैया हमारे जागरूक किसान भाई ऐसे होते हैं कि वो अपने खेत के चारों ओर भैया मेड़बंदी करके भैया उसमें पेड़ लगा दें। हैं
1: बिल्कुल। देखो एक बात और आ रही है, हमारी सरकार हर साल लक्ष्य बनाती है भाई, स्कूल कॉलेजों में भी पेड़ देंगे कि आज भैया इतने लाख पेड़ लग गए, आज
0: हाँ
1: आपका करोड़ों पेड़ लग गए, और आपका ये हो गए। वो पेड़ लगे भी हैं और पता नहीं कहाँ चले
0: कहाँ
1: जाए,
0: चले जाए भैया।
1: और वो होते ही नहीं। हाँ भाई, तो समस्या क्या है कि केवल लगा देना ही उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्या वास्तविकता है कि पालना है ना। हम एक तरफ क्या करेंगे, जन्मदिन मनाएंगे, और भैया कहाँ फलाने होटल में रोटी खा खा
0: हाँ
1: के।
0: हाँ हाँ
1: और भाई सबसे अच्छा ये है कि एक नीम का पेड़ लगाओ, एक
0: बिल्कुल
1: बकैन का पेड़ लगाओ,
0: हाँ
1: एक पिलखन का पेड़ लगाओ, एक पिपल का पेड़ लगाओ, और जन्मदिन को यादगार बनाओ। जैसे हम अपने बालक को पाल पोस को बड़ा कर रहे हैं, ऐसे उस पेड़ को पाल लो कि भैया ये वाला पेड़, ये हमने तेरे जो है फलाने जन्मदिन पर मनाया था, ये वर्षगांठ पर मनाया था, तो इन्हीं यादों को इस तरह से मधुर बनाया जा सकता।
0: बिल्कुल। और भाई देखो, जो हमारे पूर्वज हैं
1: हाँ
0: भाई, जैसे हमारे दादा दादी हैं, तो भैया उनकी याद में भैया हम पेड़ लगा सकते हैं।
1: सही।
0: भाई पूर्वजों की याद में पेड़ लगावा, तो भैया ये याद रहेगा कि भैया ये हमारे दादाजी का के नाम का पेड़ है, ये हमारी अम्मा के नाम का पेड़ है, ये हमारे पिताजी के नाम का पेड़ है। तो भैया उसे देख कर भैया हमारी याद भी ताज़ा होंगी, और उनका स्नेह भैया हमें ऐसा लगेगा, जब पेड़ के नीचे भैया हमें ठंडी ठंडी हवा लगेगी तो ऐसा लगेगा कि हमें जो अपने पूर्वजों का स्नेह मिल गया, प्रेम मिल गया।
1: बिल्कुल। आपको याद होगा हमारी दादी क्या कह रही थी, अरे तेरे दादा ने वो बाग लगाया कि उनके पोते खाए करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: मतलब एक लंबी सोच, एक दूर तक की सोच, एक ऐसी सोच के आने वाला जो भविष्य है वो सुखद जीवन जीवेगा, वो पता नहीं कहाँ चली गई है।
0: तो भाई हम इन सब बातों को अपनाना है, और जो हमारी पारंपरिक बातें हैं भैया वो हमें अपने जीवन में वापस लानी है, अपनी प्रकृति से भैया हमें प्रेम करना है। तो भाई देखो, गंगाराम बातचीत बहुत सारी हो गई है, लेकिन फिलहाल भैया लेते हैं विराम और सुनते हैं ये कुछ जरूरी संदेश।
1: ठीक है भैया।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: तो भाई देखो, संदेश हमारे भाइयों ने सुन लिए हैं, और भैया आज है जून माह का पहला शुक्रवार।
1: ठीक।
0: और भैया हमारे बहन भाई को पता कि भैया हर माह के पहले शुक्रवार को किसान भाई सुनते हैं हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम। हेलो किसान।
1: बिल्कुल। तो भैया आपकी कोई खेती किसानी पशुपालन बागवानी से संबंधित समस्या हो तो भैया हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के जवाब देने की। और भाई इसके लिए फोन नंबर बता दें।
0: बिल्कुल बताओ भैया।
1: भैया हमारा फोन नंबर है 94-57-07-82-88। और भैया एक और नंबर है हमारा, पहले नजीबाबाद का एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा आपको, 013-41, और फोन नंबर है 230-105।
0: ठीक,
1: तो इनमें से किसी एक नंबर पर फोन करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। लेकिन भैया आपसे अनुरोध यह है कि खेती किसानी पशुपालन या बागवानी आदि संबंधी बात ही हमसे करें।
0: बिल्कुल।
1: और भाई अब शुरू करते हैं आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसका नाम है
0: हेलो किसान।

0: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों को आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। और इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू
1: और मैं हूं आपका भैया आलोक कुमार गंगाराम। तो भैया जैसा हमने

0: जी मैं आप सुनाइए आप कैसे हैं और आकाशवाणी परिवार में सब कैसे हैं?
1: जी बिल्कुल सब कुशल मंगल है। आप बताइए
2: आपके यहाँ बारिश हुई क्या? अब आज
0: अभी बारिश नहीं हुई जी, हवा आंधी आई थी।
2: आंधी कल?
0: हाँ जी।
2: बहुत तगड़ी आई थी या
0: नहीं? हल्की आई जी, ज्यादा।
1: अच्छा अच्छा, देखिए हमारे आसपास तो यहाँ हल्की बारिश हुई है।
0: अच्छा जी, आप पता लगा मुझे, फोन आए थे।
1: अच्छा अच्छा जी जी,
0: बारिश होगी
1: जी। और बताइए खेती बाड़ी कैसे चल रही है आपकी?
0: बहुत बढ़िया चल रही है जी, ठीक चल रही है।
2: तो क्या पूछना चाह रहे हैं आज आप?
0: आज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 14 मई में गन्ना लगा था।
1: अच्छा जी,
0: 18
1: जी,
0: तो आपने जो बीज बताया था उसी के मुताबिक हमने अब की बार बदल दिया है, गन्ना
1: जी
0: खड़ा ही लगा है।
2: ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छा किया।
0: हाँ जी, जम गया है वैसे।
1: हाँ,
0: अच्छी साल जम गया है, तो अब क्या देखभाल करनी चाहिए उसकी?
1: देखिये 14 मई को आपने गन्ना लगाया है
0: जी, जी जी,
1: तो इतना लेट कैसे हो गया? क्योंकि गेहूँ काटने के बाद भी जो हम बुआई करते हैं वो तो अप्रैल में हो ही जाती है, अप्रैल के रहते रहते
0: जी। हाँ तो
2: बारिश की वजह से लेट हो गया होगा।
0: हाँ जी, बारिश की वजह से लेट हो गया, बताओ नहीं आया।
1: अच्छा, तो बारिश की वजह से गन्ना हमारा लेट हुआ, 14 मई को बुआई हुई है, तो अब तो लाइनें दिख गई होंगी ना उसमें?
0: हाँ जी हाँ।
1: तो कोई घास फूस तो उसमें नहीं, जैसे मोथा घास हो जाती है?
0: ना, घास नहीं है।
1: अच्छा, तो देखिए घास फूस अगर नहीं है तो फिर भी आप उसमें आप एक काम कीजिए, उसकी एक बार सूखी निकाई गुड़ाई कीजिए, एक बार उसमें कल्टीवेटर निकाल दीजिए। ठीक है जी।
0: अच्छा जी, अच्छा जी।
1: हाँ, क्योंकि जो बारीक हमारे जो घास फूस उसमें जमाव कर रहे होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, और
0: अच्छा जी,
1: उसकी निकाय गुड़ाई करने के बाद में एक दो दोपहरा लगाने के बाद फिर आप उसमें पानी लगाइए, सिंचाई कीजिए।
0: अच्छा जी,
1: और फिर निकाय गुड़ाई कीजिए, और उसके बाद आपको जो है कुछ नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना, यानी यूरिया भी उसमें डालना है।
0: हाँ,
1: तो यूरिया का आप इस्तेमाल कीजिए पहले सिंचाई के बाद, और उसके बाद हमें निकाय गुड़ाई करनी है अगर मौका मिलता है, क्योंकि बरसात अगर नहीं लगती है तो आप उसमें निकाय गुड़ाई करते रहिएगा जब तक बरसात न लगे, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा उत्पादन उससे मिलेगा। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक और साथी का फोन है, देखते हैं कौन भैया है।
1: हेलो
2: हेलो हेलो किसान।
3: हाँ जी, मैं राम कुमार बोल रहा
2: हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं राम कुमार जी?
3: बागपत जिला और ग्राम अभिकला है
2: जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आज आप क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे?
3: हम ये पूछना चाह रहे हैं जी,
2: जैसे
3: जंगली जानवर है ना, ये फसलों को उजाड़ दे।
1: हाँ जी हाँ जी,
3: तो हमने सोचा करुंदे की बाढ़ बताइए।
1: हाँ
2: जी जी, बहुत बढ़िया किया आपने,
3: तो उसकी थोड़ी जानकारी दे दो हमें।
1: हाँ देखिए, बाड़ आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जंगली जानवरों से सुरक्षा करने के लिए हमारे किसानों में तार बाड़ भी लगाते हैं, और इसकी बाड़ आप लगा सकते हैं, तार बाड़ लगा सकते हैं, और इसके लिए देखिए जहां तक हमने सुना है कि सरकार कुछ अनुदान भी देती है तार बाड़ लगाने के लिए।
2: ये करौंदे की बाड़ का जाना चाह रहे हैं, करौंदे का पेड़ लगाने की बात तो कर रहे हैं ना आप?
3: हाँ हाँ, पेड़ लगाने वाली बात
2: जी जी। करौंदा भी बहुत अच्छी चीज है, और उसको देखिए आप थोड़ा सा ना 5 फीट के दायरे से कम या 6 फीट के दायरे से एक पौधे से दूसरे पौधे को लगाइए, क्योंकि ये काफी बड़ा आकार ले लेता है,
1: फैल जाता
2: और
1: है।
3: अच्छा जी,
2: उसके बाद जो है आपका ये बढ़िया काम करेगा, दीवार जैसा काम करेगा, यानी कि आपका जो जंगली जानवर है उसके अंदर नहीं आ पाएगा,
1: आपके खेत में नहीं आ पाएगा।
2: तो अच्छी सोच है आपकी, और इसके जो फल है वो आप उसका अचार के रूप में या बेच के काफी आमदनी भी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो
3: आप इसके बीज ही बो गए जी?
2: नहीं, आप पौध ले लीजिएगा, ज्यादा अच्छी है,
1: आप इसकी पौध लगाइए।
3: अच्छा जी, अच्छा
1: जी, बिल्कुल जी। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं एक और हमारे श्रोता लाइन पर है। हेलो
4: हेलो,
1: हाँ जी हेलो किसान।
4: हेलो किसान, नमस्कार जी।
2: नमस्कार साहब।
4: हेलो
2: हाँ,
4: हेलो कुमार जी, नमस्कार।
2: नमस्कार साहब, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे
4: हैं? नमस्कार
1: जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताइए नाम बता दीजिए अपना।
4: मुस्तकीम बोल रहा हूँ सिहारा से।
2: जी सिहारा से मुस्तकीम जी, कैसे हैं उधर, मौसम ठीक कैसा हो रहा है?
4: सर मौसम सर जो है अभी बादल हो रहे हैं सर, बारिश नहीं हो रही, गर्मी में होते सर।
2: अच्छा अच्छा,
1: बादल बदली वाला मौसम हो रहा है,
2: आंधी तो नहीं आई उधर?
4: अभी आंधी नहीं आई सर जी।
1: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो बताइए खेती बाड़ी कैसे चल रही है?
4: खेती बाड़ी
1: जी
4: जी,
1: क्या जानकारी चाह रहे हैं
4: सर? मैं ये चाह रहा था कि सर जो मैंने गन्ना लगाया तो उसके अंदर सर नीचे की जड़े जो है मतलब गलती नहीं, पानी की प्रॉब्लम हो रही, पानी नहीं मिली। मैंने अंजन से भी पानी लगाया लेकिन फिर भी गन्ना सूख रहा है, पता नहीं क्यों।
1: गन्ना सूख रहा है
4: जी?
1: मतलब पूरा पौधा सूख रहा है या ऊपर का पत्ता सूख रहा है, ये बताइए
4: जी। मैं कह रहा हूँ।

0: ऊपर का पत्ता पत्ता सूख रहा है।
1: लंबा वाला जो पत्ता होता है वो सूख रहा है,
2: बीच की
0: जी
2: गोफ
0: जी
1: ने, एक तो बीच की गोफ होती है वो सूखती है, एक जो जो सबसे लंबा पत्ता होता है वो सूखता है।
0: जी जो लंबा पत्ता है सर वो सूख रहा है।
1: अच्छा वो सूख रहा है, बाकी जो पौधा है वो तो हरा है ना,
0: हाँ वो हरा है।
1: और जो उसकी गोफ है जो जहां से नए पत्ते निकलते हैं वो भी हरा होगा।
0: हाँ वो भी हरा है सर
1: हाँ, तो देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा तब
0: जी।
1: होता है जब ज्यादा तापमान होता है, ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है जी।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, तो ज्यादा तापमान होने की वजह से, ज्यादा गर्मी होने की वजह से ये लंबा वाला पत्ता सूख रहा है, तो इसमें कोई
0: जी जी
1: घबराने वाली बात नहीं है, नए पत्ते आते रहेंगे। और देखिए जब मौसम ठीक हो जाएगा, बारिश होने लगेगी या आप उसमें सिंचाई
0: जी
1: करेंगे, तो ये समस्या नहीं
0: अच्छा
1: आएंगी, ठीक है जी।
0: जी, सर
1: हाँ तो
0: धन्यवाद सर आपका
1: ठीक है जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगाराम भैया
2: जी।
1: देखो, हमारे किसान भाई लगातार भैया हमसे बातचीत कर रहे हैं, फिर भी आप एक बार फिर अपने बहन भाइयों को जो नंबर बता दीजिए।
2: बिल्कुल, मैं देखिए नंबर बता रहा हूँ, हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिएगा किसान भाइयों, 94-57-07-82-88।
1: ठीक
2: इस नंबर पे भैया आप हमें सीधे फोन करके और आपकी कोई जो भी खेती किसानी की समस्या हो आप हमसे बात कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: एक लैंडलाइन नंबर भी है वो भी बता देता
1: हाँ
2: हूँ,
1: हाँ हाँ
2: 01-13-41 नजीबी बात का कोड लगा दीजिएगा, और 230-105 नंबर है। और देखिए एक साथी का फोन है, कौन भैया है?
1: हेलो,
2: हेलो।
1: लगता है कि संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा है।
2: हाँ मैं समझता हूँ कि प्रयास कर रहे हैं, अब आया है उनका फोन।
1: हेलो
2: हेलो किसान।
1: हेलो किसान, संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, एक बार फिर हमें लगता है कि फोन आ रहा है। हेलो,
3: हेलो।
1: हाँ जी, हेलो किसान,
2: थोड़ा रेडियो सेट से दूर हो जाइए,
3: साहब
2: रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाइए।
3: जी।
1: हाँ, रेडियो से अपना थोड़ा दूर हो जाइए, बताइए
3: अरे
1: कौन बोल रहे हैं।
3: एक
2: सर अपना
3: परेशानी
2: नाम बता
3: थी,
2: दीजिए।
3: एक कौन सी मुंजी का वैरायटी का वो नर्सरी करनी चाहिए? हाँ
2: नहीं, अभी आप पहले अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं बता
3: सर,
2: दीजिए।
3: हम शाहलीपुर कोटला सर।
1: शाहलीपुर कोटला से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो धान लगाना चाह रहे हैं आप?
3: बारीक
1: तो धान किस तरह का लगाना चाह रहे हैं, मोटा लगाना चाह रहे हैं या जो सुगंध वाली
3: बारीक
1: बासमती,
3: बारीक बारीक
1: बासमती लगाना चाह रहे हैं?
3: जी।
1: अब देखिए, बासमती अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो बासमती की जो सबसे पॉपुलर प्रजाति है वो है पूसा वन, यानी कि पूसा बासमती एक।
2: यानी कि तूड़ल भी कहते हैं,
3: जी
2: मुच्छल भी कहते हैं
1: हाँ,
2: उसे।
1: इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा 11-21 भी जो है, ये बासमती की बहुत अच्छी प्रजाति है, ये भी आप लगा सकते हैं। 15-09 है बासमती की, ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है जी।
3: जी
1: हाँ
2: बहुत सारी वैरायटी आजकल आ रही हैं, और साधारण तौर पर लोग शरबती लगाते हैं, वो भी
1: जी,
2: अच्छी मुंजी है, उसको भी लगा सकते हैं आप।
1: शरबती भी लगाते हैं, बिजनौर में काफी फेमस है, काफी जो है लोकप्रिय है ये वाली प्रजाति भी, तो शरबती भी
3: और
1: आप लगा
3: वैरायटी
1: सकते हैं, ये भी
3: बता दो।
1: बारीकी मुंजी होती है, बारीक चावल होता है इसका भी।
3: और वैरायटी
1: बहुत, तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगाराम भाई देखो, जहां तक धान की बात है, अभी तक हमारे पास जो जिक्र हो रहा था वो था गन्ने का,
2: हाँ,
1: और गन्ने की फसल तो भाई देखिए हमारी मुख्य फसल है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में।
2: लेकिन इस बीच एक फोन और आ रहा है, देखते हैं कौन भैया है।
1: हाँ हेलो,
3: हेलो।
1: हाँ
2: हाँ जी,
1: जी,
2: अपना नाम बता दीजिए, कौन भैया बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, दोनों भाइयों को राम राम। मैं ग्राम डॉक्टर श्रावण से आचार्य सत्यवीर सिंह बोल रहा था।
1: जी राम
2: जी
1: राम
2: आचार्य
1: जी,
2: जी, कैसे हैं आप
3: और
2: लोग?
3: आप कैसे हैं सब लोग? आप
2: बहुत
3: तो
2: बढ़िया।
3: बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
1: अच्छा बताइए, चांदपुर क्षेत्र में आपका ये मौसम कैसा हो रहा है?
3: वो मौसम तो साहब आज धुंधला सा हो रहा है, सुबह भी अंधी भी आई है, फिर मौसम ऐसे हो रहा है, रात भी अंधी आई।
1: अच्छा,
2: क्या पूछना चाह रहे हैं आप?
3: हाँ बस कोई ऐसी ज्यादा समस्या तो ना, थोड़ी खरपतवार से संबंधित है कि बस वो खुरपी फावले वगैरह हल वगैरह तो निकाल ही रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ और ऐसा समाधान हो जाए जो जैविक विधि से हम करते रहे, थोड़ी
1: देखिए खरपतवार नियंत्रण की जहां
3: सीखे
1: तक
3: तो
1: बात
3: थोड़ा
1: है,
3: सा
1: जी
3: साथ डाले। जी
1: हाँ, देखिए खरपतवार नियंत्रण की जहां तक बात है कि अगर हम निकाय गुड़ाई करें, क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने निकाय गुड़ाई करना बिल्कुल बंद सा कर दिया है और
3: जी
1: केवल आसान सा उपाय देख लिया है कि स्प्रे मारो और खरपतवारों की छुट्टी,
3: जी सही बात
1: तो देखिए वो सही नहीं है। अगर हम खरपतवार पहले जो है खुरपे के माध्यम से निकाय गुड़ाई होती थी तो उसमें बड़ा फायदा हमें मिलता था, ठीक है जी, और उससे फुटाव भी अच्छा होता था, ब्यात भी अच्छा होता था पेड़ी की फसल का।
3: जी
1: तो इस तरीके से देखिए, हमें निकाय गुड़ाई करनी है और पहले हम हाथ के माध्यम से जो मोटे मोटे पौधे होते थे खरपतवारों के, उनको उखाड़ते थे जड़ से।
3: उखाड़ते थे जी। हाँ
1: हाँ, खेत में घूम घूम कर उखाड़ा करते थे, लेकिन अब
3: जी
1: किसान भाई ने वो भी बंद कर दिया है, तो देखिए ये अच्छी बात नहीं है। हमें रसायन का उपचार के अलावा जो हमारी यांत्रिक विधियां हैं जो हम अपने हाथ से करते थे वो हमें अपनानी होंगी, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई गंगाराम भाई देखो,

0: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
1: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
0: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
1: खुशहाली का नया प्रयोग।
2: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
3: तो विराम के बाद बहन भाइयों का एक बार से फिर स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। और हमारे किसान भाई इसमें फोन कर सके तो भैया नंबर एक बार फिर से बता दीजिए भैया।
4: बिल्कुल भैया, देखो हमारा नंबर है 9457072888। और देखो मैंने नंबर बताया, अरे हमारे साथी का नंबर आ गया भैया।
3: हेलो
5: हेलो किसान भाई साहब नमस्ते।
3: हाँ जी हेलो किसान,
5: नमस्ते भाई साहब।
4: नमस्ते साहब नमस्ते, कौन भैया बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
5: जी मैं उत्तराखंड से निकाल सेनगांव फैक्ट्री से प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ जी। मैं
3: जी प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान कार्यक्रम में। बताइए मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
5: धन्यवाद भाषा, मौसम तो इधर फिर बारिश होने की संभावना है, दिन में भी काफी बारिश हुई थी।
3: अच्छा
4: वहाँ तो ठंडक हो गई होगी अब?
5: है जी
4: वहाँ तो ठंड हो गई होगी अब?
5: हाँ जी ठंड हो गई, यहाँ ठंड हो गई।
4: अच्छा रात का मौसम कैसा है वहाँ पे, अभी भी रजाई ओढ़नी पड़ेगी क्या?
5: नहीं रजाई तो नहीं ओढ़नी पड़ रही, इतनी ठंड तो नहीं हुई, रजाई तो नहीं ओढ़नी पड़ रही।
3: अच्छा अच्छा चलिए, मतलब मौसम बढ़िया हो गया है आपके यहाँ?
5: हाँ मौसम बहुत बढ़िया हो गया दादा, बहुत ही बढ़िया। और दादा मैदानी क्षेत्र में कैसा है मौसम?
4: वहाँ भी ठीक है। आप बताइए आज क्या पूछना चाह रहे हैं आप हेलो किसान में?
5: दादा बैंगन लगाए थे मैंने, पर वो बैंगन कुछ तो काफी अच्छी पैदावार दी उन्होंने, लेकिन अब वो फिर गलने लग गए थे, पता नहीं क्यों।
3: बैंगन आपके आपके गल रहे हैं?
5: आज यार अच्छी पैदावार हुई थी, उसमें आने लग गए थे बैंगन भी।
3: हाँ तो देखिए अगर आपके बैंगन गल रहे हैं यानी कि उसमें फल सड़न की हमारी बीमारी लग रही है।
5: हाँ
3: जी फल सड़न की हमारी ये बीमारी लगती है बैंगनों में, तो इससे हमें बचाना है। और ये किसी फंगस की वजह से ऐसा होता है?
4: बिल्कुल।
3: तो किसी फंजीसाइड का हमें इस्तेमाल करना, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या मैंकोजेब है, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जो फल सड़न की हमारी बीमारी लगती है उससे हम बचा सकते हैं।
4: बिल्कुल। तो देखिए एक और साथी हमारे फोन लाइन पे हैं, देखते हैं कौन भैया हैं।
3: हेलो
6: हेलो
4: हाँ जी हेलो किसान,
6: किसान सेवा केंद्र से।
4: जी जी जी कौन भैया बोल रहे हैं, अपना नाम?
6: हाँ जी गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ मैं।
3: कहाँ से बोल रहे हैं गजेंद्र जी?
6: रुद्रप्रयाग कचरा खाल से।
3: अच्छा बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बताइए।
6: हाँ जी हमारे कटहल में
4: जी
6: वो फल आ रहे लेकिन झड़ रहे हो।
4: अच्छा कटहल का बड़ा पेड़ होगा, ठीक है। तो
6: देखो 8-10 साल हो गए जी।
3: अच्छा
4: देखिए ये जो पेड़ है ये एक तरह से
3: मांसाहारी माना जाता है जी।
4: तो आप आपके यहाँ इसमें जो है कई बार तो क्या करते हैं कि उसमें मछली उसके आसपास दबा देते हैं, और पोषक तत्व भी ज्यादा इससे चाहिए होते हैं, या गोबर की सड़ी हुई खाद ज्यादा डाल दीजिएगा।
3: बिल्कुल, या केचुए खाद हम उसमें डाल सकते हैं।
4: केचुए खाद डाल सकते हैं आप?
6: जी जी जी
4: केचुए की खाद बहुत बढ़िया काम करेगी इसमें।
6: कौन सी जी?
4: केचुए की खाद,
3: उसका बर्मी कंपोस्ट बोला जाता है जी।
6: अच्छा जी
3: जी जी
6: अच्छा जी।
3: तो बर्मी कंपोस्ट आप डाली देखिए, जब तक पौधे को संपूर्ण पोषक तत्वों की मात्रा नहीं मिलेगी तो देखिए फूल आते रहेंगे या फल हमारे छोटे गिर जाएंगे तो पूरे फल आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है जी।
4: थोड़ा थावला बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, उसके थोड़ा जड़ से दूर को थावला बनाना पड़ेगा, ठीक है
6: जी जी जी जी
3: जी। तो इस पौधे को ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उसके हिसाब से पोषक तत्व देना बहुत ही जरूरी है। और जब संपूर्ण पोषक तत्वों की

0: पौधे को मिलेगी, तो निश्चित तौर पर फूल भी आएंगे, फल भी आपको खाने को मिलेंगे और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल, तो देखिए अपने किसान भाइयों को ये बता दें कि भाई अभी थोड़ा सा समय है
0: जी,
1: अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का निदान हो तो आप फोन कर सकते हैं। एक साथी का फोन है।
0: हेलो, हाँ जी, हेलो किसान, हेलो,
1: शायद
0: लगता है बातचीत नहीं हो पा रही है। हेलो,
2: हाँ जी,
0: हाँ जी,
1: अपना नाम बता दीजिए।
2: मैं गंगाराम बोल रहा हूँ
1: जी। कहाँ से बोले गंगाराम जी?
2: हसनपुर जाट
1: जी,
2: झाड़ू के पास।
0: हाँ जी, बताइए गंगाराम जी।
2: तो समस्या यही, नींबू का तेल है ये फूल आवर गिरजा, नींबू नहीं आते इसका।
1: थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर हो जाइए आप।
2: समस्या जी
1: जी, अब बताइए
0: जी।
2: हाँ, एक नींबू का पेड़ है
0: जी जी,
2: उसका फूल आते हैं फल नहीं आते।
0: जी जी, तो देखिए जहां तक नींबू की बात है तो हम आपको बता दें कि नींबू का जो पौधा है उसकी उम्र कितनी है?
2: उम्र हो गई 3 साल।
0: अच्छा, 3 साल आपकी उम्र हो गई है।
2: हाँ,
0: तो देखिए हमें नींबू के पौधे में जो पोषक तत्वों की मात्रा वो देनी है, तो हम आपको बता दें कि इसमें 25 ग्राम नाइट्रोजन और 25 ग्राम पोटास का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, और इस मात्रा को देखिए हमें प्रतिवर्ष जो है 10 वर्ष तक बढ़ाना है। तो और जब हमारा पौधा 10 वर्ष का हो जाता है तो उस समय हम 250 ग्राम नाइट्रोजन और 250 ग्राम पोटास की मात्रा देते हैं, और जिंक भी हम इसमें लगाते हैं। जिंक सल्फेट का इस्तेमाल भी करना बहुत ही आवश्यक है, साथ ही जो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व है उसका भी पौधे पर छिड़काव आप अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है।
2: और मालूम करना चाह रहा था
0: जी, जी बताइए।
2: वो जो आप कह रहे हैं कि धान की सीधी बुआई, तो एक बीघे में कितना बीज पड़ेगा सीधी बुआई में?
0: हेलो,
2: हाँ जी,
1: क्या समझ नहीं पाया आपका सवाल? हम
2: सवाल ये है कि आप बता रहे थे मुंडी की सीधी बुआई करने के लिए।
0: जी जी,
2: तो एक बीघे में कितना बीज पड़ेगा सीधी बुआई में?
0: जी बिल्कुल, देखिए जहां तक धान की सीधी बुआई की बात है तो ये हम धान की सीधी बुआई हमारी होती है, और धान की सीधी बुआई में हमारा जो है बीज जो है ज्यादा ही पड़ता है। ठीक है जी,
2: तो भी कितना पड़ेगा?
0: हाँ जी बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये प्रजातियों के हिसाब से हमारा बीज लगता है, क्योंकि जो हमारी मोटी धान वाली प्रजाति होती है उसमें ज़्यादा बीज हमारा लगता है, और जो बारीक धान वाली हमारी प्रजाति होती है तो उसमें थोड़ा कम बीज लगता है। जी बिल्कुल गंगाराम जी, आपको बता रहे हैं।
1: जी मैं भी बताता,
0: धान की सीधी बुआई हम करते हैं तो इसके लिए देखिए हमारे जल की बचत होती है।
1: देखिए हम अगर एक एकड़ की बात करें तो 6 से 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है इसमें, यानी कि 5 बीघे की बात चल रही है। ठीक है,
2: अच्छा,
0: हाँ, जी हाँ। जी,
1: तो इसके लिए जो है 8 किलोग्राम बीज जो है वो बिल्कुल पर्याप्त रहता है।
0: हाँ,
1: उसे आप कर सकते हैं अगर आप 1509 की बात कर रहे हैं तो।
0: बिल्कुल, और देखिए अगर हम बीघे की बात करते हैं, अगर कम क्षेत्रफल में लगा रहे हैं तो लगभग 1.5 से 2 किलो बीज एक बीघे में पर्याप्त रहता है, क्योंकि हमारे
1: डेढ़ से दो किलो के बीच।
0: हाँ हाँ जी जी, 1.5 से 2 किलोग्राम बीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और इसमें जो हम लगाने में हमारी जो है लागत आती है, श्रम लगता है, उससे हम बचा सकते हैं और हमारी लागत भी इसमें ज्यादा नहीं लगती है। तो सीधी बुआई भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल, तो देखिए आज हमने बहुत सारे हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का निदान करा, और आपको बता दें कि भैया हम जो हमारा अगला कार्यक्रम होगा यानी कि हेलो गन्ना किसान
0: जी,
1: वो भैया होगा 19 जून 2026 को।
0: बहुत बढ़िया,
1: तो अगर हमारे किसान भाइयों की गन्ना से संबंधित कोई समस्या है तो 19 जून को 6:05 से लेकर 6:45 तक के बीच में फोन कर सकते हैं
0: जी।
1: इसके अलावा 30 जून 2026 को हमारा कार्यक्रम होगा हेलो बासमती।
0: बिल्कुल,
1: तो बासमती धान से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है
0: बिल्कुल,
1: तो उसके निदान के लिए आप 30 जून को फोन कर सकते हैं। और भैया बात आई है कि हेलो किसान की, तो हेलो किसान भैया अब अगले माह होगा यानी कि 3 जुलाई 2026 को आप हेलो किसान सुन सकते हैं। और इन सब के लिए भैया फोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं।
0: बिल्कुल भैया,
1: हमारा फोन नंबर है 94-5707-8288। एक और फोन नंबर है भैया 01341, हमारा नजीबाबाद का एसटीडी कोड है, और फोन नंबर है 230-105।
0: तो भाई ये हमारे फोन नंबर है, और इन फोन नंबर पर आप जो हमारे ये फोन इन कार्यक्रम है इसमें आप सहभागिता कर सकते हैं, और जो संबंधित विषय है भैया उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो भैया हर माह के पहले और पांचवें शुक्रवार को सुनते रहिए हमारा ये सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसका नाम है
1: हेलो किसान।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। और गंगाराम भाई,
1: जी जुमरू भाई,
0: भाई देखो अब बारी आ गई है मौसम की चिट्ठी की।
1: बिल्कुल। तो भैया मौसम की चिट्ठी पढ़ दो जरा एकदम से।
0: तो भैया मौसम की चिट्ठी भैया हमें मिली है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से।
1: जी।
0: और भाई यहाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार भैया कल यानी के 6 जून को भैया पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में कहीं कहीं भैया हल्की बारिश हो सकती है और भैया उसके बाद बाकी जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
1: तो भैया कल के मौसम की बारिश की संभावना को देखते हुए अपने खेती किसानी के कार्यक्रमों को भैया समायोजित करें, और भाई आप हमें चिट्ठी भी लिखते रहें, मैं
0: बिल्कुल
1: उसके लिए पता भी बता देते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद और पिन कोड है 246763।
0: और भाई इसके अलावा अगर आप चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं आपको चिट्ठी लिखने की फुर्सत ना मिले तो भैया जो हमारा मोबाइल का नंबर है 9457072288 इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज भी हमें भेज सकते हैं।
1: बिल्कुल। इसके अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से।
0: बिल्कुल। और देखो भैया अब हमारे कार्यक्रम का समय संपन्न होने वाला है तो आज का कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया सुबेंद्र सिंह झुमरू
1: और अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम को इजाजत दीजिए। किसान भाइयों
0: राम राम, राम।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं बलराम अहलूवालिया की विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष वार्ता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण एक चुनौती। तो लीजिए सुनिए ये वार्ता।
1: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण एक चुनौती। जिस वायुमंडल में हम श्वास लेते हैं अथवा जिस क्षेत्र का जल हम किसी न किसी रूप में ग्रहण करते हैं, यदि वह शुद्ध नहीं है तथा प्रदूषित है तो वह हमारे अर्थात आम जन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कई बार तो ये गंभीर बीमारियों को जन्म देता है जो अंत में जानलेवा सिद्ध होती हैं। पूरे उत्तर भारत के साथ उत्तर प्रदेश में भी जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो यहाँ की नदियों और ग्राउंड वाटर अर्थात भूमिगत जल दोनों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। जहाँ नदियों के प्रदूषित जल में अनेक जलीय जीवों का रहना असंभव हो गया है, वहीं खतरनाक रसायनों से युक्त भूमिगत जल का प्रयोग करने से मनुष्य भी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड CGWB की वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के जल संसाधनों पर औद्योगिक कचरे, शहरी सीवेज और कृषि रसायनों का भारी दबाव है। उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण की वर्तमान स्थिति को मुख्यतः दो भागों में समझा जा सकता है। एक, नदियों का प्रदूषण अर्थात सतही जल प्रदूषण, सरफेस वाटर पोल्यूशन। प्रदेश से होकर बहने वाली बड़ी नदियों में गंगा नदी में कानपुर व वाराणसी में प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD का स्तर 4.60 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाया गया है, जो गंगा के पानी का प्रदूषित होना दर्शाता है। कानपुर के चमड़ा उद्योगों टेनरीज के कचरे व सीवेज के कारण कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया अत्यधिक मात्रा में यहाँ के गंगा जल में पाया जा रहा है, जो कई घातक बीमारियों का कारण बनता है। इसी प्रकार यमुना नदी का आगरा से हमीरपुर तक का स्ट्रेच बेहद प्रदूषित है। दिल्ली व हरियाणा से आने वाला बिना ट्रीट किया हुआ पानी व पुनः आगरा की टेनरीज चमड़ा कारखानों से निकला अपशिष्ट इसे काला व जहरीला बना देता है। प्रदेश के पश्चिमी भाग में सहारनपुर से नोएडा तक बहने वाली हिंडन नदी व शामली, मुजफ्फरनगर व मेरठ से होकर बहने वाली काली नदी देश की सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल हो चुकी हैं। कई स्थानों पर इनके अति प्रदूषित पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन DO का स्तर 0 पाया गया है, जो यह दर्शाता है कि इन नदियों के प्रदूषित जल में अब मछली आदि जलीय जीवों का रहना भी संभव नहीं है। प्रदूषित एवं ऑक्सीजन विहीन जल में मछली आदि छोटे जलीय जीवों के न रहने के कारण बड़े जलीय प्राणी जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल आदि के लिए भोजन का संकट हो गया है, जिससे ये बड़े जलचर नदी किनारे चरने वाले मवेशियों, बकरी, भैंस, गाय, बैल आदि पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। कई बार तो नदी किनारे खेतों में काम करने वाले मनुष्य भी इन बड़े जलीय जानवरों के हमले का शिकार होते हैं। अलीगढ़ व बुलंदशहर क्षेत्रों में इस प्रकार के कई मामले सामने आए हैं। यह एक नए तरह का खतरा है जिसका मूल कारण इन नदियों का गंभीर रूप से प्रदूषित होना है। दूसरे, भूजल प्रदूषण का स्तर भी प्रदेश के कई जिलों में खराब स्थिति तक पहुंच गया है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB की 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार गंगा के मैदानी इलाकों से सटे प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक जिलों में भूजल में खतरनाक रसायन आर्सेनिक की मात्रा निर्धारित मानक 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाई गई है। पहले यह पूर्वी क्षेत्रों बलिया, गाजीपुर या गोरखपुर आदि तक सीमित था, लेकिन अब यह खतरनाक रसायन पश्चिम के जिलों गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बरेली से लिए गए भूजल के नमूनों में भी पाया गया है। एक शोध संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ आदि जिलों में आर्सेनिक के अलावा निकिल, यूरेनियम, मरकरी जैसे अति हानिकारक रसायन इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लगे कागज डिस्टिलरी वे अन्य रासायनिक उद्योगों के अपशिष्टों के जमीन में रिसने से भूजल को गंभीर रूप से खतरा पैदा हो रहा है तथा भूजल प्रदूषित हो रहा है। हैंडपंपों से निकलने वाला पानी जो इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का मुख्य स्रोत है उक्त खतरनाक रसायनों से युक्त पाया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली आदि जिलों में गन्ने और धान की खेती में भारी मात्रा में प्रयोग होने वाले यूरिया व अन्य उर्वरकों से भूजल में नाइट्रेट का स्तर भी निर्धारित मानकों से काफी ऊपर पहुंच गया है। पश्चिमी यूपी के इन क्षेत्रों में पीने का पानी दूषित व खतरनाक रसायनों से युक्त होने के कारण जन स्वास्थ्य पर इसका गंभीर असर पड़ रहा है। हिंडन व काली नदी के किनारे बसे गांव में कैंसर, त्वचा रोग व हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर, शामली के कई गांव में हेपेटाइटिस सी अर्थात काला पीलिया व पेट की गंभीर बीमारियों के मामले सामने आए हैं। कई गांव में प्रदूषित भूजल से होने वाले कैंसर से दर्जनों मौतें होने के भी मामले प्रकाश में आए हैं। दूषित पानी पीने से मवेशी भी ऐसे में मर रहे हैं। बचाव व उपाय। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के कड़े निर्देशों व सरकार के एहतियाती कदमों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई कपड़ा व रासायनिक औद्योगिक इकाइयों को जो नियमों का उल्लंघन कर रही थी सील किया है। कई पर भारी दंड लगाया गया है। प्रदूषित पेयजल वाले कई जिलों में आर्सेनिक से मुक्त पानी निकालने के लिए सीमेंट सीलिंग टेक्नोलॉजी से विशेष कुओं का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सलाह दी जा रही है कि कम गहराई पर लगे उथले हैंडपंपों के बजाय पर्याप्त गहराई पर लगे बोरवेल्स या सरकारी पाइपलाइनों से उपलब्ध उपचारित पीने के पानी का ही प्रयोग करें, जिससे आर्सेनिक व निकल युक्त पानी पीने से होने वाले खतरे को कम किया जा सके। खेती में यूरिया व अन्य रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से भूजल में होने वाले नाइट्रेट प्रदूषण को कम करने हेतु किसानों को मृदा परीक्षण कराने व उसके आधार पर उचित मात्रा व उचित समय पर कम से कम रासायनिक उर्वरक प्रयोग करने हेतु शिक्षित करने व पशु अपशिष्ट का उचित प्रबंध कराने आदि से भूजल में नाइट्रोजन

0: प्रदूषण को काफी कम किया जा सकता है। दुधारू पशुओं हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। इसी प्रकार सीसा प्रदूषण से बचने के लिए कार्बनयुक्त फिल्ट्रेशन संयंत्र RO सामूहिक स्तर पर बड़े स्तर पर लगाए जा सकते हैं। औद्योगिक अपशिष्टों विशेषकर तरल का सख्त प्रबंधन इसमें बहुत आवश्यक है। कम लागत व आसान प्रक्रिया के कारण लगाए गए उथले हैंडपंपों से निकला पेयजल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषित पानी पीने का प्रमुख कारक है। इसी गंभीर समस्या के निवारण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार द्वारा जल जीवन मिशन महायोजना के अंतर्गत अनेक गांवों में शुद्ध एवं उपचारित पेयजल पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आशा की जानी चाहिए कि सरकार के इन कदमों से तथा नदियों को प्रदूषित करने वाले उद्योगों व अन्य कचरा फैलाने वालों पर सख्ती किए जाने से जल प्रदूषण की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविधा के अंतर्गत ये वार्ता, जिसका विषय था विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष वार्ता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण एक चुनौती। और इसके वार्ताकार थे बलराम अहलूवालिया। और श्रोताओं को ये वार्ता काफ़ी पसंद आई होगी। मीडियम वेव 314.67 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है लोफर। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में लोफर फिल्म का ये गीत, और अब कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे संगीत दिया है SD बर्मन ने और शब्द रचना है आनंद बख्शी की। फिल्म का नाम है आराधना और आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म आराधना में, और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं येसुदास की आवाज में। फिल्म का नाम है सावन को आने दो, और इस गीत की धुन तैयार की है राजकमल ने, और गीत के बोल लिखे हैं फॉग जमीने। तो लीजिए सुनिए श्रोताओं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओं, येसुदास के गाए फिल्म सावन को आने दो फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम छाया गीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए देशगान।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:15 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद, और रात्रि 10:30 पर सुनेंगे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम रात के हमसफर। सुगम संगीत में आनंद लीजिएगा विविध कलाकारों के गाए नाद का आज शाम 7:32 पर। समय याद रखिएगा, आज शाम 7:32 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। कल रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती, और रात्रि 10:00 सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सवेरे 9:15 पर जिले की हलचल लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत में सुनिएगा सुनील मुखर्जी के गाए भजन कल शाम 7:32 पर। विविधा का समय रहेगा शाम 6:45 पर। इसमें कल आप सुनेंगे सुभाष चंद्र वर्मा की पूर्व प्रसारित वार्ता प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। कृषि जगत कार्यक्रम में कल चर्चा का विषय रहेगा सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। साथ ही सुनेंगे लोकगीतों व रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। समय रहेगा शाम 6:05 पर। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7

0: मामा सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाभियान का किया आगाज, कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ, कहा वायु प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन, अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बृहद पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
1: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ माँ के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
0: कार्यक्रम में विश्व बैंक के सहयोग से 2,741 करोड़ रुपए की लागत वाली उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही श्रावस्ती स्थित गुलेरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की।

0: गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जब हम गन्ने से बायोप्लास्टिक बनाएंगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते। साथियों, पीएलए दुनिया के सबसे सस्ते बायोप्लास्टिक में से एक है और जब यह डिस्पोज होगा तो यह कचरा नहीं खाद बनेगा, फर्टिलाइजर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, यानी कि हर तरीके से फायदा ही आएगा, कहीं से कोई नुकसान नहीं।
0: बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्र भूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि ये उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुराहताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सुराहताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आज हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
2: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि आज बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा की गई।
3: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि तो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए कि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी आज से 21 जून तक जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
4: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। आज एक पेड़ माँ के नाम, तो आज यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 24 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वी जनपदों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया आगाज। कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा बायो प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों के गाए नात।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों के गाए नात।

अभी हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों के गाए नाद का, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में विविध कलाकारों के गाए नात। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। श्रोताओं, पेश है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत संध्या। गीत संध्या सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है। इस गीत की धुन तैयार की है उत्तम सिंह ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

मोहब्बत तो कर ली है हमने छुप छुपा कर, मगर जमाने से डर लगता है। मोहब्बत तो कर ली है हमने छुप छुपा कर, मगर जमाने से डर लगता है। यूं इजहार ना करो सरे आम, तेरे दीवानेपन से डर लगता है।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम में जो अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म कोयला से, और इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, और इंदिवर के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है राजेश रोशन ने, और इसे आवाजें दी हैं उदित नारायण और साथियों ने। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत संध्या आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, और आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जख्म से, आवाज है अलका याग्निक की, और इस गीत की धुन तैयार की है एमएम करीम ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। तेरी धड़कन से जिंदगी का रिश्ता है मेरा, तेरी धड़कन से जिंदगी का रिश्ता है मेरा, तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। मोहब्बत तुझसे है सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं, मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं है, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में ये गीत, फिल्म थी जख्म। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, जिस इस गीत की धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने और गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। तो श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और श्रोताओं, आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं मन फिल्म के कुछ गीत। कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में मन फिल्म का एक गीत, जिसे संगीत दिया था संजीव दर्शन ने और गीत के बोल लिखे थे समीर ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से अंतर्गत फिल्म मन के कुछ गीत, और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसके अंतर्गत आपको सुनवाए मन फिल्म के कुछ गीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। 8:45 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों,

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और ये स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में

0: 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज के जरिए भारत सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। हिसास सरहदी मकाम पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ की जाएगी। जुनूब मगरबी मानसून बहिरा अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। और हॉकी में भारत जापान के काका मिगारा के मकाम पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त देकर मर्दों के अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है कि दुनिया एक माहौलियात के लिए साजगार मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रही है और भारत इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज के जरिए इसकी फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। गुजरात के शहर सूरत में आज 18,800 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि भारत की 250 गीगावाट की मजमूई काबिल क़द्र तवानाई में से अकेला गुजरात 50 मेगावाट फराहम करता है, जो कि मुल्क की सब्ज तवानाई का 5वां हिस्सा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में तब्दीली में एक वसी रोल अदा करना चाहती है, जो तवानाई में खुद किफालत हासिल करने के लिए लाजमी है। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये इकदाम पेशरफ की क़्यादत करेंगे और अवाम के लिए ज़िंदगी की आसानी को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी जाहिर की कि माहौलियात के दिन के मौके पर वो सूरत में हैं, जो कि मुल्क के साफ तरीन शहरों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा तवानाई का आलमी बहरान तवानाई में खुद किफालत की कलीदी अहमियत को उजागर करता है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: भारत की मईशत ने साल 2025-26 के दौरान तेजी का रुझान बरकरार रखा है। साल 2024-25 की 7.1% असल GDP के मुकाबले साल 2025-26 के दौरान असल GDP की तरक्की का तखमीना 7.7% है। शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज की वजारत ने आज माली साल 2025-26 के सालाना अंदाजे के आर्जी आदादोशुमार और इस साल जनवरी से मार्च की सहमाही के अंदाजे जारी किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारतीय मईशत के लगातार इस्तेहकाम

0: लंका मूरा सरहदी चौकी पर प्रहरी सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी नौजवानों और मुकामी शहरी इंतजामिया को नाकाबिले दरअंदाजी सरहदी बंदोबस्त का एक निज़ाम वजह करने के जिमन में मरबूत करेगा।
1: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: जनाब शाह ने जोर दिया कि हुकूमत त्रिपुरा, मगरबी बंगाल और बिहार के हिस्सा सरहदी हिस्सों में दरअंदाजी या सरहदी रखना के बगैर किसी भी तरह की आबादियाती मुंतकली की इजाजत नहीं देगी। वजीर दाखिला ने मनुष्यात की स्मगलिंग, इंसानों की नाजायज तिजारत और मवेशियों की स्मगलिंग जैसे खतरात को जड़ से खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया। जनाब शाह ने बड़े पैमाने पर शजरकारी की एक मुहिम में भी शिरकत की और अगार का एक पौधा लगाया। नेपाल के खारजी उमूर के वजीर शिशिर खनाल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर भारत के 3 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। तीसरे पहर आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर कल नेपाल के अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने उजागर किया कि भारत का नेपाल के साथ एक जामे एजेंडा है जिसमें तरक्याती ताउन से लेकर तिजारत और सरमायाकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के साथ कसीर जहती शराकतदारी को मुस्तहकम करना चाहता है। वजारत खारजा ने आज इत्तला दी है कि दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हाल ही में पेश आए आग लगने के हादसे में जान गंवाने वालों में गैर मुल्की शहरियों की तादाद 13 है। नई दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि महलुकीन में 4 अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया से और 3 का ताल्लुक किर्गिस्तान से था, जबकि मोजम्बिक, लाइबेरिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, जमहूरिया कांगो और इराक के 1-1 शहरी की मौत हुई है। भारत रूस ताल्लुकात पर बोलते हुए तर्जुमान ने कहा कि भारत और रूस के दिफाई ताल्लुकात मजबूत हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं। भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती समझौते पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि अमरीका के आला मुजाकिरातकार अपनी टीम के साथ 1 जून से 4 जून तक भारत में थे। उन्होंने कहा कि बातचीत मुस्बत और तामीरी नौयत की रही। एक दीगर सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल अब तक 1076 भारतीय शहरियों को अमरीका से मुल्क बदर किया गया है, जबकि यही तादाद पिछले साल 3567 थी। भारत में गैर मुल्की शहरियों के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों से निमटने के बारे में कवानीन मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली को रूस के 5वीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारे सुखोई SU-57 की पेशकश की है और इन तैयारों को भारत में मुश्तरका तौर पर तैयार करने की तजवीज रखी है। ये पेशकश दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक साझेदारी की अक्कासी करती है। सेंट पीटर्सबर्ग इक्तसादी फोरम के तनाजुर में कल रात सरकर्दा न्यूज एजेंसियों के सरबराहान से बातचीत करते हुए जनाब पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब भी SU-57 तैयारा प्रोग्राम में नई दिल्ली की शिरकत का ख्वाहिशमंद है। जनाब पुतिन ने इंटीग्रेटेड फिजाई दिफाई निजाम और उससे मुतालिक हार्डवेयर समेत दीगर अहम दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर भारत के साथ इश्तराक करने की रूस की तैयारी का इजहार किया है। भारत रूसी साख्त के S-400 मिसाइल निजाम के मुमकिन कलीदी पुर्जे के साथ अपने दिफाई निजाम सुदर्शन चक्र को स्वदेशी तर्ज पर तैयार कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आज पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर शदीद एतराज किया है जिसके तहत वो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और जबरन कब्जा किए हुए भारतीय इलाके नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात कराने का मंसूबा रखता है। ये इंतखाबात इस माह की 7 तारीख को होने हैं। भारत ने अपने वाज़ेह मौकफ को दोहराया है कि नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुकम्मल मरकजी खित्ता भारत का अटूट और नाकाबिल तस्खीर हिस्सा है, क्योंकि साल 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में मुकम्मल कानूनी और नाकाबिल वापसी इल्हाक हुआ था। उमूर खारजा की वजारत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की इस तरह

की कोशिशें उन बुनियादी मसाइल को नहीं छिपा सकती जिनमें इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, सियासी जबर, माशी इस्तेहसाल और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में आज़ादी से महरूमी शामिल है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में किसी भी बुनियादी या इंतजामी तब्दीली की कोशिश को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के इकदाम उन हकायक को छुपा नहीं सकते कि पाकिस्तान अब भी गैर कानूनी तौर पर भारतीय इलाकों पर काबिज है जिन्हें खाली करना होगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दिल्ली के वजीर आशीष सूद, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बारे में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब सूद ने कहा कि वजीर आला ने गैर कानूनी तामीरात, फायर सेफ्टी के उसूलों के खिलाफ वर्जियों और इंतजामी लापरवाही से पेश आए हालिया अलमनाक हादसे पर तश्वीश का इजहार किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने आफात से निमटने से मुतालिक एक्ट 2005 की मुख्तलिफ दफात को मौसर तरीके से नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर रिहायशी या तिजारती इमारतों के मालिकान इस कानून के तहत कसूरवार पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्मानों के साथ साथ कैद की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। जनाब सूद ने कहा कि मुस्तकबिल में डीएम्स को अपने जिले में काम करने वाले किसी भी महकमे के अफसरान की जवाबदेही तय करने का इख्तियार हासिल होगा। वो जरूरत पड़ने पर महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश, FIR दर्ज करने और वजह बताओ नोटिसें जारी कर सकेंगे। गुवाहाटी में हलफबरदारी की एक तकरीब में 12 नए काबिनी वुजरा को शामिल करते हुए आज आसाम की वुजरा काउंसिल में तौसी की गई। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने नए वुजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आसाम की वुजरा की काउंसिल की तादाद अब बढ़कर 17 हो गई है। आइन के तहत आसाम में वजीर आला समेत ज्यादा से ज्यादा 19 वुजरा हो सकते हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज ऐलान किया कि अंडमान जजायर के मशरकी साहिल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 के मकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि ये दरियाफ्त बुहरे अंडमान के तवानाई के वसी इम्कानात को वाजह करती है और इस तास में जारी जस्तजू की मुहिम में एक और कामयाबी को नुमाया करती है। पद्म अवार्ड 2027 के लिए नामजदगी का अमल अगले माह की 31 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत दाखिला ने कहा कि पद्म अवार्ड के लिए नामजदगी और सिफारिशात का अमल जो 15 मार्च को शुरू हुआ था सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से मौसूल नामजदगियों के जरिए जारी रहेगा। वजारत ने सिलसिले में शहरियों से खुद नामजदगी समेत नामजदगियां और सिफारिशात दाखिल करने की अपील की है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नतायज के ऐलान के बाद अपने पोर्टल पर हुए मनसूबाबंद साइबर हमलों के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 12वीं जमात के उम्मीदवारों के जवाबी पर्चों के वेरिफिकेशन और दोबारा जांच के लिए यह पोर्टल 2 जून को शुरू किया गया था। CBSE ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान पोर्टल पर मुतअद्दिद मनसूबाबंद साइबर हमले हुए हैं। ताहम इन हमलों को 24 घंटे 7 दिन की लगातार निगरानी और जवाबी मैकेनिज्म के जरिए नाकाम बना दिया गया। इस दौरान IIT कानपुर, IIT मद्रास और दीगर मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की साइबर सिक्योरिटी टीमों की मदद हासिल रही। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मगरबी वस्ती और मगरबी वस्ती बुहरे अरब, गोवा के हिस्सों और कर्नाटक के इलाकों में मजीद आगे बढ़ गया है। इस तरह की सूरत हाल तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में भी जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जुनूब मगरबी मानसून के वस्ती बुहरे अरब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मजीद हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ने के लिए सूरत हाल मुवाफिक है। मौसमियात की एजेंसी ने यह भी कहा है कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की सूरत हाल मगरबी वस्ती, मशरकी वस्ती और शुमाल मशरकी खलीज बंगाल के इलाकों के साथ साथ शुमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी जारी रहने की तवक्को है। हॉकी में भारत ने आज जापान के शहर काकामी गहारा में खेले गए मर्दों के अंडर 18 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 3-5 से हरा दिया, जहां भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद की फालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है।
معیشت میں مضبوط رجحان کے نتیجے میں سال 2025-26 میں ملک کی جی ڈی پی کی پیش رفت 7.7% رکھی گئی ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اسمارٹ سرحدی پروجیکٹ عمل آوری کے اپنے حتمی مرحلے میں ہے. اس 7 سرحدی مقامات پر اگلے سال پائلٹ شروعات متعارف کرائی جائے گی. اور جنوب مغربی مانسون بحیرہ عرب، گوا اور کرناٹک کے مزید حصوں میں پیش رفت کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। अब हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद।

0: कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपकी साथ ही हूं मैं, रिमझिम बलूनी। और हम जानते हैं कि हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है, तो श्रोताओं, हमें भी अपने श्रोताओं के फोन कॉल्स का उतना ही इंतजार रहता है जितना कि आपको। तो बिना देर के शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो अपने श्रोताओं को कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बता देते हैं फोन नंबर्स। हमारे नंबर्स हैं 9457078288। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9457078288। और एक और नंबर है लैंडलाइन नंबर भी, आप इसमें भी कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए, 01341 नजीबाबाद का कोड है और फोन नंबर है 230105। तो हमारे श्रोताओं ने जरूर से ये नंबर नोट कर लिए होंगे और हम देख रहे हैं कि हमने इधर नंबर बताया नहीं और हमारे श्रोताओं के फोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं कार्यक्रम और देखते हैं कार्यक्रम में पहली कॉल किसकी है। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद
0: जी, कौन श्रोता बात कर रहे हैं हमारे?
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
1: मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी बात कर रहा हूँ मैम।
0: अच्छा वक्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आप बने हैं कार्यक्रम के पहले कॉलर। तो कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है मैम।
0: वैसे तो आप हमारे नियमित श्रोता हैं, लगातार आप फोन कॉल्स के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से जुड़े रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है फोन ना लगने की, और लेकिन सबसे पहला कॉल आपका लगा है ना?
1: हाँ मैम बिल्कुल।
0: तो
1: और मैम जैसे कि मेरा कॉल लगता ही रहता है और बात होती रहती है, तो ये मोहब्बत भी है मैम, क्योंकि इंसान को जिस चीज से लगाव होता है मोहब्बत होती है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: जब इंसान ठान ले किसी चीज को पाने की तो वो मतलब
0: मिल ही जाती है ना जी।
1: लेकिन मैम दो लाइनें कहना चाहूंगा।
0: जी जरूर।
1: हम तो वो हैं जो तेरी बातें सुनकर तेरे हो गए थे। हम तो वो हैं जो तेरी बातें सुनकर तेरे हो गए थे। वो और होंगे जिन्हें मोहब्बत चेहरों से होती होगी।
0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको मोहब्बत है कार्यक्रम से और कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वकार जी, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: जी हाँ मैम, फिल्म का नाम है गदर
0: जी
1: और इसका गीत है मैम, हम जुदा हो गए रास्ते खो गए मगर हम मिलेंगे। इस तरीके गाने के बोल है, अपने टाइम की बहुत अच्छी मूवी है
0: जी,
1: और
0: जी
1: गाने भी बहुत अच्छे हैं।
0: बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत हिट हुए हैं इस फिल्म के गीत, है ना?
1: जी मैम। और वैसे सारे प्रोग्राम एक से बढ़कर एक चल रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग इतनी अच्छे अच्छे सी प्यारी प्यारी सी आवाज और अंदाज में प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, तो मैम और अच्छा लग रहा है।
0: धन्यवाद वकार जी। और वैसे भी हमारे जितने भी यहाँ पे अनाउंसर हैं, चाहे कंपेयर्स हैं, सभी की कोशिश रहती है कि जो भी कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित किए जाएं वो हमारे श्रोताओं को पसंद आए। ये प्रोग्राम जितने भी कार्यक्रम है हमारे श्रोताओं के लिए ही है।
1: जैसे कि सुबह से हमारे यहाँ मौसम हो रहा था, रिमझिम बारिश हो रही थी और आज स्टूडियोज में भी रिमझिम बलूनी जी प्रोग्राम पे कर
0: जी जी। और कैसा मौसम है आपके यहाँ पे?
1: मैम अभी थोड़ा बेहतर है क्योंकि सुबह रिमझिम थी, मतलब फुहारे पड़ी थी, मतलब बूंदाबांदी हुई थी सुबह में
0: जी,
1: तो थोड़ा सा मौसम बेहतर है
0: जी, गर्मी से राहत है।
1: हाँ मैम बिल्कुल। और अब स्टूडियोज में भी आप प्रोग्राम पेश कर रहे हैं तो स्टूडियोज में भी मौसम ठंडा ठंडा, मतलब लोगों को भी राहत मिलेगी प्रोग्राम सुनकर।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को भी राहत मिलेगी कार्यक्रम सुनके और हमें भी अपने श्रोताओं के फोन कॉल्स यहाँ पे शामिल करके अच्छा लगता है वक्कार जी।
1: कुछ दोस्तों के नाम हो रहे मेरे साथ में, उनके नाम लेना चाहूंगा।
0: जरूर।
1: अदीम बाकी रऊफ, अहमद निजामुद्दीन, आसिफ चौधरी, राशिद अंसारी, मुकेश कश्यप, मोहम्मद फरमान, दिव्यांशु यादव, मांगीलाल चंदेल, मकसूद हुसैन और महबूब दुकानदार और विष्णु अग्रवाल
0: जी। तो वकार जी, आपने हमें फोन कॉल कि इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके मैम, थैंक यू मैम।
0: तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में आपकी पसंद का एक गीत। उदित नारायण की आवाज में फिल्म का नाम है गदर।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में गदर फिल्म का ये गीत। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कार्यक्रम में हमारे अगले श्रोता कौन हैं। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद मैडम जी, नमस्ते
0: नमस्ते, कौन सर बोल रहे हैं?
1: जी। मैं उत्तराखंड सेनिकाल सेनगांव फैक्ट्री से प्रकाश चंद बोल रहा हूँ जी। मैं
0: प्रकाश चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उत्तराखंड से बात कर रहे हैं, तो कैसा मौसम है उत्तराखंड में?
1: मैडम जी, मौसम तो बारिश होने की संभावना हो रखी है और मौसम अब बारिश ही का ही हो रखा है। इधर उत्तराखंड में तो बारिश ही चल रही है।
0: जी, मतलब सुहावना मौसम है
1: आज ही सुहावना, दिन में भी बारिश हुई थी
0: जी।
1: और आप भी ऐसे हो रखा है।
0: जी, तो इस समय बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है, तो आपके घर में, आपके जो गांव है वहां पे किस तरह की फसल होती है, कौन कौन सी सब्जियां इस टाइम पे हो रखी हैं?
1: मैडम जी, इस टाइम तो आप सब्जी लगेगी, बैंगन हो रखे है, करेला हो रखे है, चचिंडा हो रखे हैं
0: जी
1: और तोरी हो रखी है
0: जी
1: और टमाटर भी लग रखी है, मतलब लगने वाली है, और मक्का बो रखी है।
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ जी
0: और कैसा लग रहा है आपको, आपकी कॉल लगी है कार्यक्रम में?
1: मैडम जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा परिवार भी और मैं भी आकाशवाणी के नियमित होता है और हमको आकाशवाणी केंद्र न सुने जिस दिन तो बहुत वैसे लगता है क्योंकि हम हर दिन आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद को सुनते हैं।
0: जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हमारे श्रोता इतने मन लगाकर कार्यक्रमों को सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, फोन कॉल्स के माध्यम से हो, चाहे पत्रों के माध्यम से हो, मैसेजेस के माध्यम से हो। तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं प्रकाश चंद जी आप?
1: मैडम जी, मैं दिल के टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए दादा फिल्म का गाना है
0: जी
1: और एक दो तीन नाम ले लो जी, मंजू देवी, कौनु प्रिया, उज्जवल कुमार
0: जी
1: और हमारा परिवार है ये बहुत, और आकाशवाणी नजीबाबाद भी प्रोग्राम बहुत अच्छे प्रोग्राम चलाते हैं और उत्तराखंड में आकाशवाणी केंद्र बहुत अच्छा सुनाई देता है क्योंकि देहरादून FM तो सुनाई नहीं देता लेकिन आकाशवाणी नजीबाबाद बहुत अच्छा सुनाई देता है।
0: जी जी तो प्रकाश चंद जी, आपने कार्यक्रम में कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है जी मैडम जी, नमस्ते।
0: और अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, येसुदास की आवाज में, फिल्म का नाम है दादा।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे दादा फिल्म का ये गीत, आवाज थी येसुदास की। और अपने श्रोताओं को एक बार फिर से नंबर बता देते हैं श्रोताओं, नंबर है 9457078288। और हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। तो आइए श्रोताओं, देखते हैं कि कार्यक्रम में हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद।
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: सबसे पहले आपको प्यार भरा आदाब।
0: जी आपको भी। और सबसे पहले नाम बताइए अपना सर।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खैम से मोहम्मद दानिश सिद्दीकी बोल रहा हूँ।
0: अच्छा दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है दानिश जी।
1: नहीं मैम, आप कैसी आई?
0: अब सही आ रही है, हमारे श्रोताओं तक पहुंच पाए तो थोड़ा सा आप है ना अपने फोन कॉल के नजदीक आ जाइए।
1: जी
0: तो दानिश क्या करते हैं आप?
1: मैम दूध का काम करते हैं और आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से प्रोग्राम सुन लेते हैं जब जब वक्त मिलता है। आकाशवाणी नजीबाबाद का पुराना लिसनर हूँ
0: जी
1: और
0: जी
1: आकाशवाणी रामपुर से पुराना नजीबाबाद से पुराना रिश्ता है
0: जी
1: और जितना वक्त मिलता है प्रोग्राम सुन लेते हैं। जैसे गीत तुम्हारे प्रोग्राम आता है और ये मिट्टे मेलोडी प्रोग्राम है, हेलो नजीबाबाद है और कृषि जगत है, अन्य
0: जी
1: जितने भी प्रोग्राम आपके यहाँ से आते हैं सारे प्रोग्राम सुन लेते हैं और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम लगते हैं।
0: जी दानिश जी धन्यवाद। पहले तो कि कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आप अपने घर के कामकाज के साथ टाइम निकाल लेते हैं और दूध का काम आप करते हैं, आपने बताया है ना। तो किस तरह से करते हैं, आपकी डेयरी है या फिर आपने अपने अपना पशुपालन किया हुआ है?
1: मैम डेयरी भी है और दो भाई डेयरी पर रहते हैं और दो भाई मुरादाबाद दूध लेकर जाते हैं और गांव से दूध इकट्ठा करते हैं। मैम दो तीन गांव हैं उनमें
0: जी
1: दूध इकट्ठा करते हैं और घर इकट्ठा करके मैम जो है कुछ दूध शहर ले जाते हैं मुरादाबाद और कुछ जो है डेयरी है अपनी भोजपुर में, पास में कस्बा पड़ता है कस्बा भोजपुर, वहां पर अपनी ये डेयरी है।
0: जी जी
1: ये
0: बहुत अच्छी बात है, आपने अपना रोजगार किया हुआ है ना, और आप दूध उपलब्ध करा रहे हैं और भी लोगों को
1: जी
0: अपने
1: मैम
0: व्यवसाय
1: डेयरी
0: के
1: में जो है
0: माध्यम से।
1: जी डेयरी के साथ साथ दूध है मैम, घी है देसी और मैम दही वगैरह है। अब इस टाइम गर्मी का मौसम चल रहा है तो मैम लस्सी वगैरह भी जो है मैम चल रही है आजकल और अच्छा तो अच्छा

0: कहने का मतलब ये है कि अच्छा जो है चल
1: जी जी
0: रहा है, खुश हैं मैं, हम भी और
1: तो
0: क्या
1: जैसे इस
0: करें।
1: समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो जो आपके पशु हैं उनकी देखभाल किस तरह से करते हैं आप?
0: मैम हमारे पास तो पशु कम हैं मैम, हम जो है घर घर जाते हैं, जैसे गांव में हर घर में व्यक्ति जो है भैंस जो है पशुपालन करते हैं, एक या दो तीन भैंसे पालते हैं, गाय वगैरह, तो उनके घर घर जाकर हम इकट्ठा करते हैं मैम दूध, उनके घर से
1: अच्छा
0: लेकर आते हैं, फिर उसके बाद में हम घर इकट्ठा करते हैं सबको, दूध को उसे जो है छानते हैं अच्छी तरह से छलनी से, और जो है जब उसे हम जो है साफ
1: जी,
0: बर्तन
1: लोगों
0: में उसे
1: तक
0: हम लेकर
1: पहुंचाते
0: जाते हैं।
1: हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो दानिश जी, कौन सा गीत आप कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे?
0: जी मैम फिल्म का नाम है जीत और गीत के बोल हैं दिल का क्या करे साहिब, ये सुनवा देना, और कुछ सुनने वालों के नाम है मैम,
1: जी
0: जैसे मेरे साथ में बड़े भाई साहब तौफीक अहमद सिद्दीकी साहब, अतीक अहमद सिद्दीकी साहब, और यह है मोहम्मद कामिल मकसूद हुसैन साहब हैं, और यह है कांठ रोड लगावली से अजीत अजीत अजीत कसाना भाई और राजवीर भाई हैं और हमजा सिद्दीकी हैं, बस यही लोग सुनना चाहते हैं।
1: जी तो दानिश जी, आपने फोन कॉल की कार्यक्रम में, इसके लिए आपका धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: तो अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, जिसे आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम है जीत।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में जीत फिल्म का ये गीत। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए नोट कर लीजिए ये नंबर्स। नंबर है 9457078288 और एक और लैंडलाइन नंबर है 01341230105। तो हमारे जो भी नए श्रोता हैं वो भी फोन कॉल्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कार्यक्रम में हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद, रमजीम जी आपको बहुत बहुत राधे राधे।
0: राधे राधे जी, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: रमजीम जी, मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव यानी खजुराहो से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से।
0: जी, एमपी से बात कर रहे हैं फूलचंद जी, बहुत बहुत स्वागत। और आप खजुराहो से बात कर रहे हैं जी, बहुत प्रसिद्ध जगह है ये। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में हम यही पूछ लेते हैं कि कुछ आप बताइए, खजुराहो में क्या क्या है?
1: बिल्कुल, हमारे सारे श्रोता सुन रहे हैं, जमीन जी आपको भी बता रहा हूँ कि खजुराहो के मंदिरों से ही प्रसिद्ध है खजुराहो।
0: जी जी।
1: और मंदिर खजुराहो के जो मंदिर है वो 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक बने हैं। उस समय चंदेल राजाओं का राज्य था, तो चंदेलों के द्वारा मंदिर बने हैं। और मंदिरों की जो कलाकृतियां हैं वो देखने योग्य है। आप कभी भी आइए, जितने श्रोता हैं वो भी आए देखें, खजुराहो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा बना है।
0: जी, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। एक पर्यटक स्थान है ना, पर्यटन स्थान है, वहाँ पे आना चाहिए सभी को देखने के लिए।
1: जी जी बिल्कुल, पर्यटन नगरी है खजुराहो। और मैं बता दूं आपको कि खजुराहो एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हो गया है।
0: जी,
1: तो आने जाने के लिए एयरपोर्ट से भी आप हवाई यात्रा भी कर सकते हैं और रेल सुविधा भी है, बसों की सुविधा है, हर सुविधा से आप आ सकते हैं।
0: जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी है हमारे श्रोताओं को कार्यक्रम के माध्यम से। तो फूलचंद जी, आपने कार्यक्रम में कॉल किया है तो कैसा लग रहा है आपको, आपकी कॉल लग भी गई है?
1: रिमझिम जी, मैं कितना खुश हूँ मैं अपने आप को बता नहीं सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और आपसे पहली बार बात भई है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे भाई।
0: जी, तो कार्यक्रम सुनते हैं आप आकाशवाणी नजीबाबाद से जो प्रसारित किए जाते हैं?
1: जी जी बिल्कुल, नजीबाबाद के जो कार्यक्रम है, मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो है फोन इन कार्यक्रम है जो आपका हेलो नजीबाबाद है।
0: जी जी,
1: वो मैं सुनता हूँ, रात्रि में आता है और रात्रि में हमारा रेडियो साफ बोलता है, दिन में हम लगाते हैं तो साफ नहीं बोलता है नजीबाबाद
0: जी। काफी डिस्टेंस है, इस वजह से दिन में कोई प्रॉब्लम आ जाती होगी, है ना?
1: जी जी जी। और हमारे जो पास में छतरपुर है, छतरपुर आकाशवाणी है
0: जी,
1: और भी है अपना भोपाल है जैसे, तो वहाँ की सुनती रहती, लेकिन छतरपुर हमारे पास ही में है तो वो साफ बोलती है आकाशवाणी, तो वो सुनती रहती है, लेकिन नजीबाबाद तो हम सुनते हैं केवल हेलो नजीबाबाद।
0: जी, तो धन्यवाद कि आप इतने दूर स्टेशन के कार्यक्रम भी सुनते हैं और देखिए फोन कॉल्स भी आप करते हैं कार्यक्रम में। तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: बिल्कुल रमजिम जी, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी आवाज है आपकी।
0: जी धन्यवाद।
1: रमजिम जी, मैं फिल्म का नाम है सड़क
0: जी,
1: और गीत के बोले कि रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं।
0: जी, तो कार्यक्रम
1: ये
0: में
1: वाला गीत, हाँ ये वाला गीत सुनना है मुझे। और मैं आपको बता दूं कि ये गीत जो है डेडिकेट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो रमजिम जी आपको डेडिकेट रहेगा ये गीत।
0: जी जी धन्यवाद बहुत बहुत।
1: और हमारे मांगीलाल चंदेल जी है मध्य प्रदेश से, और दिनकर सिंह जी चित्रकोट धाम से हैं, और विजय कुमार पांडे जी हैं, देवी शंकर शुक्ला जी हैं
0: जी,
1: और भी हमारे जितने

0: है, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, अमित कुमार जी हैं, जो है जयपाल यादव जी हैं, जितने श्रोता सुन रहे हैं, माताएं बहनें, सभी को डेडिकेट रहेगा ये गीत।
1: जी, तो फूलचंद जी, आपने कार्यक्रम में कॉल की और बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार।
1: तो अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, कुमार सानू और देबाशीष दास गुप्ता की आवाज में। फिल्म का नाम है सड़क।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सड़क फिल्म का ये गीत। और जो भी हमारे नए श्रोता हैं उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद, जो कि सजीव फोन इन कार्यक्रम है। और इसे जुड़ने के लिए आपको नंबर बता दें, इन नंबर पे कॉल्स करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। तो नंबर है 9457078288। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे।
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: जी भोपाल से बात कर रहे हैं आप केसरी सिंह राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
1: जी थैंक यू दीदी।
0: तो क्या करते हैं आप केसरी जी?
1: दीदी मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: जी बहुत अच्छी बात है, आप कलाकार हैं, आपके हाथों में तो हुनर है।
1: हाँ दीदी वो सरस्वती जी की देन समझ लीजिए।
0: जी तो किस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं आप, किस तरह का काम करते हैं?
1: पेंटिंग्स में दीदी सभी काम आते हैं, जैसे बाल पेंटिंग, दीवार लेखन हुआ, चित्रकारी हुई, राइटिंग वर्क हुआ, ये सब काम करते हैं।
0: जी तो आपकी
1: में खेती भी है।
0: अच्छा खेती भी करते हैं साथ में, तो इस समय आपके
1: देखते हैं।
0: जी तो भोपाल में आपने खेती में क्या उगाया हुआ है?
1: अभी तो दीदी खेत खाली पड़े हुए हैं, अब बारिश का इंतजार है, बारिश के बाद फिर सोयाबीन की फसल लगेगी, धान की फसल लगेगी।
0: जी तो किस तरह का मौसम है इस समय आपके यहाँ पे?
1: अभी तो दीदी गर्मियाँ थी लेकिन अभी थोड़ी सी राहत मिली है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बूंदाबांदी हो रही हैं।
0: जी
1: और मानसून भी आया है हल्का हल्का, अभी एक दो हफ्ते में आ जाएगा।
0: जी जी बिल्कुल। तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप
1: आज? दीदी आप सुनवा दीजिएगा समाधि मूवी से, जब तक रहे तन में जिया,
0: जी
1: वादा रहा वो साथिया।
0: जी तो केसरी सिंह जी आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में आपकी।
1: मैं दो दो चार मित्रों को याद करना चाहूंगा।
0: जी जी बोलिए ना।
1: सबसे पहले आप सुनेंगे और हमारे राम बाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार, राम और हमारे मांगीलाल चंद गजराज लोधी जी, दिव्यांशु यादव जी,
0: जी
1: और जितने भी लाइव सुन रहे हैं सबके लिए रहेगा। राम नरेश जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, अविनाश सेली जी।
0: जी तो केसरी जी आपने फोन कॉल्स की कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में आपकी पसंद का गीत। फिल्म का नाम है समाधि और आवाज़ है आशा भोसले की।

0: हेलो नजीब आबाद।
1: हेलो नजीबाबाद मैडम, नमस्ते। मैं अलीगढ़ से विजय कुमार बोल रहा हूँ।
0: जी विजय कुमार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थोड़ा सा आपने स्पीकर के और नजदीक आ जाइए, आपकी आवाज काफी कम आ रही है।
1: मैडम, मेरे पास कीपैड फोन है ना ये।
0: जी, तो थोड़ी सी अपनी वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज हमारे श्रोताओं तक भी पहुंचनी चाहिए। विजय जी
1: हाँ मैडम,
0: जी
1: मुझे गाना सुनना है। फिल्म का नाम है तमन्ना।
0: जी तमन्ना फिल्म का गीत आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। और परिवार में सब ठीक है आपके?
1: हाँ, हमारे परिवार में सब ठीक है मैडम, और हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद परिवार में सब ठीक है।
0: जी सब अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं। तो अलीगढ़ से आप बात कर रहे हैं, तो अलीगढ़ में क्या प्रसिद्ध है आप हमारे श्रोताओं
1: मैडम
0: को?
1: यहाँ के ताले भी मशहूर है, और हमारे यहाँ एक किला है, बौना चोर का किला, वो भी बहुत मशहूर है।
0: जी, ताले और किला बहुत मशहूर है अलीगढ़
1: हाँ,
0: का।
1: अलीगढ़ का किला बहुत मशहूर है।
0: जी, कॉलेज भी काफी मशहूर है वहाँ पे,
1: हाँ, यहाँ के
0: विश्वविद्यालय।
1: कॉलेज भी बहुत मशहूर है, यहाँ के भाषण महाविद्यालय।
0: जी, तो आप सुनते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम?
1: मुझे हेलो, ये हेलो नजीबाबाद बहुत पसंद है मैडम।
0: जी, तो पहले भी आपकी कॉल लगी है विजय विजय जी।
1: मेरी इससे पहले कॉल लगी थी 13 मार्च 2026 को।
0: अच्छा, आपको डेट भी याद है।
1: हाँ,
0: जी
1: याद है मुझे।
0: जी, और आज आपकी कॉल लगी है, तो आप तो बहुत खुश होंगे, है
1: हाँ मैडम,
0: ना?
1: मैं बहुत
0: काफी
1: खुश
0: टाइम
1: हूँ।
0: बाद आपकी कॉल लगी है।
1: मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे और श्रोताओं को भी मौका मिले, इसलिए।
0: जी, बहुत अच्छी बात है कि एक बार आपकी कॉल लग गई तो आपने थोड़ा ब्रेक ले लिया। और देखिए, आपकी फोन कॉल्स दोबारा लग गई है कार्यक्रम में। जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी।
1: और मैडम तो
0: जी, तो कार्यक्रम में आप गीत सुनना चाहते हैं, है ना? जी, इसके अलावा
1: हेलो नजीबाबाद मुझे मैडम बहुत पसंद है। मैं जब से सुन रहा हूँ, जब से ये 12:10 पर आता था संडे को, हर संडे को,
0: जी,
1: जब से सुन रहा हूँ।

0: हेलो नजीबाबाद।
1: जी, तो आपको अच्छा लगता है तो आपकी कॉल भी लग गई। और कार्यक्रम आप सुनते हैं नजीबाबाद आकाशवाणी से जो प्रसारित किए जाते हैं?
0: मैं मैडम उस पे सुनता हूँ, रेडियो पे। हाँ,
1: जी अच्छा
0: रेडियो पे सुनता हूँ, रेडियो है मेरे पास।
1: जी, बहुत अच्छी बात है जी। तो विजय कुमार जी, आपने फोन कॉल किया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
0: मैडम नमस्ते।
1: अब सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है तमन्ना और आवाज है चंदन दास की।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे तमन्ना फिल्म का ये गीत, आवाज़ थी चंदन दास की। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे कार्यक्रम में अगले कॉलर कौन है। हेलो नजीबाबाद।

0: सर्विस चाहिए है, और आसपास के आज वो आसपास के आदमी भी सही है मैम, आस पड़ोस वाले भी सही है
1: जी, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप फरमान जी?
0: जी मैम। फिल्म का नाम है हिना, आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा देना,
1: जी, अपनी
0: और मैम
1: पसंद का हम
0: आज
1: कोई भी गीत आपको सुनवा देंगे, है ना?
0: जी मैम बिल्कुल, और आज कई अंतराल के बाद आपसे मेरी बात हो रही है आकाशवाणी नजीबाबाद में, तो बहुत खुशी हो रही है मैम।
1: जी, हमें भी खुशी हो रही है आपसे बात करके। तो कैसा मौसम
0: लेकिन
1: है मुरादाबाद में इस समय?
0: जी मैम हमारे का मौसम अभी मतलब बारिश नहीं हो पा रही है मैम, काफी मतलब क्षेत्र
1: जी,
0: में
1: गर्मी हो
0: आसपास
1: रही
0: के
1: है।
0: क्षेत्र
1: अगर
0: में
1: बारिश नहीं हो पा
0: मैम
1: रही होगी तो इस समय गर्मी होगी, है ना?
0: जी मैम आसपास के क्षेत्र में मतलब 8-10 किलोमीटर की दूरी पर बारिश हो रही है, अभी हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है मैम।
1: जी, तो अब इंतजार होगा आपको बारिश का।
0: बिल्कुल मैम बिल्कुल इंतजार है, बस ये है थोड़ा ठंडी ठंडी हवाएं चल जाती है तो उससे राहत
1: जी,
0: मिल
1: काफी।
0: जाती है मैम।
1: जी, तो फरमान जी, आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: मैम कुछ नाम लेना चाहता हूँ आपकी इजाजत हो,
1: जी बिल्कुल।
0: सबसे पहले आप सुनेंगे हमारे साथ
1: जी,
0: और
1: धन्यवाद।
0: जम्मू कश्मीर से नईम मलिक है,
1: जी
0: मुकेश कश्यप भाई है, महबूब दुकानदार है, वक्कार भाई है, रऊ भाई है, निजामुद्दीन है, आसिफ चौधरी है, काजरी चौधरी है, राशिद अंसारी है, और हमारी बहन है नरगिस खातून, और तमाम श्रोता है जो इस समय रेडियो सुने, और दूल्हापुर से है चंद्रमोहन सिंह जाटवे, संबलपुर से ये भी आपका प्रोग्राम सुने मैम।
1: जी, तो फ़ोन कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फरमान जी। और सुनिए आप कार्यक्रम में अपनी पसंद का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फ़िल्म का नाम है हिना।

0: तो श्रोताओं देखते हैं कार्यक्रम में अंतिम कॉल किसकी लगी है। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: जिला सागर तहसील बंडा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं चरण सिंह
0: जी। चरण सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दूर से फोन कॉल किया है आपने।

0: जी, वो सारा
1: जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है जी। कार्यक्रम का आखिरी कॉल आपने किया है, तो आप बता दीजिए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं।
0: वो है सिर्फ तुम, दिल भर का।
1: अच्छा, सिर्फ तुम का गीत आपको सुनना है। तो कैसा लग रहा है आपको, आपकी फोन कॉल लगी है कार्यक्रम में।
0: बहुत अच्छा लगा
1: जी, तो सुनते हैं आप कार्यक्रम यहाँ से प्रसारित होने
0: रहा
1: वाले।
0: है। हाँ, सुनते रहते हैं नजीबा आकाशवाणी।
1: जी, तो आज के अंतिम श्रोता हैं आप कार्यक्रम के, है ना।
0: जी।
1: तो आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवा देते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है ना।
0: जी।
1: जी
0: धन्यवाद।
1: जी कुछ कहना चाहते हैं आप। तो हमारे जो कार्यक्रम के अंतिम श्रोता हैं, उनकी पसंद का गीत उनको सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम।

हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स लगे, बहुत सारे के फ़ोन कॉल्स नहीं भी लगे हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप ट्राई कीजिए, ज़रूर से कार्यक्रम में आपका कॉल लगेगा। तो श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, तो बने रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ। इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद अब यहीं पर संपन्न करने की अपनी साथी रिमझिम बलूनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम रात के हम सफर।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रात के हमसफर में। और रातों की तन्हाई को गुलजार बनाने, आपके दिलों की बातें सुनने और आपको मस्त कर देने वाले फिल्मी नगमों से सजाने के लिए मैं आज हाजिर हूँ आपकी कार्यक्रम की हमसफर रिमझिम बलूनी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आपके मैसेजेस को शामिल करेंगे और साथ ही सुनेंगे प्यारे प्यारे से गीत। तो चलिए शुरू करते हैं ये हसीन सा सफर। और इस सफर में साथ देने के लिए श्रोताओं, आपको करने होंगे कार्यक्रम में व्हाट्सएप मैसेजेस, और वो मैसेजेस होंगे कार्यक्रम से जुड़े हुए। जी हाँ, हम जो भी सवाल आपसे कार्यक्रम में पूछेंगे, आप उसका उत्तर कार्यक्रम में व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेजेंगे। तो तैयार हैं श्रोताओं आप? हम तो बिल्कुल तैयार हैं। तो आपको इसके लिए नोट करना है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ श्रोताओं, मैसेज करने के लिए नंबर है 9457078288। जो भी हमारे नए श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए नंबर एक बार फिर से बता देते हैं। नंबर है 9457078288। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आपको मैसेज क्या भेजना है हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम है रात के हमसफर, है ना? तो मोबाइल फोन लेके आप तैयार हो जाइए मैसेज भेजने के लिए। तो श्रोताओं, जैसे कि आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारा पर्यावरण अगर सुरक्षित है, स्वच्छ है, तो हमारा जीवन सुरक्षित है। नहीं तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है, हम सभी को भुगतना पड़ता है और भुगत भी रहे हैं। हम देख रहे हैं, कभी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कभी अचानक से ठंड पड़ जाती है, है ना? कभी हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। बहुत सारी चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बस करना क्या है कि हमें अपने स्वार्थ को अलग रखना है और सभी के बारे में सोचना है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें करके हम क्या है, पर्यावरण को साफ रख सकते हैं। श्रोताओं, है ना, बहुत सारे आप लगातार कार्यक्रम में सुन रहे होंगे आकाशवाणी नजीबाबाद से, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित भी किए जा रहे हैं। और हम आपको बता देते हैं कि छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ लगा सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, है ना, बिजली बचा सकते हैं, प्लास्टिक का यूज़ कम करें। ऐसे छोटे छोटे जो काम हैं उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी सिखाएं कि किस तरह से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस आपको यही बताना है कि आप किस तरह से अपने आसपास साफ सफाई में, अपने पर्यावरण को साफ रखने में, अपने पेड़ पौधों को स्वच्छ रखने में, चाहे पानी बचाने में, किस तरह से अपना योगदान देते हैं, आपको मैसेजेस के माध्यम से बताना है श्रोताओं। तो इसके लिए हमने आपको नंबर बता दिया है। देखिए, बहुत सारे मैसेजेस हम तक आते हैं श्रोताओं, लेकिन क्या होता है कि वो कार्यक्रम से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो हम वही मैसेजेस शामिल करेंगे अपने कार्यक्रम में जो कार्यक्रम से जुड़े हुए होंगे। तो आपको यही बताना है कि क्या हम कर सकते हैं अपनी धरती को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए।

ना, और क्या आप करते हैं? इस तरह के सवालों के जवाब आप दे सकते हैं अपने नाम और पते के साथ। हमें बेसब्री से इंतजार है, इसके लिए हमने आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया है। नंबर है 9457078288। तो श्रोताओं, आपके मैसेजेस का हमें इंतजार है, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में ये गीत, फिल्म थी कहो ना प्यार है। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रात के हम सफर। और हमारे जो रात के हम सफर हैं, हमारे साथ के हम सफर हैं, उनके मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। तो ये मैसेज हमें मिला है विलेज एंड पोस्ट राहुल नंगली से। आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान और भूमिका चौहान ने ये मैसेज हम तक भेजा है। और ये लिखते हैं कि आज हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर कई सारे पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, और हम उनकी देखभाल करेंगे और भी आगे चलकर ये हमें लाभ देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है कि बहुत सारे पौधे लगाए हैं जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। क्योंकि देखिए, हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए ये देख रहे हैं आज हम कि इसमें हमारा स्वार्थ है, तो बहुत सारे पेड़ों को काट रहे हैं लगातार, कंक्रीट के मकान बना रहे हैं और बिना किसी कारणवश भी अपने लाभ के लिए काट दे रहे हैं उन पेड़ों को। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो है एनवायरनमेंट पे असर पड़ रहा है। तो जो ये मैसेज आया है आचार्य सत्यवीर सिंह जी का, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज हमारे श्रोताओं को दिया है। देखिए, सिर्फ पौधे लगाना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके बाद लगातार उसकी देखभाल करनी भी ज़रूरी है ना। जिस तरह से हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, उसके जन्म के बाद करते हैं ना, उसका पालन पोषण करते हैं, उसे देखते हैं, उसे खाना देते हैं, उसे भोजन देते हैं, जो भी उसकी ज़रूरत है पूरा करते हैं, उसी तरह से अगर हम किसी पौधे को लगाते हैं तो जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, खाद हो गया, पानी हो गया, उसे दें और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी भागीदारी ज़रूर दें। ये अगला मैसेज है ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून का। ये लिखते हैं कि बहुत अच्छी बात कार्यक्रम में की जा रही है, पर्यावरण की एक पेड़ अपनी माँ के नाम से अवश्य लगाएं, और दूसरी बात अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें, और साथ में हमें ज़्यादा पानी नहीं बहाना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल है तो कल है, और इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखिए जी। तो ज़िला मुरादाबाद से, दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये मैसेज हमें मिला है, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। देखिए, प्रदूषण अगर रुकेगा या पर्यावरण को अगर नुकसान होता है तो सिर्फ और सिर्फ पेड़ के कटने से ही नहीं होता, बहुत सारे उसके रीज़न हैं। हम पानी को लगातार दूषित करते हैं, है ना, गंदा करते हैं या उसकी खपत ज़्यादा करते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा

पानी हम बहा रहे हैं, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ रहा है, लोग तरस रहे हैं पानी के लिए, और कह देते हैं, ये कहना हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हम अपनी ही लाइट, अपना ही बिल हम दे रहे हैं इसका बिल, तो हम चाहे कितना भी पानी बर्बाद करें, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, हमारे पास हर चीज़ के सीमित संसाधन होते हैं, ये नहीं है कि बहुत सारे हैं। अगर ये सब चीज़ें एक दिन समाप्त हो जाएंगी, तो चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो जाएगा, कितना भी धन हो जाएगा, हम इन सब चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे, है ना। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और देखिए, जितनी भी चीज़ें हमें मुफ्त में मिल रही हैं ना हमारी प्रकृति के द्वारा, वो उनकी कोई कीमत नहीं है, उन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है श्रोताओं। तो ये मैसेज हमें मिला है मुरादाबाद से, ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा और लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। ये लिख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, बाद में उनकी अच्छे से देखभाल करें, पानी ना बेकार बहाएं, ज़रूरत के बराबर ही लें, बाज़ार में कपड़े का थैला लेकर जाएं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात इन्होंने कही है। प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और घर से जब बाहर जाएं तो घर की सारी बिजली बंद कर दें, पानी, पीने के पानी को ढक के रखें, मच्छरदानी का यूज़ करें, अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना करने दें, होने दें, और साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जिन्हें हम अगर अपने डेली रूटीन में शामिल कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो धरती है, अपनी प्रकृति है, उसे साफ रखने में, उसे स्वच्छ रखने में, उसे सुरक्षित रखने में अपना योगदान देते हैं। तो जो हमारा ये कार्यक्रम है, जो भी हमारे कार्यक्रम और भी हैं नजीबाबाद आकाशवाणी से प्रसारित किए जाते हैं, उनका मोटिव यही होता है कि जो हमारे श्रोता हैं उन तक कोई अच्छा सा संदेश जाए, है ना। तो जैसे कि आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे श्रोता कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक प्यारा सा मैसेज हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं ना। तो इसी तरह से आप भी मैसेज दे सकते हैं, जो हमारे और भी श्रोता हैं, कि किस तरह से वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देते हैं या देंगे, इस तरह का आंसर आप दे सकते हैं, बता सकते हैं, हमारे और भी श्रोताओं को जागरूक कर सकते हैं, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और भी मैसेजेस हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम का एक गीत और सुनवा देते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म रिफ्यूजी का ये गीत। और कार्यक्रम है रात के हम सफर और हमारे श्रोताओं के मैसेजेस हम तक पहुंच गए हैं। ये मैसेज है नई बस्ती गंजी डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी और तौसीफ हाशमी तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी का। ये लिखते हैं, पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए पेड़ लगाना, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, पानी जहाँ पे रुकता है वहाँ पे रास्ता बनाएं, और बहुत सारे काम हैं, छोटे छोटे कामों से हम पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। बहुत सुंदर बात इन्होंने लिखी है, बहुत अच्छा संदेश हमारे श्रोताओं को दिया है। और अब्दुल दानिश का मिर्जापुर से ये मैसेज है, ये लिखते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम पेड़ और पौधे ज़रूर से लगाएं। जी हाँ ज़रूर। और ये मैसेज है जसपुर रोड दूल्हापुर से महबूब दुकानदार बेगम साहिबा, महबूब मोहम्मद समीर अंसारी, वारिस अंसारी और अलशिफा।

प्रवीण का ये लिखते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, और जो ये लगा चुके हैं, और ये लिखते हैं कि मेरे यहाँ पर तकरीबन 8-10 पौधे हैं, जिसमें से इन्होंने बहुत सारे फलों के पौधे भी लगाए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल सभी ये संकल्प लें। बहुत सारे ऐसे काम हैं, हम अपने बच्चों के जन्म दिवस पर भी पौधे लगा सकते हैं, उससे उनकी याद में कि हमने अपने बच्चे का कौन सा जन्म दिवस मनाया है ना, और उस पौधे का संरक्षण इस तरह से हम कर सकते हैं। और बद्री प्रसाद जी का ये मैसेज है, ये लिखते हैं कि हम सभी को अपने आसपास की जगह को साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए, और प्रदूषण से बचने के लिए हमें कम से कम डीजल पेट्रोल के परिवहन का प्रयोग करना चाहिए। जी बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है, कम से कम उपयोग करें, है ना। और आगे ये मैसेज हमें मिला है, मैसेज रवि जवालिया हरिद्वार से लिखते हैं कि पानी की टंकी को ये खुला नहीं छोड़ते हैं, और ध्यान रखते हैं पानी का कि पानी बर्बाद ना हो। बहुत सारे मैसेज हमारे पास ये आए हैं। मदन गिरी जी लिखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, और दूषित पर्यावरण से बचने के लिए पेड़ लगाएं। जी बिल्कुल, पेड़ लगाएं। और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं ने ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ फरमाइश के लिए किए हैं, है ना। तो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रात के हमसफर, और कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको इसमें सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में, फिल्म है लव स्टोरी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रात के हम सफर। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि यह खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बात केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा में कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।